आज गुरुवार है। शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की तिथि 14, तदनुसार 4 जून सन 2026। स्टूडियो घड़ी में 5:48 और 50 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। इसमें आज आप सुनिए सच्चा मित्र रत्न के समान। वाचन स्वर है सुधा सिंह का।
1: मन की बातें हर किसी के सामने नहीं कही जा सकती। मन की बातें तो सच्चे मित्र से ही कही जा सकती हैं। मन की बातें कहने से पहले सच्चे मित्र की पहचान कर लेना जरूरी है, वरना बेवजह के संकट उत्पन्न हो सकते हैं। आप करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। आप भला चाहते हैं पर बुरा प्रभाव उत्पन्न होता है। हो सकता है गलती आपकी नहीं, लेकिन आप ही बुरे समझे जाते। ऐसा मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति के गलत प्रस्तुतीकरण की वजह से होता है। विश्वसनीयता मित्रता की पहली शर्त होती है। आपका मित्र आप विश्वास पात्र हो, जिससे आप अपने मन की बात निशंक होकर कह सकें। वो आपका राजदार होता है। वह आपके बारे में सब कुछ जानता है, फिर भी आपसे प्रेम करता है, आपसे सहानुभूति बरतता है और आपको उलझनों से बचाता है। जिस व्यक्ति में चुगलखोरी का अवगुण हो, उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए, वरना बात बनने की वजह बिगड़ सकती है। लगाई बुझाई करने वाला व्यक्ति विश्वास करने योग्य नहीं होता। वो आपकी किसी भी बात को स्वयं तक सीमित रख सकता। इतना ही नहीं, वह आपसे सुनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्च लगाकर या तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत करता है। इससे आप गंभीर परिस्थितियों में फंस सकते हैं। इससे आपकी छवि तो बिगड़ती ही है, साथ ही जो कहा किया नहीं उसके लिए आप जिम्मेदार समझे जा सकते हैं और इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। स्वार्थी व्यक्ति मित्र हो ही नहीं सकता। सच्चा मित्र त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वह आपके भले के लिए कुछ भी कर सकता है। निजी स्वार्थ की अनदेखी तो एक निस्वार्थ व्यक्ति ही कर सकता है। कुछ लोग मित्र बनने का ढोंग करते हैं। वे स्वार्थी होते हैं और अपने फायदे के लिए मित्र होने का दिखावा करते हैं। वक्त पर आपसे लाभ उठाते हैं, फिर स्वार्थ सिद्धि के बाद आपसे दूर हो जाते हैं। सच्चा मित्र विपत्ति में भी आपका साथ नहीं छोड़ता। कहते हैं, मित्रता का उजाला हीरे के उजाले के समान होता है, जो दुखों के अंधेरे में भी साफ साफ चमकता है। सच्चा मित्र एक अच्छा आलोचक भी होता है। प्रथमतः वह अपनी सही आलोचना का कभी बुरा नहीं मानता और हमेशा सुधरने के लिए तत्पर रहता है। दूसरे, वह आपके सद्गुणों की तो कद्र करता ही है, उनकी प्रशंसा करता है, आपको प्रोत्साहन देता है, लेकिन आपके अवगुणों की ओर भी आपका ध्यानाकर्षण कर आपको

0: सुधरने के लिए प्रेरित करता है। सच्चा मित्र आपका हमदर्द होता है। वो आपके दुख दर्द को समझता है। वो आपको परेशानियों से बचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। वो आपके सुख में सुखी और आपके दुख में दुखी होता है। सच्चा मित्र आपकी समस्याओं का हल ढूंढने में आपकी सहायता कर सकता है। आपको चिंता मुक्त कर सकता है। आपको परेशानियों से बचा सकता है। उलझनों से निजात दिला सकता है और आपके जीवन में आनंद भर सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। इसमें आपने सुना सच्चा मित्र रत्न के समान, वाचन स्वर था सुधा सिंह का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कृषि सूचनाएं। इसके अंतर्गत आप सुनिए वार्ता मक्का के कीट, यानी मक्का में लगने वाले कीट। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।

किसान भाइयों नमस्कार। मक्का एक महत्वपूर्ण फसल है। तीनों मौसम में इसकी खेती कमोबेश की जाती है। क्षेत्रवार अलग अलग समय पर ये इसकी बुआई होती है। मक्का का उपयोग भी अनेक है, खाने के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए, मुर्गियों का दाना बनाने के लिए और इथेनॉल बनाने के लिए प्रमुख है। मक्का के दाने जो हैं प्रमुखता से प्रयोग किए जाते हैं। तो जब आप मक्का की खेती करते हैं तो उसमें अनेक तरह के रोग लग जाते हैं, कीड़े भी लग जाते हैं, अनेक समस्याएं हो जाती हैं। तो कीड़ों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब मक्का के पौधे को आप बोते हैं तो उसमें दीमक कीड़ा लगता है। दीमक कीड़ा, जिसे आप जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मिट्टी में रहता है और ये अंकुरित होने वाले पौधे को ही काट देता है। उस समय आपको काफ़ी नुकसान होता है। जैसे आप बुआई करते हैं, कुछ दिनों के अंदर जब पौधे उगने लगते हैं उस समय आपके खेत में पौधे कटे हुए मिलते हैं। कुछ बड़े पौधे होते हैं उन्हें भी ये काट देता है, जड़ों को नुकसान करता है। तो इसके लिए आप जब जुताई कर रहे हैं बुआई के लिए, उस समय खेत में नीम की खल्ली या करंज की खल्ली मिला दें। इससे जो है ये कीड़ा नहीं लगता है, खेत में आता ही नहीं है। उसके बाद तना छेदक कीड़ा भी लगता है। इसके शिशु तना में छेद करके उसमें आंतरिक भाग को खा जाते हैं, इसलिए तना का अग्रभाग जो है, ऊपर का भाग जो होता है, वो मुरझा जाता है। यदि आप उसे तोड़ें तो एक तरह की गंध आती है और जब इसका आक्रमण होता है तो मक्का के धड़ में छेद मिलते हैं, वहाँ पर कुछ गंदे पदार्थ भी जमा रहते हैं जिनसे महक आती है। तो इस तरह का कोई भी कीड़ा आपके खेत में आक्रमण कर रहा हो, इस तरह की स्थिति यदि आपके मक्का के पौधे पर दिखाई दे रही हो, तो आप समझें कि ये तना बेधक कीड़ा लगा है। इसके लिए कुछ प्रयोग आपको करने होंगे, कुछ दवाओं का प्रयोग करें, जिसमें कि अंकुरण के 2 सप्ताह बाद लेमडा साय हेलोथ्रीन दवा जो है, 5 ईसी दवा है, 250 मिलीलीटर दवा, आप 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो कीड़ा है वो है फॉल आर्मी वर्म। ये कीड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। फॉल आर्मी वर्म आपके क्षेत्र में, कोसी बेल्ट में इसका बहुत ही आक्रमण होता है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। शुरू की अवस्था में पिल्लू समूह में पत्तियों को खुरच कर खाते हैं, फिर तने में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पत्तियों के निकलने के समय या जहाँ पर पत्तियाँ निकलती हैं वहाँ पर बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं। जैसे जैसे पिल्लू बढ़ते जाते हैं वे पत्तियों को काट कर खा जाते हैं और वहाँ पर मल भी उनका दिखाई देता है, गंदा पदार्थ वहाँ पर जमा रहता है। भुट्टा जब लगता है उस समय भी भुट्टे को बर्बाद कर देते हैं। तो इसके लिए फेरोमोन ट्रैप जो है उसका आप प्रयोग करें। 1 हेक्टेयर खेत में 10 फेरोमोन

0: जो है वो लगा दें, उसमें जो है पिल्लू फंस जाते हैं और उन्हें आप पकड़ करके नष्ट कर सकते हैं। नीम आधारित दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं, 5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, या इमामे क्विटीन बेंजोएट 5 SG दवा जो है वो 2 ग्राम दवा 5 लीटर पानी में घोल बनावें और उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरह के कीट जो हैं मक्का में लगते हैं, कीड़े लगते हैं, उनसे नुकसान होता है, उनसे आपको फसल बचाना आवश्यक होता है। कभी कभी किसान भाई ये सोचते हैं कि हम यदि घनी बुआई करेंगे मक्का की, नज़दीक नज़दीक बुआई करेंगे तो उससे उत्पादन ज़्यादा होगा, लेकिन जब कीट लगने की स्थिति होती है, कीड़ा लगने की स्थिति होती है, तो ये जो है कंसेप्ट आपका फेल हो जाता है, इससे आपको नुकसान होता है। क्योंकि नज़दीक नज़दीक यदि पौधे रहेंगे तो जल्दी कीड़े एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैल जाते हैं और इससे नुकसान ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप मक्का के कीटों की पहचान करें और उसके अनुसार उपाय करके उनका नियंत्रण करें।
1: कृषि सूचना के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ता मक्का के कीट। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अब हिंदी में समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
2: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं।

0: पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं संवेद स्वर में देश वंदना।

प्रत्येक दिवस का प्रातःकाल हमारे लिए नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई ताकत से ही लवरेज होता है, भरा होता है। मन में सदैव एक ही बात आती है कि आज का दिन बस खुशियों से भरा हो, और इसी खुशी को पाने के लिए हम अपने इष्ट ईश्वर की इबादत वंदना करते हैं।

हमारा मन एक मंदिर है, इसमें ईश्वर की भक्ति से शक्ति मिलती है, इसलिए मन से की गई प्रार्थना हमेशा सफल होती है।

बूंद बूंद से सागर बनता है और सरगम से सुर सजता है। इसी प्रकार वंदना करने से हमारे भीतर की भक्ति जागती है, और जब भक्ति जागती है तब हमारा मन शुद्ध होता है।

0: इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यही समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए रामचरित मानस से पाठ, मुख्य स्वर है ए हरिहरन का।
1: और ये सारी

बेटियों को विदा कर बारातियों से विदा मांगते हुए राजा जनक ने समधि तथा उनके स्वजनों का भरपूर सम्मान किया। मुनि मंडली के सामने शीश झुकाकर उनका आशीष प्राप्त किया और फिर जामाताओं को हाथ जोड़े, अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए बोले, आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन बनाकर मुझे अपनाया। मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा अपरिमित है। मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे ये याचना करता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके श्री चरणों को ना छोड़े। श्री राम ने पिता दशरथ, मुनिवर विश्वामित्र, कुलगुरु वशिष्ठ तथा पिता सदृश जनकराज का विनयपूर्वक सम्मान किया। मिथिलेश ने भरत को स्नेहपूर्वक प्रेमाशीष दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आशीषा और फिर मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में नतमस्तक हुए, जिनकी कृपा से ही आज उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोले, हे स्वामी, आपकी अनुकंपा से ही मुझे ये सुख, सुयश और सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। मुख्य स्वर था ए हरिहरन का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य सूचनाएं। इसके अंतर्गत आप सुनिए भेंटवार्ता, टीवी के रोग लक्षण कारण और उपचार। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर ज्योति रंजन पांडे।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति रंजन पांडे, आप कंसल्टेंट फिजिशियन पटना में हैं। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं टीबी, जिसे ट्यूबर क्यूलोसिस कहते हैं, ये हमारे फेफड़े के अंग को प्रभावित करता है, लेकिन इसके अलावा भी जब ये काफ़ी गंभीर होता है तो काफ़ी ख़तरनाक होता है, जो जिससे मृत्यु भी लगभग कई केसों में देखा गया है। तो डॉक्टर साहब स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय है कि टीबी क्या है और इसके क्या कुछ लक्षण है, कैसे फैलता है, इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे कि एक परिचय देते हुए कि टीबी बेसिकली है क्या।
2: देखिए, बहुत आपका अच्छा सवाल है। टीबी जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी आम तौर पर सभी लोग जानते हैं। टीबी एक, सबसे पहली बात हम लोग ये जानना है कि ये एक बैक्टीरिया द्वारा फैलाया हुआ डिजीज है। ये बैक्टीरियल डिजीज है, वायरस से नहीं होता है, बैक्टीरिया है। और जो भी
1: जी
2: बैक्टीरिया से जो भी बीमारी होती है उसका पूर्णतः इलाज संभव है
1: जी।
2: तो सबसे पहले ये हम लोग जान गए कि ये टीबी जो है बैक्टीरिया से फैलता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब है क्या कि ये फैलता कैसे है।
1: जी जी जी
2: फैलता तभी है जब किसी किसी भी मरीज को या किसी भी आदमी को अगर इसका इन्फेक्शन रहता है पहले से टीबी का, तो उसके खांसने से, छींकने से या किसी तरह से अगर दूसरे के शरीर में प्रवेश इसका इन्फेक्शन कर जाता है, या बुजुर्गों में जिनको और सारी बीमारियां होती हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती हैं, उनमें ये प्रवेश करके धीरे धीरे ये ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण पैदा कर देते हैं। हालांकि आमतौर पर डॉक्टर हो, चाहे बहुत सारे पारा मेडिकल स्टाफ हैं, बहुत सारे मरीज आते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस के रहते हैं, लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के ही कारण बहुत सारे ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन अगर इंटर भी कर गया तो लेटेंट अवस्था में रहता है
1: जी।
2: जब इम्यूनिटी कम होगी तो वो फ्लेयर अप हो जाएगा। तो ट्यूबरकुलोसिस का एक्सपोजर बहुत लोगों को रहता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सबको ट्यूबरकुलोसिस ही है।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि बात की एक्सपोजर की
2: जी,
1: ये तो इसको हम एक रूप में ले सकते हैं लक्षण के, कि कैसे हम समझें कि ये वाकई में टीबी है, क्या कुछ इसके विशेष लक्षण है।
2: ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण जो होता है सामान्य तौर पर हमारे शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है
1: जी,
2: लेकिन जो मुख्य तौर पर जो हमारे अंग हैं वो फेफड़े हैं जो ग्रसित होते हैं। इनमें सिम्टम्स बहुत जल्दी आता है, खास करके उन मरीजों में जिनमें 2-3 सप्ताह से लगातार खांसी हो रही हो
1: जी जी।
2: नंबर वन। नंबर टू की खांसी में कभी कभी ब्लड भी आता हो उनके खखार में। तीसरा सिम्टम है थे कि उनको आफ्टरनून में, जैसे कि दोपहर के बाद सामान्य तौर पर बुखार 99-100 इस तरह से करीब रहता हो, पसीना बहुत छूटता हो, भूख कम लगता हो, कभी कभी छाती में दर्द रहता हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, ये सब लक्षण जो हैं वो सामान्य तौर पर हम लोग फेफड़े के टीबी के ही लक्षण से इसको कंपेयर करते हैं।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, लक्षण अगर हमें पता चले, अभी एक घर में कई लोग, कई परिवार एक साथ रहते हैं, तो संक्रामक के स्तर पर देखें कि ये कितना संक्रामक है फैलने के स्तर पर।
2: देखिए, अगर किसी भी घर के फैमिली के सदस्य को इस तरह से जो मैंने सिम्टम्स बताया

0: अगर है
1: जी
0: तो ये तो समझ लेना चाहिए कि उसकी तो जांच होनी ही चाहिए। कोई भी 2 हफ्ता 3 हफ्ता से लगातार बुखार रह रहा है, हल्का हल्का खांसी में खून आ रहा है, छाती में दर्द है, भूख नहीं लगती है, पसीना छूटता है, ये सब जो लक्षण है वो तो टीबी के ही लक्षण होते हैं ज्यादातर
1: जी
0: ज्यादातर।
1: जी
0: तो उसमें तो आपको भी थोड़ा सा परहेज बरतना होगा। जो जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनको बोल देना होगा कि थोड़ा आप मास्क लगा के रहिए, थोड़ा सा दूरी बना करके रहिए, और अपने भी रुमाल या मास्क कोई भी अगर छींके और खांसे भी वैसे मरीज, तो उनको कहना चाहिए कि अपने केहूनी पर खांसे या चेहरे को ढक करके रखें, ताकि अन्य लोग को ग्रसित करने से यथासंभव रोका जा सके।
1: जी मतलब कि ये टीबी संक्रामक है, इससे बचाव करना बेहतर उपाय है।
0: जहां तक हो सके तो बचाव किया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे स्टूडियो में आप हमारे हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में पधारे और टीबी क्या है, कैसे फैलता है, इसके क्या मुख्य लक्षण हैं, इस विषय पर हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य सूचनाएं। इसके अंतर्गत आपने सुना भेंटवार्ता, टीवी के रोग कारण लक्षण और उपचार। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर ज्योति रंजन पांडे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर में यानी 7:05 पर आप सुनेंगे सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हालचाल। सात बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे गजल, कलाकार होंगे नईम अली। शास्त्रीय संगीत में मालिनी राजूकर का शास्त्रीय गायन आप सुनेंगे 7:25 पर। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण होगा 9:10 पर और 10 बजे रसमंजरी के अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 10:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। 11:00 आप सुनेंगे 11 बजे। दोपहर 12 बजे सुनिए बिहार का लोक संगीत। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी जगत। 1 कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:05 पर और देशगान होगा 1:20 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 1:30 पर। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे 4:30 पर। मैथिली कार्यक्रम भारती का प्रसारण होगा 5:30 पर और 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। शाम 6:30 पर आप सुन सकेंगे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण होगा और खेती गृहस्थी का प्रसारण होगा 7:00।

0: तो ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधन मूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य अर्थात ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र सम्बद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मासपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लक्षं ट्रक यानानि 16,000 बस यानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मंत्रिमंडलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात पारादी पर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमति प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रीय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खंडस्य चतुर्पथ परियोजनापि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला सम्बद्धानां अशेषेषु पक्षेषु मन्थनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा परिवहनं नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणाम् अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारतदेशस्य 5-दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्नेहि विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य 2-दिवसीय यात्रायां अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्रीशाहः पुष्पवन्त पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डे 21 जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिण दिल्ल्यारक्षि विभागस्य उपायुक्तः अनंत मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमन विभागस्य 8 वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः

0: त्रिंशदधिकाः जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्तपरिवारान् प्रति गहनसंवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील

0: ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम हालचाल। सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हालचाल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश दुनिया के इतिहास के बारे में और क्या खास है आज के दिन। जी हाँ, यानी आज के दिन देश दुनिया में क्या घटनाएं घटी इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं 4 जून का इतिहास क्या खास है देश दुनिया में। जी हाँ, आज ही के दिन थिन आनन स्क्वायर नरसंहार यानी चीन की राजधानी बीजिंग में शांतिपूर्वक लोकतंत्र की मांग कर रहे निहत्थ नागरिकों और छात्रों पर सेना ने टैंकों और बंदूकों से बर्बर कार्रवाई की थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। और आज के ही दिन द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1940 में फ्रांस के डेनकर्क क्षेत्र में फंसे 3 लाख से अधिक ब्रिटिश और उनके सहयोगी सैनिकों को सुरक्षित निकालने का अभियान पूरा किया गया। हम आपको बता दें कि 1919 में आज के ही दिन अमेरिकी सीनेट ने 19वां संशोधन पारित कर महिलाओं को मतदान करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया। और श्रोताओं, 2006 में युगोस्लाविया के पूर्ण गणराज्य मोंटेनेग्रो ने स्वतंत्रता की घोषणा की। आज के ही दिन 2007 में चीन के उप प्रधानमंत्री हांग शू का निधन हुआ था। और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को वर्ष 2006 का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2008 में हरियाणा सरकार ने पारिवारिक पेंशन का लाभ 25 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को देने की घोषणा की। और न्यूयॉर्क के सीनेटर हिलेरी क्लिंटन को पछाड़ते हुए आज के ही दिन बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति के पद डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी हासिल की थी। तो श्रोता, हुई ना जानकारी भरी बातें, बातें अभी और भी है ढेर सारी। यानी आज हम लोग कौन सा दिवस मना रहे हैं, तो आज हम लोग मना रहे हैं आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो श्रोताओं, जानकारी और बातें अभी ढेर सारी हैं, पर सुनते हैं इस गाने के बाद।

तो श्रोता, हम बात कर रहे थे आज यानी 4 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं। जी हाँ, आक्रामकता के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल हिंसा और संघर्षों में पीड़ित बच्चों की रक्षा और उनके अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस मनाने का उद्देश्य है कि दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार बच्चों द्वारा झेली गई पीड़ा को पहचानना है। ऐसे इस दिवस की शुरुआत मूल रूप से लेबनान युद्ध के बाल पीड़ितों के दर्द को उजागर करने के लिए की गई थी। बाद में इसके दायरे को बढ़ाकर विश्व स्तर पर बच्चों के अधिकार की रक्षा करना और सभी प्रकार की हिंसा को मिटाना यह शामिल है। और अब श्रोता, हम बात करते हैं सेहत से जुड़ी। जी हाँ, गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप हल्का और सुपाच्य भोजन करना बहुत ज़रूरी है। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिए। मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा अपने डाइट में शामिल करें और पाचन को ठीक रखने के लिए ज़्यादा तेल मसाले वाले खाने से बचें। तरल पदार्थों का सेवन जरूर करें। पानी के अलावा नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ और लस्सी का

0: नियमित रूप से सेवन करें। और यदि धूप में निकलना है तो कोशिश करें कि सर को ढककर चलें या छाता का इस्तेमाल करें, और बहुत ज़रूरी हो अगर तो ऐसे दोपहर 12 से 4 बजे के बीच तेज धूप में ना ही निकलें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो छाता, टोपी, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करें और योग को अपने दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। तो श्रोताओं, इसी के साथ सूचना एवं मनोरंजन से भरा हमारा कार्यक्रम हालचाल अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए नई मेल अली के गाए गजल।
1: साथ साझा करेंगे तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की।

ऐसे ही आगे बढ़ते रहें प्रमोद, और देश का नाम रोशन करते रहें। वेल, आप भी रोशन कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सुबह हो गई है, उठ जाइए। और कहा जाता है कि

अभी आप सुन रहे थे गजल कलाकार थे नईम अली। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में मालिनी राजूकर का शास्त्रीय गायन, राग है नटभैरव। विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत की बंदिश भी एक ताल में निबद्ध है।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मालिनी राजूकर का शास्त्रीय गायन राग था नट भैरव। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक जमाने से कहा

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा करें।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
3: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
5: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प

0: कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
3: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म्स से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
2: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। MSME, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
2: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
5: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कला और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया

0: है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवम्बर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला

0: To begin today in Ahmedabad, Prime Minister Narendra Modi to join the event. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और फुटबॉल में गोवा में भूटान को एक गोल से हरा कर भारत खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ बातचीत करेंगे। मोहतरमा रोड्रिगेज भारत के 5 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। उनके हमरा मुख्तलिफ महकमों के वजीरों पर मुश्तमिल एक वफ्द भी भारत आया है। इसमें उमूर खारजा, मईशत, खजाने, साइंस और टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं। मोहतरमा रोड्रिगेज इससे पहले साल 2015 में वजीर खारजा की हैसियत से और इसके बाद 2019, 2023, 2024 और 2025 में नायब सदर की हैसियत से भारत के दौरे पर आ चुकी हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस बातचीत में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के तमाम तर पहलू ज़ेरे गौर आएंगे और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने के तौर तरीके तलाश किए जाएंगे, जिनमें तवानाई की यकीनी फराहमी, तिजारत, सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्ज़ान सेहत, नकलो हमल और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे शामिल हैं। वेनेजुएला का वफद भारत की तकनीकी और सनती सलाहियत से वाकफियत हासिल करने और इश्तराक के मौके तलाश करने की खातिर तवानाई, दवासाजी और मोटर गाड़ियों के शोबे से वाबस्ता कई मकामात का दौरा भी करेगा। तवानाई और सरमायाकारी के शोबे में भारत वेनेजुएला का एक अहम साझेदार रहा है। भारत के सरकारी मिल्कियत इदारों ने तवानाई के शोबे में वेनेजुएला में काफी सरमायाकारी की है और वो अपनी मौजूदगी बढ़ाने की खातिर मुख्तलिफ मौके तलाश करने के ख्वाहिशमंद है। उम्मीद है कि वेनेजुएला के लीडर के इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और मुख्तलिफ शोबों में राबतों को तकवीत भी मिलेगी। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मेघालय के शहर शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। शुमाल मशरकी खित्ते के फरोग से मुतालिक वजारत ने कहा है कि इस इजलास में इलाकाई तरक्की के अहम शोबों के लिए तश्कील दी गई आला सतह की सीएम टास्क फोर्सेज की पेशरफ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास के दौरान सियाहत, ज़राअत, बागबानी, सरमायाकारी के फरोग, दूध, अंडों, मछली और गोश्त में खुद किफालत, खेलों के फरोग, इकतसादी कॉरिडोर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और हथकरघा और दस्तकारी के बारे में प्रेजेंटेशंस पेश की जाएंगी। उम्मीद है कि इस तबादला ख्याल से मुश्तरक मकासद के हुसूल के लिए रियासतों और मुतल्लिका फरीकों के माबैन तालमेल के साथ इकदामात करने में सहूलत होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। अपने इस दौरे में जनाब अमित शाह पुष्पा बांता पैलेस होटल का संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब में शिरकत करेंगे। लंका मूरा के मकाम पर सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ की सरहदी चौकी पर वो जाएंगे और रियासती नीज मरकजी सिक्योरिटी अहदेदारों के साथ आला सतह की मीटिंग करेंगे। रियासती सरकार ने जनाब अमित शाह के दौरे के सिलसिले में आला सतह की इंतजामी और सिक्योरिटी मीटिंग का भी एहतमाम किया है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कानून साजों से कहा है कि अमरीका और भारत अपने उस तजारती समझौते को हतमी शक्ल देने से महज कुछ हफ्ते दूर हैं जिसका तवील अरसे से इंतजार था। खारजी उमूर से मुतालिक हाउस कमेटी के सवालों के जवाब देते हुए कल रात जनाब रूबियो ने बताया कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली समझौते को मुकम्मल करने के करीब हैं। जनाब रूबियो ने इस बात को कई बार उजागर किया कि भारत बहरुल काहल खित्ते में भारत अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। उनका यह बयान दुनिया की दो सबसे बड़ी اور سب سے قدیم جمہوریت کے درمیان

0: साल 2016 में शुरू हुआ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, ख्वातीन कारोबारियों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, अपनी मदद आप ग्रुपों और दिव्यांग जनों को खरीदारी के असल धारे से जोड़ रहा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जैम पर एक फरोख्त कुनिंदा और कंपनी की सीएमडी कामिनी गुप्ता ने बताया कि जैम का तरीकेकार आसान और शफाफ है।
1: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जिम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
0: नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
2: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज शाम गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रही है, जो खेलों के आलमी मंजरनामे पर एक तारीखी संग मील की हैसियत रखती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस बड़े प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस चैंपियनशिप के लिए दुनिया भर से योग के मद्दाह और एथलीट्स अहमदाबाद में जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: इस पांच रोजा चैंपियनशिप में अमेरिका समेत 60 मुल्कों के 400 से ज्यादा शुरका हिस्सा लेंगे। इसका एहतमाम वर्ल्ड योगासन के तहत किया गया है और योगासन भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। संगे मेल की हैसियत रखने वाले इस प्रोग्राम का मकसद आलमी सतह पर योग और तंदुरुस्ती के बारे में बेदारी फैलाने के साथ साथ आलमी सतह पर खेल मुकाबलों में योग को शामिल करने की राह हमवार करना है। इस मुकाबले में शामिल होने वाले एथलीट्स योगासन के 7 जुमरों में हिस्सा लेंगे। आलमी सतह पर मेयार परख के पैमाने के तहत कुवत, लचक, तवाजुन, पायदारी और दुरुस्तगी की बुनियाद पर योगासन करने वालों को परखा जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
2: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में वाकई गेस्ट हाउस में गुज़िश्ता रोज लगी जबरदस्त आग में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि महलुकीन में 12 गैर मुल्की और 9 भारतीय शहरी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक आग लगने वाली इमारत के मालिक लोकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान दिल्ली के वजीर आला के दफ्तर ने कहा कि उन खामियों की पूरी संजीदगी से जांच की जाएगी जो इस अफसोसनाक आतिशजदगी वाकई की वजह बनी, और जवाबदेही तय की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कल रात ब्रह्मपुर थाने के तहत आने वाले इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल में जबरदस्त आग लगने से 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मगरबी बंगाल के हिमालयी जैली खित्ते, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश होने का इम्कान है। फुटबॉल में मेजबान भारत गोवा के मारगाव में सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम।
0: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल की बरसरे इकतदार पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामी छाने की मुलाकात को नुमाया किया है, जिसमें पीएम ने कहा कि भारत नेपाल के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। अखबार की एक और अहम खबर है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कबायली अफराद की हमाजहत तरक्की से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि आदिवासियों की हमाजहत तरक्की के लिए उनके पास जाकर उनके मसाइल को समझना होगा। मरकजी हुकूमत फिजाई आलूदगी को कम करने के मकसद से दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलेगी।
2: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और फुटबॉल में गोवा में भूटान को 1-0 से हराकर भारत खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में

0: पहुंच गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
3: डेयरी एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बंद का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
1: डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर आईटी सेंटर स्थापित करेगी, कैबिनेट की बैठक में हुआ निर्णय। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की नीति 10 दिनों में तैयार हो जाएगी। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आज सुबह अगलगी की घटना में 3 मरीजों की मौत, 20 से अधिक लोग घायल। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम और गया समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अधिकतर स्थानों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर आईटी सेंटर स्थापित करेगी। इसके तहत बिहार सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नियमावली के द्वारा जिला ई गवर्नेंस पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि आम लोगों को डिजिटल सेवाओं से जुड़ने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी।
7: सूचना प्रावैधिकी विभाग का एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
6: अपर मुख्य सचिव ने बताया कि एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि आय सीमा बढ़ने से अधिक मरीजों को योजना का लाभ मिलेगा।
7: स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को इलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे 4 लाख रुपए करने की स्वीकृति दी गई।
6: राज्य मंत्रिमंडल ने बक्सर के नबीनगर औद्योगिक क्षेत्र में पेय पदार्थ उत्पादन इकाई को वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति भी दी है। एक अन्य फैसले में कैमूर जिले के मोहनिया स्थित दादर मौजा की 7

0: अर्जित जमीन पर डेयरी और दुग्ध उत्पादन संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने कुल 13 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। केंद्र सरकार ने बिहार में एनएच 31 और एनएच 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन में उन्नयन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत 144 किलोमीटर लंबी सड़क का अपग्रेडेशन किया जाएगा। इस पर 3,936 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पूर्णिया शहर में ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण किया जाएगा।
1: खगड़िया से पूर्णिया सेक्शन को लिया गया है। इस सेक्शन की लेंथ है 144 किलोमीटर और कॉस्ट आएगी 3,936 करोड़ रुपीज। 4 लेनिंग होगी और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा। एग्जिस्टिंग 2 लेन रोड है जिसको कि अपग्रेड किया जाएगा 4 लेनिंग से। बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है ये और आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी इसी से जुड़ती है।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की प्रस्तावित नीति 10 दिनों में तैयार हो जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत शिक्षकों के साथ ही प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला इस महीने शुरू होगा। इसके लिए समानुपतिकरण का कार्य 10 जून तक पूरा हो जाएगा।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है विभाग, उसको टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए महिलाओं का ट्रांसफर, पुरुषों का ट्रांसफर, और इसको लेकर के हमारी नीति अगले 10 दिन में हम पूरा करेंगे और जून महीने में ट्रांसफर से जुड़े हर प्रकार के समस्या का समाधान हो जाएगा। जब हमारे विद्यालय खुलेंगे तो हमारे सभी शिक्षक जिनको ट्रांसफर को लेकर समस्या रहती थी, वो अपने जिस विद्यालय को उन्होंने ऑप्शन दिया होगा उस विद्यालय में वो नजर आए।
0: एक अन्य सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही नया कोचिंग कानून लागू होगा। नए कानून के लागू होने के बाद कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि कोचिंग कानून के लिए बिहार कोचिंग संस्थान विधेयक 2026 लाया जाएगा।
2: एक नीति भी बनाएंगे आने वाले दिनों में। ये कोचिंग संस्थान अगर आपस में प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के साथ इस प्रकार की स्थिति करेंगे और उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होगी, तो इसको रोकने के लिए एक नीति भी बनाएंगे। कोचिंग संचालकों के लिए एक नीति बना करके और उस नीति के अंदर में इनको बैन करें।
0: उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और होटलों के निर्माण के लिए 31 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की गई है। पटना में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा की बैठक में उद्योग मंत्री ने कहा कि 16 औद्योगिक इकाइयों के लिए 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से बिहार में 992,63,00,000 रुपए के निवेश का अनुमान है। श्री सिंह ने कहा कि औद्योगिक इकाई के लिए पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में भूमि आवंटित की गई है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में आगलगी की घटना में 21 लोगों की मौत के बाद बिहार पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने पटना और नालंदा के सभी होटल और गेस्ट हाउसों की जांच के निर्देश दिए हैं। 3 चरणों में इन जिलों के होटल और गेस्ट हाउस की जांच 15 जुलाई तक पूरी करने का आदेश दिया गया है। पहले चरण में 15 जून तक इन जिलों के सभी थानाध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र के होटलों की सूची बनाकर पुलिस उपाधीक्षक को सौंपनी होगी। वहीं दूसरा चरण 15 जून से 30 जून के बीच चलेगा, जबकि तीसरा चरण 15 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। अनुसंधान अपराध विभाग सीआईडी ने गोपालगंज में जदयू विधायक आनंद सिंह और अमरेंद्र कुमार पांडे के खिलाफ दर्ज अलग अलग कांडों की जांच शुरू कर दी है। दोनों विधायकों पर आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 2 पदाधिकारियों के नेतृत्व में अनुसंधान किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिले के मीरगंज थाने में एक कार्यक्रम के दौरान मोकामा के विधायक आनंद सिंह की मौजूदगी में समर्थकों द्वारा हथियार लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं कुचायकोट थाने में जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे पर जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला दर्ज है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आज सुबह आगलगी की घटना में 3 मरीजों की मौत हो गई, वहीं 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार आग अस्पताल के ICU में लगी और पूरे अस्पताल में फैल गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काफी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात सामने आ रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्र ने कहा कि इस मामले में लापरवाही के दोषी सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। तो कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
1: मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम और गया जी सहित राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अधिकतर स्थानों पर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है।
3: अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
1: पिछले 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं कैमूर का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस, वाल्मीकि नगर का 40.2 और पटना का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर विभाग ने सीमांचल और कोसी क्षेत्र के कुछ जिलों में आज आंधी बारिश की आशंका भी जताई है। भागलपुर स्थित विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर निर्मित बेली ब्रिज पर 7 जून से यातायात सेवा शुरू हो जाएगी। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि पुल पर वाहन परिचालन का ट्रायल सफलता के साथ पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अप्रोच रैंप का निर्माण कार्य भी अगले 2 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। श्री पाल ने कहा कि परीक्षण के दौरान 2.5 टन वजन वाले 4-पहिया वाहन को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाकर पुल की मजबूती और सुरक्षा का आकलन किया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों के अनुसार परीक्षण पूरी तरह सफल रहा और पुल पर यातायात संचालन के लिए आवश्यक मानकों की पुष्टि हो गई है। इसके बाद 7 जून से वाहनों का नियमित परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। बेली ब्रिज के चालू होने से भागलपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। कटिहार रेल मंडल में चल रहे दोहरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेलवे ने 12 जून को सहरसा सियालदा हाटे बाजार एक्सप्रेस के परिचालन मार्ग में बदलाव किया है। इस दिन ये ट्रेन पूर्णिया बनमंखी मधेपुरा मार्ग की जगह मानसी नौगछिया कटिहार के रास्ते संचालित होगी। मालदा रेलमंडल के ADRM AK मौर्य ने जमालपुर का दौरा कर विभिन्न रेल परियोजनाओं और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। ADRM ने डीजल शेड के पास निर्माणाधीन नई पिट लाइन, एग्जामिनेशन लाइन, सर्विस बिल्डिंग समेत अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में जिले में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा पेंशन योजना की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में DDC डॉक्टर प्रदीप कुमार ने HIV/AIDS से बचाव के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया। जिले में 17 अगस्त तक विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर एड्स, सिफिलिस और अन्य बीमारियों की जांच निशुल्क की जाएगी। पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह, बगहा के पुलिस अधीक्षक, SSB कमांडेंट और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों

0: ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान जमीन विवाद को लेकर स्थल निरीक्षण किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में किसी विवाद और संवेदनशील गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। छपरा स्थित सदर अस्पताल की मनोचिकित्सक डॉक्टर निधि कुमारी ने लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। राजस्थान में कल से आयोजित होने वाली 36वीं जूनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। पटना में आयोजित ऑल इंडिया महिला टेनिस टूर्नामेंट में पटना की भार्गवी शर्मा ने उत्तर प्रदेश की इराम जैदी को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भार्गवी का सामना तमिलनाडु की सिलेश्वरी से होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान का शीर्षक है, राज्य मंत्रिमंडल का फैसला, मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से अब 4 लाख रुपए तक आय वालों को भी सहायता। दैनिक जागरण लिखता है, स्कूली बस में अनिवार्य रूप से लगाना होगा सीसीटीवी, जीपीएस और पैनिक बटन। प्रभात खबर ने सरकारी टेंडर में हेराफेरी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, ऋषु श्री के ठेके में क्यों बनाए पेटी कॉन्ट्रैक्टर। अखबार लिखता है, होगी जांच। दैनिक भास्कर ने आरबीआई के हवाले से लिखा है, सोना बेचने की खबर भ्रामक, 1 साल में भंडार बढ़ा। आज अखबार का शीर्षक है, बिहार में क्यूआर कोड यूपीआई से जमा होगा ई चालान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर आईटी सेंटर स्थापित करने का फैसला किया। कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की नीति 10 दिनों में तैयार हो जाएगी। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आज सुबह अगलगी की घटना में 3 मरीजों की मौत, 20 से अधिक लोग घायल। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम और गया समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अधिकतर स्थानों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502, हमारा ईमेल एड्रेस है पटना CBS @gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी।

0: आकाशवाणी
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है, लीजिए सुनिए उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

प्रोग्राम का आगाज हर दिन की तरह आज भी गजल से ही होगा। इसके बाद आज आप सुनेंगे अफसाना, और अफसाना के बाद कलामी शायर में बद्दोज़्ज़मां से उनके खूबसूरत कलाम समाप्त करेंगे, और प्रोग्राम के आखिर में चंद गजलों का लुत्फ उठाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की इस खूबसूरत गजल से।

0: सामाई नबी आप पंकज उदास और अनुराधा परवाल की आवाज़ में सुन रहे थे ये प्यारी सी गज़ल। आज 4 जून है, आज जारहियत के शिकार बच्चों का आलमी दिन है। आज का दिन जारहियत के शिकार बच्चों के लिए मखसूस है। 1982 में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की पहल से इसे शुरू किया गया था, जिसका बुनियादी मकसद दुनिया भर में जंग और तशद्दुद से मुतासिर बच्चों को, मासूम बच्चों की जो तकलीफ़ है उसको उजागर करना है, इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। मौजूदा दौर में दुनिया के कई ममालिक जंग जदल की लपेट में हैं। इन इलाक़ों में रहने वाले करोड़ों बच्चे बराह रास्त जंग, बीमारी और तशद्दुद की जद में हैं और रोज़ाना तशद्दुद और मौत का सामना कर रहे हैं। अपने प्यारों की जुदाई और खौफ ने इनके जहनी नशोनुमा को रोक दी है। ऐसे बच्चों को खुराक, सेहत, तालीम और शफाफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियतें भी मुयसर नहीं होती हैं। बम धमाकों और गोलीबारी में हज़ारों बच्चों या तो अपनी जान गंवा बैठते हैं या हमेशा के लिए माजूर हो जाते हैं। तशद्दुद और गुर्बत के शिकार बच्चों को मशक्क़त कराई जाती है और इन्हें जरायम की दुनिया में धकेल दिया जाता है। इसलिए ये ख्याल रहे कि जारियत के शिकार बच्चे का आलमी दिन सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाने या मनाने का एक नहीं बल्कि ये सब हम लोगों को याद दहानी का दिन है। ये इससे हमारे लिए ये एक याद दहानी होती है कि हम इन बच्चों के लिए आवाज़ बने। बैनुल अक्वामी इदारों को जंग दा इलाक़ों में बच्चों की जो हिफाजत और बहाली के लिए ठोस इकदाम उठाने चाहिए ताकि वो पूरा अमन और महफूज माहौल में परवरिश पा सकें। और ये हम सब की जिम्मेदारी भी है कि हम इन सब पर तवज्जो दें, इन सब पर ध्यान दें। तो ये थी आज की बात। चलिए अब चलते हैं अब अगले प्रोग्राम की जानेब और सुनते हैं आज का अफसाना। अफसाना का उन्वान है मॉडर्न लड़की और अफसाना निगार हैं शीबा कौसर।
1: आज फिर अदनान की शादी को लेकर घर में खूब हंगामा मचा था। अदनान की अम्मी को अपने भाई की घरेलू लड़की राहिया पसंद थी, मगर अदनान को उसके अब्बू के दोस्त नसीम साहब की लड़की मारिया पसंद थी। आखिर राहिया में ऐसा क्या है जो आप उसे इतना पसंद करती हैं? अदनान ने अपनी अम्मी मासूमा बेगम से पूछा। अदनान बेटे, तुम्हें अभी ज़िंदगी का तजर्बा नहीं है। राहिया में वो सब खूबियां हैं जो एक सलीकेमंद अच्छी लड़की में होनी चाहिए। मैं मज़ीद क्या कहूँ, ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती, मासूमा बेगम ने अफसोदगी से कहा। अम्मी जान, मुझे तो मॉडर्न लड़की ही चाहिए, मारिया जैसी। राहिया किसी भी तरह मॉडर्न नहीं है, अदनान ने मुंह बनाकर कहा। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और चल पड़ा मारिया के घर की जानिब। मारिया घर में अकेली थी। उसके वालिद साहब नसीम अहमद

इंडियन आर्मी में पोस्टेड थे, वो छुट्टियों में ही घर आते थे। मारिया की वालदा को घूमने फिरने और शॉपिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मारिया की तरबियत करती। अदनान अली ने मारिया को फिल्म चलने के लिए कहा, वो फौरन राजी हो गई। वो तैयार होने के लिए अपने बेडरूम में चली गई। इसी बीच कॉल बेल बजी। अदनान अली ने दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान पैकेट लिए खड़ा था। मारिया मैडम घर में हैं क्या, उन्हें बुला दें। उस नौजवान ने पूछा, हाँ बोलिए, क्या काम है? अदनान अली ने कहा, ये पैकेट उनको दे देंगे। उस नौजवान ने कहा, मारिया तैयार होकर आई तो अदनान ने पैकेट बढ़ाया। मारिया ने उस पैकेट को जल्दी से अपने हाथों में ले लिया, जैसे कोई बहुत कीमती शय हो। क्या है इसमें? अदनान अली ने पूछा। वो मेरा कुछ जरूरी सामान है, मारिया ने टालते हुए कहा। वो दोनों फिल्म देखने पहुंचे। जब अंधेरा हो गया और फिल्म शुरू हो गई तो मारिया ने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। ये क्या कर रही हो? लोग देख लेंगे, अदनान अली ने कहा। तुम्हारी सोच बहुत दकियानूसी है, मारिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। फिल्म खत्म होते ही दोनों वापस घर की तरफ चल पड़े। अचानक से बीच रास्ते में अदनान की मोटरसाइकिल खराब हो गई। रात के 11 बज रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर से बार बार कॉल आ रही थी, कहाँ हो तुम? अब तक तुम घर क्यों नहीं आए? फौरन घर पहुँचो, ये अम्मी का हुक्म था। मारिया ने आती जाती गाड़ियों को लिफ्ट लेने के लिए रोकना चाहा, पर नाकाम रही। कुछ देर बाद एक जीप रुकी और पुलिस की वर्दी में एक नौजवान उतरा। उसने पूछा, क्या बात है? हमारी बाइक खराब हो गई है सर, प्लीज हमारी हेल्प करें। मारिया ने कहा। जीप की हेडलाइट की रोशनी में अदनान ने जब उस पुलिस वाले का चेहरा देखा तो खुशी से चिल्ला पड़ा, अरे सामिर तुम, अरे अदनान तुम, वो भी इतनी रात में, सब खैरियत? हाँ यार सब खैरियत, देखना यार अचानक से मेरी बाइक खराब हो गई है, मुझे लिफ्ट चाहिए। दरअसल सामिर और अदनान दोनों साथ साथ पढ़े थे। सामिर की नौकरी पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर हो गई थी। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग इसी शहर में हो गई है। सामिर ने उनको मारिया के घर तक छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद अदनान को अपने काम के सिलसिले में पटना जाना पड़ा, जहां राहिया रहती थी। बेटा कहीं और ठहरने की जरूरत नहीं, भाईजान के यहाँ ठहर जाना, मासूमा बेगम ने अदनान से कहा। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी, अदनान ने इस बात में सरखम किया। अदनान राहिया के यहाँ पहुँचा तो वो लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। मामानी जान ने उसके लिए ऊपर एक कमरा सेट कर दिया, मगर राहिया उसके सामने नहीं आई। दूसरे दिन अपने काम के सिलसिले में अदनान कहीं निकल गया। रास्ते में बारिश शुरू हो गई और वो थोड़ा भीग गया, जिसके बाद उसे सर्दी लग गई। देर रात उसकी नींद खुली तो उसे तेज बुखार था। दरवाजा खोलकर वो नीचे आया। उसने सोचा कि किचन में जाकर पानी पी ले, वहाँ हल्की रोशनी थी। उसने देखा कि कोई लड़की किचन साफ कर रही थी। सुनिए, क्या एक कप चाय मिल सकती है? ये कहकर अदनान ने राहिया को देखा तो देखता ही रह गया। राहिया का प्यारा सा चेहरा उसके सामने था। राहिया इतनी खूबसूरत होगी वो सोच भी नहीं सकता था। जी मैं चाय भेजती हूँ, राहिया ने धीरे से कहा। कुछ देर बाद अदनान ने चाय के साथ दवा ली तो उसे कुछ आराम मिला। काम खत्म होने पर अदनान वापस अपने घर लौट आया, लेकिन उसकी नजरों के सामने राहिया का चेहरा था। वो फैसला नहीं कर पा रहा था के वो किसका इंतखाब करे। एक तरफ राहिया की सादगी, सलीकगी और मतानत थी तो दूसरी तरफ मॉडर्न मारिया थी, जिसे वो चाहता था। उस दिन अदनान के घर पर ही था कि अचानक से मोबाइल बज उठी। हेलो कौन? मैं सामिर बोल रहा हूँ, तुम फौरन यहाँ आ जाओ, सामिर ने उसे एक एड्रेस बताया। लेकिन बात क्या है यार, अदनान ने हड़बड़ा कर पूछा। मोबाइल पर? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, सामिर ने कहा। अदनान ने जल्दी से अपनी बाइक निकाली और सामिर के बताए हुए जगह पर पहुँच गया। वहाँ पर कई पुलिस वाले खड़े थे। उसने
घबरा कर पूछा, क्या बात है अदनान? कुछ लड़के लड़कियां नशीली अद्वियात लेते पकड़े गए हैं, उनमें वो लड़की भी है जो तुम्हारे साथ उस दिन फिल्म देखकर लौट रही थी, इंस्पेक्टर सामिर हसन ने बताया। क्या? अदनान हैरान रह गया। अदनान को तभी वो पैकेट याद आया जो एक नौजवान मारिया को

0: गया था। तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो, वो लॉकअप में है, सामिर ने कहा। अदनान सामिर के साथ लॉकअप में पहुंचा। उसने देखा कि मारिया दूसरे लड़के लड़कियों के साथ खड़ी है। प्लीज अदनान, मुझे यहाँ से निकालो, सामिर तुम्हारा दोस्त है, मारिया ने उसे देखकर कहा। ये सब तुमने क्यों किया बताओ, मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझता था, अदनान ने गुस्से से कहा। मॉडर्न सोसाइटी में तो ये सब चलता ही है अदनान, मेरी बदकिस्मती है कि मैं पकड़ी गई, मारिया ने बगैर किसी शर्मिंदगी से कहा। अगर मॉडर्न होना इसी को कहते हैं तो मुझे तुम जैसी मॉडर्न लड़की नहीं चाहिए, मेरे लिए तो सीधी सादी राहिया ही अच्छी है, अदनान ने कहा और वहां से चला गया। मारिया हैरत से उसे जाता हुआ देखती रही।
1: सामईन, अभी आप सुन रहे थे अफसाना मॉडर्न लड़की। अफसाना निगार थी शिबा कौसर। आइए अब बद्रुद्दमा से उनके खूबसूरत कलाम समाप्त करते हैं।
2: अपनी चंद ताज़ा गज़लों के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। पहली गज़ल के चंद अशार मुलाहज़ा फरमाएं। मतला अर्ज़ किया है, हर एक चीज़ न क्यों अपनी जा से हट जाए, हर एक चीज़ न क्यों अपनी जा से हट जाए, हर एक चीज़ न क्यों अपनी जा से हट जाए, मगर लबों से तेरे नाम की न रट जाए, मगर लबों से तेरे नाम की न रट जाए। और हुसैन मतलब देखें कि हमारा साया तेरे पास यूं सिमट जाए, हमारा साया तेरे पास यूं सिमट जाए, हमारा साया तेरे पास यूं सिमट जाए, कि जैसे फूल से तितली कोई लिपट जाए, कि जैसे फूल से तितली कोई लिपट जाए। और किसी के चेहरे का सूरज दिखाई दे मुझको, किसी के चेहरे का सूरज दिखाई दे मुझको, घटा जो धुंध की छाई हुई है छट जाए, घटा जो धुंध की छाई हुई है छट जाए। पनाह लेना कहाँ है सितम जदह जाने, पनाह लेना कहाँ है सितम जदह जाने, पनाह लेना कहाँ है सितम जदह जाने, ज़मीन शक हो अगर आसमां भी फट जाए, ज़मीन शक हो अगर आसमां भी फट जाए। लहू भी दौड़ता फिरता मेरी रगों में रहे, लहू भी दौड़ता फिरता मेरी रगों में रहे, कि सांस लेने में ये ज़िंदगी न कट जाए, कि सांस लेने में ये ज़िंदगी न कट जाए। नहीं कबूल सफ़र का मुहासबा मुझको, नहीं कबूल सफ़र का मुहासबा मुझको, नहीं कबूल सफ़र का मुहासबा मुझको, कि संग मील मेरे रास्ते से हट जाए, कि संग मील मेरे रास्ते से हट जाए। और मक्ता अर्ज़ किया है कि नमी का होना ज़रूरी है बद्र आँखों में, नमी का होना ज़रूरी है बद्र आँखों में, मिले न इतनी खुशी रंगे दिल उचट जाए, मिले न इतनी खुशी रंगे दिल उचट जाए। और दूसरी गज़ल के चंद अशआर मुलाहज़ा फरमाएं। मतला अर्ज़ किया है, कुछ नहीं और फ़कत चश्मे इनायत मांगे, कुछ नहीं और फ़कत चश्मे इनायत मांगे, कुछ नहीं और फ़कत चश्मे इनायत मांगे, दिल मोहब्बत तेरी अज़राह मोहब्बत मांगे, दिल मोहब्बत तेरी अज़राह मोहब्बत मांगे। हुस्न मतलब देखें कि जलवाए हुस्न तेरा बज़्म अदालत मांगे, जलवाए हुस्न तेरा बज़्म अदालत मांगे, जलवाए हुस्न तेरा बज़्म अदालत मांगे, शेवाए इश्क मेरा शौके वकालत मांगे, शेवाए इश्क मेरा शौके वकालत मांगे। और शोख सूरत का नज़ारा किसी सूरत मांगे, शोख सूरत का नज़ारा किसी सूरत मांगे, शोख सूरत का नज़ारा किसी सूरत मांगे, जाने क्यों ऐसा मेरी सादा तबीयत मांगे, जाने क्यों ऐसा मेरी सादा तबीयत मांगे।

और अक्ल है कोई शहंशाह हुकूमत मांगे, अक्ल है कोई शहंशाह हुकूमत मांगे, अक्ल है कोई शहंशाह हुकूमत मांगे, दिल तो बस उसकी हुकूमत में वजारत मांगे, दिल तो बस उसकी हुकूमत में वजारत मांगे, रास दुनिया न जिसे आई वो जन्नत मांगे, रास दुनिया न जिसे आई वो जन्नत मांगे, रास दुनिया न जिसे आई वो जन्नत मांगे, नातवां जैसे कोई जिस्म की ताकत मांगे, नातवां जैसे कोई जिस्म की ताकत मांगे, रूए मन आईना खाना से सकूनत मांगे, रूए मन आईना खाना से सकूनत मांगे, रूए मन आईना खाना से सकूनत मांगे, आईना है के किसी और की सूरत मांगे, आईना है के किसी और की सूरत मांगे, आसमां ऐसा कहाँ बोझ उठाए कोई, आसमां ऐसा कहाँ बोझ उठाए कोई, आसमां ऐसा कहाँ बोझ उठाए कोई, आदमी है कि वो खुद बारे अमानत मांगे, आदमी है कि वो खुद बारे अमानत मांगे, कुछ नहीं और फ़कत चश्म इनायत मांगे, दिल मोहब्बत या ज़रा है मोहब्बत मांगे। तीसरी गज़ल के चंद अशआर भी मुलाहिज़ा फरमाएं। मतला अर्ज़ किया है, चलना कहाँ किसी तरह आसान इलाव पर, चलना कहाँ किसी तरह आसान इलाव पर, चलना कहाँ किसी तरह आसान इलाव पर, मुश्किल नहीं जो जिंदगी लग जाए दाव पर, मुश्किल नहीं जो जिंदगी लग जाए दाव पर, ऐसा है मुस्कुराना तेरा मेरे दूबदू, ऐसा है मुस्कुराना तेरा मेरे दूबदू, मरहम सब कुछ लगा दे कोई जैसे घावों पर, मरहम सब कुछ लगा दे कोई जैसे घावों पर। शेर देखें कि लगता है तन से रूह की यारी सी हो गई, लगता है तन से रूह की यारी सी हो गई, लगता है तन से रूह की यारी सी हो गई, खुश हूँ मैं एक शख्स से अपने लगाव पर, खुश हूँ मैं एक शख्स से अपने लगाव पर, अब पैहम उसी किस्मत मुझे देखना पड़ा, पैहम उसी किस्मत मुझे देखना पड़ा, पैहम उसी किस्मत मुझे देखना पड़ा, ढीली नज़र हुई न बदन के कसाओं पर, ढीली नज़र हुई न बदन के कसाओं पर, भर पाने को उसे मैं हुआ फिर पाने को उसे मैं हुआ शाह खर्च यूं, फिर पाने को उसे मैं हुआ शाह खर्च यूं, जैसे लुटाए जर कोई जिमनी चुनाव पर, जैसे लुटाए जर कोई जिमनी चुनाव पर, पलकों पे ख्वाब बैठे हैं अशकों के आसपास, पलकों पे ख्वाब बैठे हैं अशकों के आसपास, पलकों पे ख्वाब बैठे हैं अशकों के आसपास, रहती है भीड़ प्यासों की जैसे पियाओं पर, रहती है भीड़ प्यासों की जैसे पियाओं पर, कीमत लगाने वालों को लब खोलने दिया, कीमत लगाने वालों को लब खोलने दिया, कीमत लगाने वालों को लब खोलने दिया, यूसुफ क्या एतराज करे अपने भाव पर, यूसुफ क्या एतराज करे अपने भाव पर, चलना कहाँ किसी तरह आसान इलाव पर, मुश्किल नहीं जो जिंदगी लग जाए दाव पर। आखिरी गजल के चंद अशआर भी मुलाहिज़ा फरमाए। मतला अर्ज किया है, क्या था मैं सिलसिला लड़ाई का, छोटी भरा सहे ममतना के अशआर हैं, क्या था मैं सिलसिला लड़ाई का, क्या था मैं सिलसिला लड़ाई का, भाई दुश्मन अगर हो भाई का, भाई दुश्मन अगर हो भाई का, ऊंची कुटिया न चार पाई का। हुसैन मतला मुलाजा फरमाया कि ऊंची कुटिया न चार पाई का, ऊंची कुटिया न चार पाई का, मैं तलबगार हूँ चटाई का, मैं तलबगार हूँ चटाई का, हर्फ में मानी के दराने से, हर्फ में मानी के दराने से, हर्फ में मानी के दराने से, उड़ गया रंग रोशनाई का,
उर गया रंग रोश।

0: नाई का वह महसूर अपनी बाहों में, वह महसूर अपनी बाहों में, ये भी एक रुख है कज अदाई का, ये भी एक रुख है कज अदाई का। रास्ता जो बदल रहा हूँ मैं, रास्ता जो बदल रहा हूँ मैं, रास्ता जो बदल रहा हूँ मैं, पाटना है ये मेरा खाई का, पाटना है ये मेरा खाई का। मैं किसी राज सा हूँ पोशीदा, मैं किसी राज सा हूँ पोशीदा, मैं किसी राज सा हूँ पोशीदा। वो तरफदार खुद नुमाई का, वो तरफदार खुद नुमाई का। मैं वफा की ज़मीन सरता सर, मैं वफा की ज़मीन सरता सर, आसमां है वो बेवफाई का, आसमां है वो बेवफाई का। क्या थमे सिलसिला लड़ाई का, क्या थमे सिलसिला लड़ाई का। भाई दुश्मन अगर हो भाई का, भाई दुश्मन अगर हो भाई का। बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। सामिन, क्या थमे सिलसिला लड़ाई का, भाई दुश्मन हो अगर भाई का। अभी आप बहुत खूबसूरत से ये कलाम सुन रहे थे बदरुज़्ज़मा साहब से। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में चंद गज़लों का लुत्फ़ उठाते हैं।

सामाईन, अभी आप गुलजार के लिखी ये गजल सुन रहे थे भूपेंद्र और सुरेश वाडकर की आवाज में। आइए अब अगली गजल सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में।

सामाईन, अभी आप शकील बदायूनी की लिखी ये गजल सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। आइए अगली गजल सुनते हैं गुलाम अली की आवाज में।

अभी आप कैसर उल जाफर की लिखी ये गजल सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं भूपेंद्र और मिताली की आवाज़ में अगली गजल।

सामईन अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में ये गजल। इसी के साथ हमारे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त अब यहीं खत्म होता है। जर्री फातिमा को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए रसमंजरी के अंतर्गत फिल्म संगीत, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं।

0: शेयरिंग।
1: RBI कहता है जानकार बनिए सतत रहिए।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में इस गाने को हमने लिया है फिल्म लाल सिंह चड्ढा से। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया है प्रीतम ने।

0: मोनाली ठाकुर की आवाज़ में इस गाने को हमने लिया फिल्म दम लगा के हईशा से। वरुण ग्रोवर के लिखे इस गीत को अपने धुन से सजाया अनु मलिक ने। रसमंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। गाने अभी और भी हैं, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

सत्यमेव जयते टू फिल्म के इस गाने को अपनी आवाज से सजाया जुबीन नौटियाल और नीति मोहन ने। मनोज मुनत्सर और नासिर काजमी के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया रोचक कोहली और नुसरत फतेह अली खान ने। रसमंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

शफकत अमानत अली की आवाज़ में इस गाने को हमने लिया फिल्म जोड़ी ब्रेकर से। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को अपने धुन से सजाया सलीम सुलेमान ने। रसमंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

इसी गाने के साथ रसमंजरी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में हरिहरन के गाए भजन और चंदन कुमार श्रीवास्तव के गाए गजल। तो सबसे पहले सुनते हैं हरिहरन के गाए भजन।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यहीं करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
1: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
1: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज में भजन, और आइए अब सुनते हैं चंदन कुमार श्रीवास्तव के गाए गजल।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चंदन कुमार श्रीवास्तव के गाए गजल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
4: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
5: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
6: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

इस गाने को हमने लिया फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को अपनी धुन से सजाया प्रीतम ने, और आवाजें थी आतिफ असलम की।

0: आतिफ असलम और चिन्मयी श्रीप्रदा की आवाज़ में इस गाने को हमने लिया फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। अमिताभ भट्टाचार्य और इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को अपने धुन से सजाया है प्रीतम ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। गाने अभी और भी हैं, सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं मीना सिंह और हरिशंकर प्रसाद सिंह। पहले सुनिए मीना सिंह से देवी गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। कलाकार थे मीना सिंह और हरिशंकर प्रसाद सिंह। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम नारी जगत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: श्रोता सखियों के साथ रेडियो सखी रंजना आ गई हैं आप सब के अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत में। तो स्वीकार कीजिए सखियों रंजना का प्यार भरा नमस्कार। और सखियों अभी तो मौसम में गर्मी अपने परवान पर है, और हाँ यदि आप अपनी दिनचर्या खान पान ठीक रखें, इस मौसम के महत्व को समझें, ये मौसम के चक्र का एक पड़ाव ही है गर्मी। और अभी इतनी गर्मी, वर्ष भर में गर्मी के बाद वर्षा, शरद, हेमंत, शीत और वसंत हर मौसम की खासियत है। और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, और हम तो स्वयं की ही नहीं अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। परिवार के साथ साथ अन्य जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे वर्ष भर में आने वाले पर्व त्यौहार, सामाजिक संबंध, उनको संजोना, और कोई भी परिवार में या परिचित में कहीं भी कोई आयोजन हो तो उसमें शामिल होना। और हम सब ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पूरी करते हैं, क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे तो हर जिम्मेदारी को अच्छे से वहन कर पाएंगे। और क्योंकि स्वस्थ जीवन स्वच्छ हवा पानी भोजन के लिए प्रकृति का संतुलन भी बहुत जरूरी है। और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम करें, प्लास्टिक का उपयोग ना करें, और प्राकृतिक संसाधनों का विवेक पूर्वक उपयोग करें, और ये संकल्प भी ले सकियों। और अपने आसपास को अपने स्वीट होम की तरह ही साफ सुथरा रखें। बहुत जगह ऐसा देखते हैं कि जब बाहर से उनके घर में जाते हैं तो बाहर के माहौल को देख

कर लगता है, क्या आसपास रहने वाले इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं? जब उनके घर की कॉल बेल बजाइए या जब दरवाज़ा खुलता है उनके घर का, तो फिर माहौल बिल्कुल विपरीत होता है, यानी घर के अंदर बहुत सफाई। तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ घर के अंदर सफाई नहीं, घर के बाहर भी, क्योंकि हम जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ का माहौल साफ सुथरा रहेगा, तो मन भी खुश होगा और हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा। आप अगर कहीं पार्क में जाएं और सुकून से वहाँ बैठें, तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगेगा और ताजगी भी आपको मिलेगी, आँखों को भी, शरीर को भी और मन को भी। और शुद्ध हवा और हरियाली आपके तन मन को आनंदित कर देगी और हम अपनी सखियों के संग आनंद ले लें इस गीत का।

सखी अभी मौसम है कच्चे आम का। बाजार में जितने मौसमी फल दिख रहे हैं उतने ही कच्चे आम भी दिख रहे हैं, और हर कोई कच्चे आम का कुछ ना कुछ अपने घर में बनाना ही चाहता है। और हम गृहिणियाँ तो चाहती हैं कि आम के आम गुठली के दाम भी हमको मिले। तो हम आप जो बनाती हैं अचार कूचा आम का पन्ना जो भी बनाती है वो तो बनाती ही हैं, हम भी बता देते हैं आपको छोटी सी रेसिपी, जो कि अभी के मौसम में हम लोग शरबत पानी बहुत पीते हैं, तो पानी को अगर अलग-अलग तरीके से हम

0: स्वाद बदल के पिए तो वो भी अच्छा लगता है। और जैसे हमने कहा ना, आम के आम गुठलियों के दाम, तो आम का आप अचार बनाए, कूचा बनाए, तो उसकी गुठली जो होती है अचार में तो नहीं बेकार जाती है, लेकिन जब हम और कुछ बनाते हैं, चटनी बनाए या कूचा बनाए, तो गुठली उसकी हम फेंक देते हैं। ऐसा ना करें, गुठली को आप इकट्ठा करें और उसमें थोड़ा सा गूदा कच्चे आम का रहने भी दें, और जितनी गुठली है उसको पानी डालकर एक दो सीटी लगा ले, और गुठली को अच्छे से मसल ले, उसके सा जो आसपास जो गूदा है उस पूरा उतर जाएगा पानी में, उसको छान ले। अगर कुछ ज़रूरत नहीं है छानने की, थोड़ा पल्प उसमें रहेगा। अब इस आम की गुठली के पानी में आप भुना पिसा जीरा, थोड़ी सी चीनी, काला नमक और पुदीने की पत्ती चाहे तो उसमें थोड़ा सा कूच के डाल दें, या फिर खड़ी खड़ी ही, और इस पानी को आप शरबत में मिलाएं, या फिर अगर बहुत खट्टा नहीं है तो आप ऐसे ही, और चीनी और गुड़ की जगह आप मिश्री का ठंडा पानी, और वो ठंडा पानी फ्रिज का तो बिल्कुल नहीं हो, मटके का पानी लीजिए, आनंद लीजिए इस शरबत का। और हम आपको सुनवा देते हैं एक कथा पाठ ममता मेहरोत्रा से।
1: मैं ममता मेहरोत्रा एक अपनी छोटी सी कहानी दो रहा को सुनाने जा रही हूँ। ये जो दो रहा है, ये दिखाता है कि किस तरीके से हम लोग अपने जीवन में अचानक जाम में फंस जाते हैं, पर हमारा जो अपना अहम होता है वो किस प्रकार गाड़ी में सवार होने के बाद और बढ़ जाती है, और हम लोग सामंजस्य तारतम्य बैठा के नहीं आगे निकलना चाहते हैं, चाहे हम लोग उसके लिए कितना भी अपमान, कितना भी क्षोभ, कितना भी जलालत सह लें। चलिए हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं। मैं दौराहे पर खड़ी थी, नहीं ये दौराहा नहीं था, मैं जिस मुकाम पे थी वहां पे दो राहें आपस में मिलती थी। एक तरफ मेरी गाड़ी खड़ी थी और दूसरी तरफ वह नीली मारुति कार, और उसमें सवार था एक सुंदर नवयुवक। कुछ ऐसा अजीब संयोग हुआ कि उस राह पे जहाँ दोनों राहें मिल रही थी, मेरी गाड़ी उस तरफ की सड़क पे थी जो थोड़ी सी ऊंची थी, और दूसरी तरफ सड़क नीची थी और नीचे से ऊपर को आती हुई थी। पहाड़ी इलाका नहीं था, पर सड़कें तो ऐसे ही होती हैं, कोई तारतम्य नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, बस जैसे चाहा बन गई। उस वाली सड़क पर बेहद आगे निकलने की जगह नहीं थी, पतली और संकरी। वैसे भी हमारे देश की जनसंख्या इतनी अनियंत्रित है कि हमारे देश में किसी भी जगह की सख्त कमी पड़ गई है। इंसान तो इंसान, जंगल में शेरों को भी अपना इलाका छोड़कर दूसरे शेरों के इलाके में प्रवेश करना पड़ रहा है। शहरों की स्थिति तो माशा अल्लाह हर सेमिनार समारोह का विषय ही होती है। बढ़ती आबादी और इंक्रोचमेंट, हर चीज का इंक्रोचमेंट, चाहे वो स्थान हो या इंसान का वजूद, इंक्रोचमेंट हर तरफ अपना परचम लहरा रहा है। इंसान आज की डेट में कहीं ना कहीं एक बॉन्साई वृक्ष बनता जा रहा है। कि छोटी सी कविता इसमें मैं जोड़ देती हूँ। वह बॉन्साई वृक्ष कटा हुआ छटा हुआ लगा हुआ था गमले में आंगन मध्य चबूतरे पर। उस वृक्ष पर निगाह अनायास ही पड़ जाती थी, यदा कदा खिड़की से बस यूं ही देखती रह जाती थी। उस वृक्ष की जड़ों को बेतरतीब से काट डाला था मैंने एक दिन, उसके विशाल तनों को छाटकर ठीक किया था प्रिय संग मिलकर। कुछ ऐसा सोचा एक विशाल वृक्ष कैद रहे गमले में मेरे समक्ष, मैंने किया था यह उपक्रम रहे नहीं जिसमें कोई भ्रम। मैंने तो काट छाट कर विशालता को बस किया था बौना, मनुष्य के सामने पौधों की क्या बिसात कि वह प्रवर्धन का कर सके आत्मसात। पादप के सौंदर्य का यत्न था नहीं कभी व्यर्थ प्रयत्न था। प्रातः काल उस वृक्ष पर खिले थे सुमन, उस बॉन्साई में बीज कोश लग रहे हैं, मंजुल शुक प्रिया उस पादप पर मिल रहे हैं। प्रकृति कभी अपना धर्म नहीं बदलती, हर देश काल परिस्थिति में बस केवल वह देती है देती है देती है। अब दिक्कत तो यह हो गई थी कि दोनों गाड़ियां ही आमने सामने थी, कौन पीछे जाए यह एक अमौखिक प्रश्न था। मेरा ड्राइवर भी कम अक्खर ना था, उसको तो जैसे दिक्कत ही नहीं असंभव और संभव के विपरीत लगता था गाड़ी खिसकाने में। उसके लिए पीछे हटना मानो मैदान जंग से पलायन करना था। उसका तो हाईवे पर ये मिजाज रहता था कि क्या

मजाल कोई गाड़ी उसको ओवरटेक कर ले, उसकी शान में मानो गुस्ताखी हो जाती थी। अपनी शान भला वह नीचे क्यों गिरने देता। वह डटा रहा और स्टीयरिंग पर उसका इतना जबरदस्त नियंत्रण था कि कोई गाड़ी उसको पार नहीं कर सकती थी। बहुत ही पुराना ड्राइवर था, मंजा हुआ खिलाड़ी, पर गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं। फिर वह जो चार पहिए की मुआ मुर्दा चीज चला रहा होता है, जिसको विज्ञान की भाषा में गाड़ी बोलते हैं, है तो यह महज या मशीनी इंजन, कब दगा दे जाए। जब इंसानी कल पुर्जे का भरोसा नहीं तो वह तो इंसान का ही बनाया हुआ है। जब तक ऊपर वाले की इनायत तब तक ठीक, उसके बाद सब बेकार। बोलो राम होते देर नहीं लगती। जनाब ड्राइवर साहब अपनी मूछों पर मानो ताव देते हों कि सड़क पर उतर गए तो पीछे की तरफ कूच नहीं करेंगे। सब की सब रांगा सांगा की औलाद हैं और नए साम्राज्यों की कल्पनाओं में पंख मार रहे हैं। अब साम्राज्य भी गए, न राजे रहे न महाराजे रहे, न घोड़े रहे न बग्घी। आधुनिक शान शौकत के नाम पर पेट्रोल से खींचने वाली ये अत्याधुनिक गाड़ियां जरूर हैं जिनको हांक रहे हैं ये ड्राइवर। जब घर से निकलते हैं तो मानो कफन बांधकर निकलते हैं कि जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, अब फतह हुई की तब। अगर शाम होते होते ठीक ठाक घर पहुंच गए तो मानो संग्राम में शहीद होने से बच गए। समस्या यहाँ संग्राम की नहीं थी, समस्या गाड़ियों को पार कराने की थी, और वह थी कि अड़ी हुई थी, ना इधर वाली टसक रही थी ना उधर वाली मसक रही थी। उनमें स्मार्ट ड्राइवर मानो मोर्चा संभाले अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाए अड़े खड़े थे। दोनों ही ड्राइवरों की मूछे नहीं थी, पर उन पर ताव ऐसे दे रहे थे मानो कि अब मरे की तब। तभी पीछे से एक गाड़ी ने मेरी वाली गाड़ी को टक्कर मारी। मेरी गाड़ी का ड्राइवर उतरा और बोला, देखते नहीं कि गाड़ी खड़ी है। एक भद्दी सी गाली भी दी और झुककर गाड़ी का मुआयना करने लगा कि कहीं गाड़ी को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा है। सब कुछ ठीक ठाक देखकर वह संतुष्टि के भाव के साथ आकर बैठ गया। फिर तो उसने कमान मानो संभाल ली हो। शुक्र है गाड़ी में चोट नहीं लगी थी, नहीं तो अब एक गदर अलग हो जाता। गदर का होना तय था। जिस गाड़ी वाले ने हमारी गाड़ी को ठोका था, मुस्कान दबाकर बोला, शुक्र है अभी तो टक्कर मारी थी और गाड़ी बच गई, नहीं तो गाड़ी को तो अच्छे से ठोक देता। अरे ऐसी खड़ी हो गई मानो कोई मोटी औरत, टस से मस नहीं हो रही है। मेरे ड्राइवर के चेहरे पर क्षण भर के लिए क्रोध का भाव आया, पर वह उसको दबा ले गया। बोलना व्यर्थ था, अभी उसको मकसद गाड़ी को पार कराना था और वह अपनी सीट दोबारा छोड़ना नहीं चाहता था। उसने एक निगाह उस गाड़ी के ड्राइवर पर डाली, एक बांका सजीला नौजवान था। नीरा ने थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की, शायद उसकी मुस्कुराहट इस इंसान पर कोई तीर का काम करे और वह अपना हठ छोड़ दे। उसने तो नीरा की तरफ देखने की जरूरत भी महसूस नहीं की। नीरा के दिल को ठेस लगी, ऐसे कैसे कोई नौजवान उसको बिना देखे रह सकता था। फिर नीरा का ध्यान उसकी बगल में बैठी औरत पर गया, एक साधारण नाक नक्श वाली मोटी महिला, शायद वह उस पुरुष की पत्नी थी। वह ऐसी भी सुंदर नहीं थी कि वह पुरुष दाएं पाएं ना झाके, पर पत्नी के साथ गाड़ी में बैठा अथवा एक साथ रहने की स्थिति में बेहद दब्बू हो जाता है पुरुष। बाहर डींगे हाँकता फिरता है पर घर में तो नो नॉनसेंस। चलो यह तीर भी हाथ से गया, नहीं तो अपनी मोहनी अदा से कम उसके दम को तोड़ सकना मुश्किल बात नहीं थी। पर अफसोस, वह तीर भी हाथ से निकल गया। अब गाड़ी में बैठना दुश्वार हो गया था। एक तो इतनी गरी, ऊपर से यह उलझन। मन ही मन उस घड़ी को कोसा जिस समय घर से निकले थे। उसके बाद ड्राइवर को गाली दी, कैसा जाहिल है, व्यर्थ की उलझन में खुद फंस गया और मुझको भी डाल दिया। शुरू शुरू में महज एक खेल सा लगता था, अब व्यर्थ एक झंझट बन चुका था। कैसे निकला जाए इस समस्या से। दोनों गाड़ियों के पीछे भी लोगों की गाड़ियों का जमावड़ा होना शुरू हो गया था। लोगों ने कुछ एक गाड़ियां उछल उछल कर कानों में पड़ रही थी। नहा के शर्मिंदगी मोल ली, रोज कितने आराम से काम पर जाती थी, ना जाने किसका मुंह देखकर घर से निकली थी। फिर स्वयं ही दांतों को जबान से काट लिया। गेट के बाहर एक बार स्वयं की निगाह ही गाड़ी के फ्रंट शीशे पर आई थी। नहीं नहीं, वह तो महज एक इत्तेफाक था, सोचकर मन को समझाया, मैं कोई इतनी अभागिन थोड़ी हूँ कि मुंह देखने से काम बिगड़ जाए। अभी वहां गहमा गहमी और आपाधापी चल ही रही थी कि पुलिसिया गाड़ी आती दिखाई दी। उसके पहुंचते ही माहौल में जैसे स्तब्धता छा गई। पास आते ही जीप रुकी और एक एक करके तीन चार जवान उसमें से उतरे। आगे से एक मोटा ताजा गोलनुमा आदमी निकला, जिसको देखकर प्रतीत होता था कि पुलिस विभाग में ठीक ठाक खाना मिलता है। उसके पीछे से तो जवान निकले, उनमें से अधिकांश को देखने से ऐसा प्रतीत होता था मानो कि अब गिरे की तब। शायद पुलिस में यही सिपाही काम के लिए दौड़ते रहते होंगे, बाकी विभाग तो खाने पीने में मशगूल रहता होगा और कुर्सी पर बैठे बैठे इन मरगिल्लो सिपाहियों को आदेश देता होगा। फिलहाल जो भी हो, पुलिस की वर्दी बह पैदा करने के लिए काफी है और उसकी सीटी मानो ये आदेश देती हो, रुक जाओ कानून की खातिर। वैसे कभी भी थाना कानून की खातिर सजग नहीं होता, तभी तो उसके इलाके में चोरी, डकैती, बलात्कार सरेआम होते हैं, बेफिक्र होकर जवाबदेही के रहते हैं। कहीं पुलिसिया रोब झाड़ने की बात आ जाए तो तत्परता देखिए। खैर उस जीप के आगने से इलाके के लोग शांत हो गए।
एक डंडा

0: बस कि मेरी गाड़ी में भी पड़ा और शीशा थोड़ा चटक गया, पर मेरे ड्राइवर की जुबान हिलाने की हिम्मत ना हुई। क्यों भाई, क्या तमाशा लगा रखा है, कड़क कर दरोगा बोला। कुछ नहीं सरकार। तो फिर यहाँ जाम कैसे लग गया, किसके कारण हुआ? फिर वही कड़क आवाज। मेरे वाले ड्राइवर ने दूसरी वाली गाड़ी के ड्राइवर को देखा, मानो संप्रेषण हुआ और दोनों मुश्तैदी से स्टीयरिंग सीट पर बैठ गए। चुपचाप मेरी वाली गाड़ी पीछे हुई और दूसरी गाड़ी के लिए जगह बन गई और वह एक विजयी मुस्कान के साथ गाड़ी निकाल ले गया। इसी बीच सिपाही पीछे रास्ता खाली करा रहे थे और जगह बना रहे थे। मेरा ड्राइवर भी हार गया था, पर इस समय पराजय का दुख नहीं था जितनी जान बचाने और भागने की हड़बड़ी थी। उस दौराहे से निकलकर हम स्कूल वाले रास्ते पर आ गए। एक व्यर्थ की पीड़ा का अंत हुआ। जीवन में अक्सर ऐसे दौराहे आ जाते हैं जब हम अपनी जिद पर इतने अड़ जाते हैं कि सरल रास्तों को कठिन बना देते हैं। दौराहे नई मंजिल तराशने के लिए होते हैं, ना कि उलझने बढ़ाने के लिए।
1: दौराहे, ममता मेहरोत्रा से हम ये कथा पाठ सुन रहे थे और इस कथा का जो विषय था और जो माहौल था वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी

0: गाड़ी निकाल ले गया। इसी बीच सिपाही पीछे रास्ता खाली करा रहे थे और जगह बना रहे थे। मेरा ड्राइवर भी हार गया था, पर इस समय पराजय का दुख नहीं था जितनी जान बचाने और भागने की हड़बड़ी थी। उस दौराहे से निकलकर हम स्कूल वाले रास्ते पर आ गए। एक व्यर्थ की पीड़ा का अंत हुआ। जीवन में अक्सर ऐसे दौराहे आ जाते हैं जब हम अपनी जिद पर इतने अड़ जाते हैं कि सरल रास्तों को कठिन बना देते हैं। दौराहे नई मंजिल तराशने के लिए होते हैं, ना कि उलझने बढ़ाने के लिए।
1: दौराहे, ममता मेहरोत्रा से हम ये कथा पाठ सुन रहे थे और इस कथा का जो विषय था और जो माहौल था वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे रास्ते आते हैं और ऐसे परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन हमेशा सावधान रहें और सावधानी से अपने घर में भी रहें और बाहर निकले तो ज़्यादा ही सावधान रहें और बच्चों को भी ऐसा ही बताएं कि घर में जब हैं तो आप उनकी देखभाल कर लेंगी, लेकिन बाहर हमेशा आप उनके साथ नहीं रहेंगी, तो वो जब भी निकले पूरी सावधानी से, चाहे मौसम से बचने के लिए या रास्ते पर किसी घटना दुर्घटना से बचने के लिए वो निकले, हमेशा चौकस चारों तरफ नज़र और सावधान रहें। तो ये तो हुई बहनों बातें हमारे आम रास्ते में चलने की। अब कुछ बातें ऐसी कर लें जो हमारे आपके फ़ायदे की भी हैं। एसी, कूलर, पंखा, ये सब तो ठंडक देते हैं, लेकिन खुली और हरियाली व जगह में जो बैठते हैं हम, तो न बिजली का बिल आएगा, न ही कोई परेशानी होगी और ताजी हवा का लाभ तो मिलेगा ही। और सखियों, मटके का पानी भी तो कलेजे को ठंडक देता ही है और फ्रिज के पानी से ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है। सखियों, जैसे मौसम का चक्र प्राकृतिक है, वैसे ही उनका आना और जाना, यानी हर मौसम का अपना प्राकृतिक रंग होता है और अपना आनंद हम ले सकते हैं यदि हम प्रकृति के साथ जुड़ जाएं। और घड़े, मटके, सुराही, आजकल तो नल के टोटी जो होती है वो लगे हुए घड़े मटके मिलते हैं, जिससे पानी लेना पीना बहुत सुविधाजनक होता है। और मिट्टी के बॉटल भी मिलते हैं जिसमें आप पानी लेकर निकलें, तो ऐसे साधारण बॉटल में पानी रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन यदि मिट्टी का बॉटल आप वाटर बॉटल लेकर चलती हैं, थोड़ा सा भारी ज़रूर होता है, लेकिन वो हमेशा ही उसका पानी शीतल, जब आप पिएंगी तो आपको शीतलता मिलेगी। अब शीतलता की बात चली है तो हम एक और रेसिपी जान लेते हैं, एक शरबत की, पौष्टिक बीजों के शरबत, जैसे खीरा, सनफ्लावर, तरबूजे, खरबूजे के बीज, मगज के बीज, गुलाब की पंखुड़ियाँ और चिया सीड, इन सब को आप लें थोड़ी थोड़ी मात्रा में और बिल्कुल बारीक पीस लें, मिक्सी में ही पीसेंगे, और इसको एक शीशे के बॉटल में भर के रखें और मटके, सुराही, घड़े का पानी लें और उसमें 2 चम्मच ये जो पाउडर है इसको मिलाएं और इसमें मिश्री का पानी मिलाएं। चीनी तो किसी भी तरह हानिकारक है, तो उससे बचने के लिए हम शहद से उतनी मिठास नहीं ला सकते हैं, तो शरबत के लिए इन गर्मी में जो हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं शरबत का, कोई भी शरबत बनाएं तो उसके लिए मिश्री का प्रयोग करें। ये पौष्टिक भी है, आपको मिठास भी पूरी मिलेगी, तो आप आनंद लीजिए इस तरह के शरबतों का और हम अपनी सखियों के साथ इस मीठे गीत का आनंद लेते हैं।

सखियों, गीत संगीत और शरबत, ये सब अभी हमारे साथ चल रहा है आपके प्रोग्राम में। तो एक और शरबत जल्दी से बताते हैं, वो है सौंफ का शरबत। और इस मौसम में, इतनी गर्मी में, सौंफ बहुत ठंडक देती है, तो सौंफ का भी पाउडर बना लें और मिश्री के पानी में मिलाकर इसको शरबत की तरह पिए। बच्चों को नहीं पसंद आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। और सखियों, हम और आप मिलते हैं, बातें करते हैं, तो अभी शरबत तो पी ही रहे, एक छोटी सी रेसिपी आपको

0: जल्दी से बता दें, कॉर्न समोसा। अभी मकई के दाने मिल रहे हैं, भुट्टे अच्छे मिल रहे हैं, हरे हरे और बहुत नरम दाने वाले। तो इसके लिए सामग्री चाहिए, उबले हुए मक्के का दाना, मैदा 1 कप, पनीर कद्दूकस की और 200 ग्राम, चाट मसाला, लाल मिर्च, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, नमक, कटी धनिया। ये तो हो गई सामग्री। अब जल्दी से विधि जान लीजिए। सबसे पहले मैदे को छानकर नमक और घी मिलाकर गूंथ लें, जैसे हम लोग समोसे के लिए डो तैयार करते हैं। अब एक कढ़ाई में गरम तेल करें, उसमें लाल मिर्च, नमक और वो मक्का जो आपने रखा है सबको मिलाकर भून लें। फिर एक कढ़ाई में, एक बर्तन में पनीर, चाट मसाला, अदरक, मिर्च का पेस्ट, धनिया, इन सबको मिलाकर भरावन तैयार कर लें और गूंथे हुए मैदे की छोटी छोटी लोई बनाएं और समोसे का आकार दें और भरावन वाली सामग्री को भरकर बंद करें। और जब सारे समोसे तैयार हो जाएं तो तेल में इनको छान कर और प्रयोग करें। स्वादिष्ट कॉर्न के समोसे, स्वाद भी बदलेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। इस तरह हमारी सखियां तो बनाती ही हैं तरह तरह के व्यंजन, और आप अपने व्यंजनों को बनाइए, आनंद लीजिए। और हम अपने कार्यक्रम से विदा ले रहे हैं, रंजना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा

0: समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
1: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग अब नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन दो शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। सुर भारती कार्यक्रम में प्रस्तुत है संस्कृत वार्ता। सनातन है देश प्रेम की अविरल धारा। वार्ताकार हैं अर्चना चौधरी।
3: सनातन धर्म भारतीय संस्कृते मूलाधार अस्ति। अयं धर्म केवलं धर्म निष्ठा न अपितु जीवन शैली राष्ट्र निष्ठा च अस्ति। यत्र धर्म तत्र राष्ट्र, यत्र राष्ट्र तत्र प्रेम। ऐसा एव भावना देश प्रेम सनातन धर्मे मूल रूपेण प्रवहति। यह धर्म सर्वेषां प्राणिनां हिताय कार्यं करोति। स धर्म राष्ट्र अपि एकत्वं समर्पणं च उत्पादयति। यतो हि कथ्यते सनातन धर्म देश प्रेमस्य अविरल धारा अस्ति। ऋग्वेदे अथर्ववेदे च राष्ट्रं प्रति प्रेम सुस्पष्टतया प्रतिपादितम्। मातृभूमि पुत्रोऽहं पृथिव्या अयं मंत्रः दर्शयति यत् राष्ट्रं मातरम् इव पूजितव्यम्। वेदेषु धर्मः सत्यं एकता समर्पणं च राष्ट्र स्थापनीयम् इति उपदिष्टम्। भारतीय इतिहासे अनेके महापुरुषा देशप्रेमस्य प्रतीकाः अभवन्। सनातन इति नित्यः सर्वथा शाश्वतश्च। सनातन संस्कृते राष्ट्रप्रेमस्य अविरल प्रवाहः प्रवहति। आद्ये राष्ट्र ततः सर्वम् इति सनातन संस्कृतेर दर्शनम्। तेन उक्तं राष्ट्रं मे जन्मभूमिश्च, राष्ट्रं मे परमं तपः, राष्ट्राय समर्प्यामि जीवनाहं सर्वदा। अस्माकं राष्ट्रः महान् भारतवर्षः, विश्वशिरोमणि जगद्गुरु च वर्तते, विष्णुपुराणे वर्णितम्।

घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम के आरंभ में। सुनिए किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है आशिक हूँ बहारों का। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: लिए सुनिए हेमलता को, फिल्म का नाम है आंखियों के झरोखों से।

लिए सुनिए लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों को। फिल्म का नाम है काला पत्थर, गीत साहिर के हैं, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आज तड़के अगलगी की घटना में 4 मरीजों की मौत हो गई, वहीं 20 से अधिक लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग अस्पताल के आईसीयू में लगी और पूरे अस्पताल में फैल गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काफी मुश्किलों के बाद आग पर काबू पाया। वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्र ने बताया कि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रूपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने भी हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में 11 मेगा फूड पार्क और 38 फूड पार्क की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन पार्कों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने और 50,000 एकड़ रकबा का भूमि बैंक बनाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि सभी आधार कार्ड धारकों को इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से दरभंगा के अलग अलग प्रखंडों में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेले 6 जून तक अलग अलग प्रखंडों में लगाए जाएंगे। इधर खगड़िया और मोतिहारी में भी आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इस बार मॉनसून अपने तय समय से 3 दिन देरी से पहुंचा है। इधर प्रदेश में भी

भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं आज राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि राज्य में संगठन का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब डिजिटल माध्यम से प्रखंड अध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष तक का चुनाव होगा। श्री राम ने कहा कि पार्टी ने डिजिटल माध्यम से ही सृजन साथी नामक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें बढ़ चढ़ कर लोग भाग ले रहे हैं। भागलपुर जिले के गोपालपुर के पोखरिया चौक के पास अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पहले से खात लगाए अपराधियों ने कारोबारी के सिर में 7 गोलियां मारी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अररिया नगर थाना क्षेत्र के कोढ़ी चौक के पास पुलिस ने छापेमारी कर एक यात्री बस से 708 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गया रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की टीम ने 3 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में आज सवेरे आगजनी के वाक़े में 4 मरीजों की मौत हो गई, वहीं 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। इत्तला के मुताबिक आग अस्पताल के ICU में लगी और पूरे अस्पताल में फैल गई। फायर ब्रिगेड के अमलों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा सके। सीनियर SP कांतेश मिश्र ने बताया कि इब्तदाई जांच में शॉर्ट सर्किट के सबब आग लगने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है। इधर वजीर आला सम्राट चौधरी ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने महलुकीन के सबसे करीबी वर्षा को 4-4 लाख रुपये आम इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। इस बीच वजीर सेहत निशांत ने भी हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े की आला सतही जांच होगी और जो भी इसके लिए कसूरवार पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। रियासत में 11 मेगा फूड पार्क और 38 फूड पार्क की तामीर होगी। वजीर आला सम्राट चौधरी ने इन पार्कों की तामीर के लिए ज़मीन की दस्तियाबी को यकीनी बनाने और 50,000 एकड़ रकबा का ज़मीनी बैंक बनाने का अफसरों को हिदायत की है। वजीर आला ने अफसरों को मुतल्लिका महकमों के साथ राबता बनाकर सनअतों के क़याम के लिए ज़मीनी तहवील के काम में तेज़ी लाने की हिदायत की। मरकजी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों की तरदीद की है जिसमें कहा जा रहा है कि सभी आधार कार्ड होल्डर को इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी। PIB की फैक्ट चेक इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा है कि मरकजी हुकूमत ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। नौजवान रोजगार और हुनर फरोग महकमा की जानिब से दरभंगा के अलग अलग ब्लाकों में आज से रोजगार मेले का इनेकाद किया जा रहा है। ये मेले 6 जून तक अलग अलग ब्लाकों में लगाए जाएंगे। इधर खगड़िया और मोतिहारी में भी आज एक रोज़ा रोजगार मेला मुनक़द किया जा रहा है। जुनूब मगरबी मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मानसून की आमद की पूरी कैफियत बनी हुई है। इस बार मानसून अपने मुकर्रर वक्त से 3 दिन देर से पहुंचा है। इधर रियासत में शदीद गर्मी की हालत बनी हुई है। कई जगहों का दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत के साथ बक्सर

0: रियासत का सबसे गर्म जगह रहा। मौसम पेशगोई में कहा गया कि अगले 3 दिनों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का इम्कान है। वहीं रियासत के शमाल मशरक़ी, जनूबी वस्त और जनूब मशरक़ी हिस्सों में कुछ मकामात पर मामूली बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने का भी इंतबाह जारी किया गया है। कांग्रेस के रियासती सदर राजेश राम ने कहा है कि रियासत में तंजीम की जल्द ही तौसी की जाएगी। कटिहार में नामानिगारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब डिजिटल तवसुत से ब्लॉक सदर से लेकर रियासती नायब सदर तक का इंतखाब होगा। श्री राम ने कहा कि पार्टी ने डिजिटल तवसुत से ही सृजन साथी नाम की मुहिम का आगाज़ किया है, जिसमें सरगर्मी से लोग हिस्सा ले रहे हैं। भागलपुर जिला के गोपालपुर के पोखरिया चौक के पास जराइम पेशा अनासिर ने एक जमीनी कारोबारी को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने बताया कि पहले से मौके की ताक में लगे जराइम पेशा अफराद ने कारोबारी के सर में 7 गोलियां मारी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जराइमकार अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अररिया टाउन थाना हलका के गोढ़ी चौक के पास पुलिस ने छापामारी में एक मुसाफिर बस से 708 ग्राम स्मैक के साथ 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। गया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने 3 औरत चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एनडीए परीक्षा के आलोक में कुल 394 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.upsc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वें उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग CGL 2026 के आलोक में कुल 12,226 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से

स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग

0: 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है। इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है। शॉर्ट सर्किट से कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और

0: अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश

0: मंत्री थोंगसावन फोमवेहारे से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र प्रस्तुत है, एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शब्द अंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश
1: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन हर बार हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओ, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोता, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
2: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली

0: वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहां जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है
0: जी
1: और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है,
0: बिल्कुल।
1: इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
0: जी, वहां पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी
0: पहले वहां के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है,
0: जी
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
0: जी
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
0: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन है स्कू और थुकपा।
0: जी
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है।
0: जी
1: यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे।
0: जी
1: जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
0: अजी जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती
1: हाँ
0: हूँ।
1: हाँ जरूर कीजिए।
0: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है, जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी
0: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहां गए थे मैग्नेटिक हिल,
0: बिल्कुल याद है।
1: जहां यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो
0: जी
1: वो खिसकने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
0: अजीत जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
1: हाँ
0: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहां पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहां अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहां की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है, वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है।
0: जी
1: इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
0: श्रोताओं, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओं, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
0: जी
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहां की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
0: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
0: जी
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आप सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री। और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
0: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: भारत अर्थात इंडिया,
0: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की

0: पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
1: भारत अर्थात इंडिया।
2: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
3: Wonderful shot. The scoop shot. It gets through. It's a big one. It's a huge boundary. Goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
2: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
4: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
2: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
4: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
5: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। शाबाश।
6: क्या अभी आपके पास समय होगा?
5: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
4: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
5: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
6: जी वही।
4: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
5: अच्छा।
6: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
5: और
4: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
5: हाँ, बोलो बोलो।
6: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
5: बिल्कुल।
4: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
5: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
6: 5000 वर्ष पहले?
5: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
4: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
5: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
6: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
5: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
6: अच्छा।
5: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
6: जैसे?
5: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
6: वैदिक समूह?
5: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
6: भरत?
4: भरत नाम तो हमने सुना है।
5: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
6: ओह, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
5: हाँ।
6: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
5: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात

0: सात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
2: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
0: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
3: वो क्या सर?
0: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदू या हिंदू कहा है।
2: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदू या हिंदू कहा है,
3: भला ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
3: हाँ, ऐसा कैसे?
0: ऐसा है, स की जगह उन्होंने हा का प्रयोग किया।
3: ओ।
0: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
1: हिंदू।
0: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
3: तो फिर?
0: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
0: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
2: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
0: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
3: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
0: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ।
2: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
0: बिल्कुल।
2: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
0: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
3: अच्छा।
0: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
3: वो क्या?
0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
2: जम्बूद्वीप?
0: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
3: जम्बूद्वीप?
0: हाँ?
3: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
3: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
3: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है, उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
3: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
3: अच्छा।
2: सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष
3: और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
3: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
3: जी सर।
0: हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
3: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
3: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
3: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी। हाँ।
2: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था
3: और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन

0: यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा, इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
2: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
2: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी।
1: हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है

0: जानकारी दी।
1: हमारे
0: देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
0: अच्छा।
1: हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
0: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
1: बहुत अच्छे, तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
0: जी सर।
1: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
0: सबके साथ?
1: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
6: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
7: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
8: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
7: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
8: हाँ पूछो बेटा।
7: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
8: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
6: लेकिन माँ,
8: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
7: जी,
8: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
7: अच्छा माँ, ये लो माँ।
8: ला।
6: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
7: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
8: क्या मिल गया
7: मुझे? माँ माँ ओ माँ,
8: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
7: मुझे मिल गया।
6: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
8: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
7: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
6: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
7: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ, बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
8: कुछ भी तो नहीं,
6: कुछ भी तो नहीं है।
7: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है?
8: राख?
7: हाँ उड़े है ना।
6: वो तो है मगर
7: इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।

0: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
1: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
0: हाँ
1: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
0: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते
1: ठीक
0: हैं।
1: है, आओ
0: चलो
1: मेरे
0: चलो।
1: साथ।
2: अरे सुनो,
1: हम देखते हैं।
2: अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन, जोसेफ, सुनो तो।
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे गुब्बारा
5: गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
6: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
7: हाँ भाई, भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार, भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
6: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
7: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
6: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
8: ना जाने क्या करेंगे,
5: भला कोई चीज उड़
8: नहीं सकती है।
7: अरे भाई साहब, जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
9: भाई साहब हट जाइए।
6: आ गए। यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
7: अरे अरे, वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
6: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ,
7: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो, एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
6: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
7: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
6: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
7: अरे अरे अरे, वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे
6: मान गया, कमाल कर दिया बच्चों ने।
7: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो, वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
6: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
7: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
6: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो देखो, गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
7: अरे जबरदस्त, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
6: वो देखो वो देखो, गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ।
7: अरे
6: देखो,
7: अरे हाँ, अरे वो पेड़ों की तरफ। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
3: हाँ साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बत्तख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था।

0: तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था, लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के दो भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था।
1: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पर। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और ममता जी क्या बात है, आप थोड़ी बुझी बुझी सी, थोड़ी सी खामोश सी, थोड़ी सी नाराज सी नजर आ रही है।
1: अब कहाँ नाराज तो बिल्कुल थी नहीं पहले भी, लेकिन जो बुझा बुझा चेहरा आपको लगा और आपके हाथों का स्पर्श मिला तो उदासी तो मेरी चली गई वैसे ही। और जिंदगी में क्या होता है कि थोड़ा गम थोड़ी खुशी सबको मिलती है, कई बार हम यूं ही बेवजह चुपचाप बैठ जाते हैं तो लोग उसको उदासी समझते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपके साथ हुआ, तो आपने जब स्पर्श किया और हाथ मिलाया मुझसे और कहा कि क्या बात है, क्यों थोड़ी सी उदास लग रही, बस मैं मुस्कुरा उठी
2: और वो छू मंतर हो गया सारा सारा दर्द। क्योंकि देखिए ना, हर किसी की जीवन में थोड़ी ना थोड़ी परेशानी होती है, और हम ऐसे है ना कि अगर हमारे मन से थोड़ा भी अलग हुआ ना तो हम भी परेशान हो उठते हैं।
1: बोले
2: ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, पर हम उसे बहुत ज्यादा मान भी लेते हैं कि अरे ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ में।
1: बिल्कुल,
2: तो हर किसी के साथ ऐसा होता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तो होता ही है कि थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई तो परेशान हो जाते हैं,
1: किसी ने कुछ
2: फोन
1: कह दिया
2: नहीं किया तो नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो घर की दादी माँ, नानी माँ या फिर पिताजी माँ, जिनसे हमारा स्पर्श कम होते जाता, उनका हाथ में हाथ थाम लिया और बस उनको एक झप्पी दे दी, प्यार भैया गले से लगा लिया, तो वे खुश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। तो जो उदास बैठा है उसके पास जाकर एक जादू की झप्पी दे दे और प्यार से उसके कंधे पर उसके सिर पर हाथ रखे कि चलो सब हो जाएगा। भले ही आपको कारण पता हो ना हो, लेकिन इतने से कोई बहुत बड़ा दुख या अवसाद होता है तो दूर हो जाता है। और कई बार ये घटनाएं भी इससे घटित होती हैं कि लोग अपनी जिंदगी से, अपने हालात से बहुत परेशान हाल होते हैं और वो कोई बड़ा कदम आत्महत्या जैसे कर रहे हो तो भी वो वक्त टल जाता है। और ये कहा जाता है कि आत्महत्या का बस कुछ लम्हा

0: है, वो लम्हा अगर कुछ सेकंड टल गया तो वो टल गया, फिर उसके बाद मन ठीक हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई उदास चेहरा दिखाई पड़े तो बस उसके सिर पर हाथ रखें, एक स्पर्श से किसी की उदासी, किसी की नाराजगी, किसी का दुख दूर हो
1: दूर हो
0: जाता है।
1: सकता है। और साथ में आज हम कहानी पद्मश्री की इस सेगमेंट के अंतर्गत दुलारी देवी, जो मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग इस क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, तो इसमें गर्मी की छुट्टियों में आम खाने का आनंद, यानी
0: बिल्कुल,
1: बचपन याद आ गया, नॉस्टैल्जिया हो गया ना।
0: मतलब आम के बाग में जाकर वो ढेला जो होता था, पत्थर कंकड़, उससे फेंका और आम जो टूटता था और उस आम को लेने की पकड़ने की होड़ होती थी। कई लोग, झुंड होता था बच्चों का, तो वो झुंड दौड़ता था कि हम लेंगे हम लेंगे, और उसमें जो आनंद था वो तो जो इकट्ठा आम मिल जाए, और अब जो आम मैंगो शेक बना के पीने का आनंद है, या फिर पेटी में जो आम आता है जिसे आप खोलते हैं, वो आनंद कहाँ है।
1: वो जो आनंद था उसकी तुलना ही नहीं हो सकती, भले उसमें पंछी ने भी अगर उसमें थोड़ा
0: तोता
1: सा
0: खास तौर
1: हाँ
0: से खा ले,
1: खा लिया तो भी हम उसे धोखे खा लेते
0: तो
1: थे,
0: कहा जाता है कि तोते ने अगर जूठा किया है तो वो मीठा
1: और भी मीठा
0: और मीठा होगा,
1: होगा।
0: और वो देसी आम, तरह तरह के आम। तो हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि वो आम खाने का क्या सुख था वो बचपन वाला, और साथ में किस तरह के आम आपने खाए हैं, कौन कौन सी प्रजाति होती है आम की,
1: आपके
0: वो भी
1: क्षेत्र में कौन सी प्रजातियां होती हैं,
0: लिख
1: एक
0: भेजें।
1: हाँ, और साथ ही उपयोगी टिप्स, यानी आम खा लिया, बहुत सारा आम खा लिया और व्यायाम नहीं किया तो वजन तो बढ़ ही जाएगा, तो वजन
0: बिल्कुल
1: कैसे घटाए इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना शुरू भी कर दिया है, तो आप कितना आम खाते हैं और वजन घटाने के लिए क्या करते हैं, इस बारे में हमें लिखकर
0: विविध
1: बताइए।
0: भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी करें और कोई अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं
1: हाँ
0: आम खाने से जुड़ा हुआ। और ये जो हमने विषय दिया है, बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श, कि आज मोबाइल का जमाना है तो वो टाइम ही नहीं है लोगों के पास, पता ही नहीं चलता कि कमरे में बैठा हुआ कोई रो रहा है। लोग अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत देर बाद पता चलता है। तो ये जो ऐसा कोई अनुभव है, वाक्य है, तो आप जरूर साझा करें। और हम अब साझा करते हैं ये गीत।

0: तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे, और अब आप मोबाइल के स्क्रीन से बाहर लौट आइए, क्योंकि अभी भी तो हम बात कर रहे थे ना मोबाइल के स्क्रीन से बाहर आना, लेकिन अगर आप बाहर आ गई तो
1: हम श्रोताओं के कमेंट्स कैसे
0: पढ़ेंगे, ये बात तो है। तो ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन को साथ में रखिए, लेकिन अभी हम पद्मश्री दुलारी देवी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
1: जी, मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली दुलारी देवी ने कभी स्कूल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी। 25 साल पहले उन्हें पद्मश्री अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज पूरा देश उन्हें पद्मश्री दुलारी देवी के नाम से जानता है। और ममता जी, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जिस तरह वे अपने कैनवास को अलग अलग रंगों से रंगीन बनाती है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलता के रंग भरे। दुलारी देवी कहती है कि मैंने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, मुझे पेंटिंग बनाना पसंद और आज इसी के बदौलत उन्हें इज्जत और सम्मान मिल रहा है।
0: और आज जब हम कहीं किसी शॉप में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ों की शॉपिंग खासतौर से, तो मधुबनी पेंटिंग ढूंढते हैं कि मधुबनी पेंटिंग वाली डिजाइन का कुर्ता हमें मिल जाए, ड्रेस मिल जाए, तो वो पहन ले, और फिर मधुबनी पेंटिंग खरीद कर ले आते हैं, अपनी दीवार को सजाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कितनी ज्यादा मशहूर है और कितनी उसकी अहमियत है, तो दुलारी देवी ने मधुबनी में रहते हुए मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दिया और उसमें आगे बढ़ी, पद्मश्री से सम्मानित हुई। दुलारी देवी की जिंदगी की शुरुआत बहुत नीचे तबके से हुई और एक आम लड़की की तरह गरीब परिवार में हुई। उनके परिवार में शिक्षा को लेकर बहुत कम जागरूकता थी और आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वो कभी स्कूल नहीं गए इस वजह से। उनका परिवार मजदूरी करके जीवन बिताता था। दुलारी देवी बचपन से ही माँ के साथ काम पर जाती और घर में भाई बहनों की देखभाल करती थी, और उनके पिता मछुआरे थे।
1: देखिए,
0: तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हुई उन्हें, इस कारण दुलारी देवी मायके वापस आ गई थी।
1: और मायके वापस आने के बाद उन्होंने मिथिला पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया।
0: जी, कितनी अजीब बात है ना कि कितने छोटे काम करती थी और उसके बाद और कहाँ तक पहुंची।
1: और आगे चलकर यहीं से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाना भी सीखा। दुलारी देवी ने तकरीबन 25 साल तक कर्पूरी देवी के घर पर काम किया। दोनों मिथिला आर्ट्स आर्टिस्ट कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी को पेंटिंग बनाते देख दुलारी देवी को भी मैथिली पेंटिंग सीखने की चाहत हुई। और दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग का शौक तो था ही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रंग, कागज और कपड़े खरीद पाती। इसी दौरान उनके लगन को देखते हुए कर्पूरी देवी ने उनकी मदद की और पेंटिंग की बारीकियां उन्हें सिखाई। और 1983 में प्रख्यात पेंटर गौरी मिश्रा ने महिलाओं को मिथिला पेंटिंग सिखाने और उनके काम को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बनाई, और कर्पूरी देवी की मदद से दुलारी देवी को वहां पर सीखने का मौका भी मिला।
0: और उनकी पहली पेंटिंग सिर्फ 5 रुपए में बिकी थी। सोचिए, 5 रुपए, आज के जमाने में उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, उस समय भी इतनी 5 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। इस संस्था से जुड़ने के बाद उनकी कुछ पेंटिंग बिकने लगी। चूंकि बिहार का मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए कई विदेशी लोग यहाँ के कलाकारों से मिलने और पेंटिंग खरीदने आते रहते हैं। पेंटिंग से जुड़ी अपनी पहली कमाई के बारे में वो बात करते हुए कहती हैं कि जापान से आए कुछ मेहमानों ने उनसे पेंटिंग वाले 7 पोस्टकार्ड्स खरीदे थे और एक कार्ड की कीमत 5 रुपए थी।
1: और जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, वो इन कलाओं को बहुत महत्व देते हैं, और स्थानीय लोगों से जब चीजें खरीदते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, और उन्हें पैसा भी मिला होगा उससे। और गौरी मिश्रा की संस्था से जुड़कर उन्होंने 16 साल तक काम किया। वहीं अपने सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैंने अपनी एक पेंटिंग 3 लाख रुपए में बेची थी, जिसे बिहार सरकार ने खरीदा था। आज भी वो पेंटिंग पटना के बिहार म्यूजियम में लगी हुई है।
0: क्या बात है।
1: और दुलारी देवी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन कर्पूरी देवी ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ खुद का नाम लिखना भी सिखाया। कला के प्रति अपनी रुचि और मेहनत के दम पर दुलारी देवी ने आगे चलकर कई सारे अवार्ड जीते, और दुलारी देवी के पेंटिंग को

0: इग्नू के लिए मैथिली में तैयार पाठ्यक्रम के होम पेज के लिए भी चुना गया था। कितनी कितनी गौरव की बात है।
1: बिल्कुल। और आज भी वो सुबह 4 बजे उठकर पेंटिंग बनाने का काम करती हैं और कहती हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में किया गया काम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए वो जल्दी उठकर पेंटिंग बनाती हैं आज भी। साथ ही वो कोशिश करती हैं कि अपनी कला के माध्यम से लोक कथा और संस्कृति से लोगों को जोड़ सकें।
0: और पिछले 8 सालों से वे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सिखाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें राज्य सरकार से भी मिथिला अस्मिता का सम्मान मिल चुका है। और
1: और
0: पद्मश्री से नवाजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि जब दाई जी यानी महासुंदरी देवी को पद्मश्री मिला था, तब मैंने पहली बार इस विशेष सम्मान के बारे में सुना था। आज अगर मेरी गुरु जीवित होती तो मुझे इस मिले सम्मान को देखकर बेहद खुश होती। तो सचमुच कितनी खुशी होती है ना ऐसी बात सुन के।
1: बिल्कुल, और प्रेरणा की स्रोत है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातें करते हैं।

0: तो सोनाली जी, के गाना हमने सखियों और सखाओं को सुनाया, और बात कर रहे थे शुरुआत में स्पर्श की, कि एक जरा से स्पर्श से आपका मन कितना हल्का हो जाता है। कई बार बहुत बड़ा हादसा टल जाता है सिर्फ स्पर्श से। तो पहले जो दादी नानी के आंचल का स्पर्श होता था, वो एक वटवृक्ष की तरह था, कि
1: सचमुच
0: जैसे हम तपती धूप से निकल कर कहीं पेड़ की छाव में बैठ जाए, इतना सुकून मिलता था माँ और दादी नानी के आंचल तले, है ना। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है, वो जैसे समय ही खत्म हो गया, वक्त ही नहीं है। अब परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग वर्किंग होते हैं अमूमन, और फटाफट तैयार होकर बाहर जाने की हड़बड़ी होती है, होड़ होती है, तो कहाँ वक्त रह गया है। लेकिन इसी में, इसी भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालें, एक साथ परिवार के साथ बैठे, थोड़ा टच थेरेपी का इस्तेमाल करें,
1: और
0: है
1: हम
0: ना।
1: लोग है ना, हम लोग भारतीय खासकर, हम लोग ना बस हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ते चरण स्पर्श में भी ना हम लोग ऐसे पैर को छूते नहीं है, बस जमीन में ऐसा झुक गए और जमीन में बस ऐसे घुटने तक ही कर
0: अब
1: दिया।
0: तो घुटने तक,
1: हाँ,
0: हाँ
1: बस
0: बिल्कुल।
1: इतना करते हैं। पर जब हम किसी को छूते हैं ना तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है, और हमें जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उस स्पर्श मिलता है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। जैसे स्नेह का सबसे सुंदर जो है ना, स्नेह सबसे सुंदर और सहज रूप होता है स्नेहिल स्पर्श। ये स्पर्श कभी माँ की उंगली पकड़ कर चलने में महसूस होता है, कभी पिता के कंधे पर हाथ रखकर मिली हिम्मत में मिलता है, कभी दादा दादी के आशीर्वाद में, तो कभी मित्रों के आत्मीय आलिंगन में। ये स्पर्श शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है ममता जी, और इसमें प्रेम की भाषा होती है,
0: बिल्कुल।
1: विश्वास का संदेश होता है और सुरक्षा का आश्वासन होता है।
0: और इन स्पर्श में ऐसी जादुई शक्ति होती है जो मन की व्याकुलता को शांत कर देती है। बच्चा या बड़े शायद उन शब्दों को भूल जाएं जो उन्हें सुनाए गए थे, लेकिन प्रेम से भरा वो स्पर्श जीवन भर उनकी स्मृतियों में अंकित होता है। वो स्पर्श दो दोस्तों का भी होता है, माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है, कि आप जब गले लग जाते हैं तो जैसे प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद रोता हुआ शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति, और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी। और ये प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान में भी ये बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है, और वो केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। सोनाली, आप ये देखिए ना कि जब कोई कहीं जब घर छोड़ता है, बाहर जा रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, गले लगते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं, और वो जो अंतिम मुलाकात होती है
1: जी
0: एक दूसरे से बिछड़ने की, वो आपके जहन में बस जाती है, या आप हाथ पकड़ के सिर पर हाथ रख देते हैं, जैसे कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो कहीं जाते हैं और उसके पीठ थपथपा देते हैं, या बच्चे को पीठ थपथपा के कह देते हैं कि देखो तुम तो विजेता होकर लौटोगे। तो ये बातें याद रह जाती है, और इसमें बहुत शक्ति होती है।
1: पर समय के साथ साथ ये सब हम चीजें भूलने भी लग गए। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे जाता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल

0: केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: बिल्कुल सही बात है। जो परिवार कभी एक साथ बैठकर सभी भोजन किया करते थे, अलग-अलग शहरों और देशों में अब बट गया है। दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती है, वो भावनात्मक भी होने लगी है। फोन और वीडियो कॉल से बातचीत तो हो जाती है, लेकिन माँ के हाथों की वो जो ममता, पिता के कंधे का वो जो सहारा और अपनों की निकटता का वो अनुभव कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा। वो थकान थक के लौटे स्कूल कॉलेज से तो माँ के कंधे पे सिर टिका लिया, भाई से भाई के गले लग गए, तो जैसे थकान कहीं दूर हो
0: छुमंतर हो
1: जाती
0: जाती
1: है।
0: थी, है ना।
1: लेकिन अब वो समय कहाँ है? और अब समय एक
0: गीत
1: गाना
0: सुने,
1: सुनवाने का।
0: सुनते हैं गीत।

0: सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। सचमुच प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या?
1: सचमुच
0: हाँ?
1: उसे,
0: स्पर्श के माध्यम
1: हाँ,
0: से।
1: उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है। ममता जी, एक
0: इन
1: हमारे
0: वीवर ने लिखा था ये
1: जी,
0: गाना, और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से, आनंद आश्रम फिल्म का गीत था।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि हमारी तीन सासू माएं, तीनों देवरानी, जेठानी की उम्र 80

0: के ऊपर है, और ये चाहती है कि बहुएं हमारे पास बैठे, बातें करें और अपना समय दें। हम सभी कोशिश तो करते हैं पर उनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी हैं। वो हमारा प्यार, स्नेह, समय और स्पर्श ही चाहती है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर और सखियों और सखाओं के कमेंट्स शामिल करते हैं।

0: दोस्तों, विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली, और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहाँ आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए, एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: वैसे एक सखी ने लिखा है कि दुनिया भर में माँ अमृतानंदमय इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेहिल स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेमिल स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा।
0: और एक श्रोता कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं है, बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही वो सब बदलने लगता है।
1: बहुत सही बात इन्होंने कही। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श। हाँ, मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक। लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते, क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं, परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं पर जताते नहीं है।
0: और फिर यही इसी वजह से बच्चे भी सीखते हैं, क्योंकि जब आप बचपन में उन्हें दुलराते थे, गोद में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपने छाती से चिपकाते थे, बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली, तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़े होने के बाद याद रहती है, तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं, या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
1: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति, और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रभावित होती है। ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है। व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना या छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता है।
0: क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ आप कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है, जहाँ पे 10-4 बर्तन होते हैं, तो

0: खटखट की आवाज होती है, टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहां पे टकराव ज्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो, जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन दो तीन लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं, हमने तो अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है
1: और
0: कि
1: फिर
0: हाथ
1: पीछे
0: बढ़ रहे और
1: ले
0: फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाए, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे।
1: हम नहीं बोलेंगे,
0: तो
1: वो पहले
0: ये
1: शुरुआत करें, हम क्यों
0: बिल्कुल, तो
1: करें।
0: ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है।
1: एक साथी ने लिखा है ममता जी कि मेरे विचार से माता पिता को अपने बच्चों को स्नेह स्पर्श से वंचित नहीं रखना चाहिए। हम अभी भी अपने बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेह स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं, बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरी धर्म पत्नी इस मामले में दो कदम आगे
0: क्या बात है
1: हैं।
0: भाई, बहुत
1: महिलाएं
0: बढ़िया।
1: हर क्षेत्र में
0: जी,
1: आगे।
0: तो वैसे भी ये कहा जाता है महिलाओं के हिस्से में, ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता आपके हिस्से में है, सहनशील बनो, तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशीलता महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
1: और
0: और
1: जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए, जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना उसकी मिठास ही कुछ और होती है और अपने अपने ही होते हैं। बस ये अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए।
0: बिल्कुल। और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब तलाशा
1: जताते हैं।
0: जाए, प्यार तलाशा जाने लगता
1: जी
0: है, तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है इसको मेंटेन रखें। एक
1: जी
0: श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों, जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिसमें जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके, छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहां पर एक दूरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था
1: कोरोना
0: कोरोना
1: काल।
0: समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। तो ये घर में तो ठीक है, अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज्यादा होती है टच करके बात करने की, बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं, तो वहां पे हालत, स्थिति बिगड़ भी सकती है, इसका भी ध्यान रखें
1: बस
0: आप।
1: हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी, कि कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं है,
0: बिल्कुल।
1: कहाँ हद से ज्यादा नहीं
0: हाँ,
1: आगे बढ़ना है और कहाँ
0: और
1: हमें गले
0: खास
1: लगाना
0: तौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उसे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज मी मुझे कुछ कहना है, तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय अब गाना सुनवा दे।
1: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई आप।
1: आम अभी पढ़ना है ममता जी
0: आम
1: आज।
0: आम बहुत खास है, कहने
1: आप
0: को
1: आज
0: आम
1: खास हो गए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बहार आती है गर्मी के मौसम में तो वो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में,
1: हाँ
0: फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइप, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का
1: कभी
0: रस
1: मैंगो
0: पराठे के
1: शेक बना
0: साथ, मैंगो
1: के।
0: शेक बना के, कभी काट के। तो
1: मुझे
0: आप बताइए, आप को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मतलब काट
1: तो
0: के?
1: वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है, क्योंकि हमने उसे बनाया फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल
0: शक्कर
1: दो।
0: डाल दी।
1: फिर
0: हाँ
1: माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है उसमें थोड़ा दूध डाल दो, फिर उसमें इलायची डाल दो,
0: ज्यादा
1: ऐसे करते करते करते फिर उसमें
0: हो
1: थोड़ी
0: जाता।
1: बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है, और फिर है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता था, ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले। फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते हैं, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस 2-3 फाक खा लो।
0: बस,
1: हाँ
0: मतलब एक आम जैसे
1: हाँ
0: तैसे,
1: हाँ खा
0: उससे
1: लिया,
0: ज्यादा नहीं खाना
1: और
0: है।
1: फिर अगर
0: तो
1: जब
0: ये
1: आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है, तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना तो फिर आम का भी आनंद ले सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान रख
0: अच्छा, तो
1: सकते।
0: मतलब सत्तू के पराठे के साथ और पूरी के साथ आम का रस नहीं खा सकते?
1: खा सकते हैं ना, बिल्कुल
0: हाँ,
1: खा सकते हैं।
0: लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इनके शौकीन हो गए, क्योंकि
1: हाँ
0: अमूमन ये कहा जाता है, अरे क्या बना है, आम का रस और पूड़ी,
1: पूरी।
0: तो ये तो बहुत, और साथ में आलू की भुजिया।
1: हाँ
0: तो हमारे श्रोता बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी इन दिनों में कितनी बार आम का रस पूड़ी खा चुके हैं?
1: और लोग बुलाते भी हैं, चलो हमारे घर आज आमरस पूरी का आयोजन है तो आप आइए खाने के लिए, उसके साथ में सूखी आलू की सब्जी भी रख देते हैं, तो
0: बिल्कुल।
1: बहुत बहुत आनंद आता है सब खाने में।
0: तो हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने बाग में जाकर आम तोड़ कर खाया है, और कौन कौन से आम? हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने तो ये देसी आम बहुत सारे खाए हैं, और तोता परी एक ने लिखा है चौसा, लंगड़ा, ये आम हमने खाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तो रत्नागिरी आम खाया है बहुत सारा, इधर महाराष्ट्र में और कोंकण साइड में
1: जी
0: खास तौर से। ये अल्फांसो जो आम होता है, हापुस आम, ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जो लोग लंगड़ा और चौसा खा चुके हैं उन्हें इनमें स्वाद नहीं आता है। उनको तो फिर लंगड़ा आम तो ऐसे है कि कच्चा आम भी आपको मीठा ही लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है।

0: वो आम
1: तो
0: चौसा
1: उसमें
0: आम भी
1: जो,
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ तो उसमें जो शक्कर मिलाने वाली बात है ना, जरूरत
0: बिल्कुल
1: नहीं है।
0: जरूरत ही नहीं है उसमें। और वो तो हम लोग ना बारिश होती है ना उसके बाद भी खाते हैं, यानी रक्षाबंधन आता तब तक वो आम आता
1: अभी
0: है।
1: लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में खासतौर से केसर आम
0: हाँ
1: बहुत
0: केस
1: मीठा आ रहा।
0: केसर आम है, फिर उसके बाद में जो बैगन फली आम जो आता है वो जो साउथ का आम है वो भी खाते हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी हमारी तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती तो क्या हम आम खाने का आनंद ना उठाएं? वैसे तो आम खाने का आनंद उठाएंगे, आम का नाम सुनते ही हरे पीले रसीले आम आंखों के आगे घूमने लगते हैं। मार्केट जाओ तो हर तरफ आम ही आम दिखते हैं, घर घर में आम के चर्चे, किसने कितने बॉक्स आम के मंगवाया। पर मेरा तो कुछ खास ही अनुभव रहता है, घर का बगीचा है, आम का पेड़ है। सच मानिए एक आम का पेड़ ही कितने सारे आम दे देता है कि आपने जान पहचान के लोगों को खिलाने के बाद भी काफी सारा आम रह जाता है, बिल्कुल शुद्ध बिना रसायन वाला आम। आम के अचार बनाए, आम रस बनाए, मिल्क शेक, आम लस्सी, स्मूदी, सब कुछ, और गर्मियों का आनंद आम के साथ ले रही हूं।
1: बिल्कुल। और यहाँ आम के बगीचे से याद आया कि हमने भी बचपन में आम का बगीचा, बड़े बड़े बाग देखे हैं
0: जी
1: और वहाँ पेड़ से तोड़कर आम खाए हैं और गिरे हुए आम बटोरे हैं। भले खाए नहीं लेकिन वो अजीब सा शौक होता था। तो वो जो पिता और दादा के लगाए हुए बाग हैं
0: जी
1: उनको बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए। वो चाहे कलमी आम हो, लंगड़ा, चौसा या
0: जी
1: रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है वो सीख कर आपको आम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और बड़ा आसान होता है, कई कई कुछ आम तो गुठलियों से ही
0: अपने आप उग
1: पनप
0: जाते
1: जाते हैं,
0: हैं।
1: उग जाते हैं।
0: हाँ
1: जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी हमने कुछ गुठलियों से आम
0: हम
1: लगाए
0: लगाए
1: हैं
0: हैं।
1: और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का आनंद, आहा, बस पूछिए मत। एक दो हो तो कुछ बात भी बने, मगर इतने वैरायटी के आम की पूछो मत। जहाँ गए वहीं खा लिया, यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही है, फिर दशहरी का क्या कहना। हापुस, वाह वाह, ये तो इधर मिलता ही नहीं है। जबकि दक्षिण का तोता परी, अरे यही तो दक्षिण भारत से इधर सबसे पहले आता है। मगर हापुस, जी हाँ, सब खाया जाता है और जी भर के खाया जाता है। अब रोग भी लगाए तो कैसे भाई, स्वाद का मामला है। और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है, तो इनकी बात से हमें याद आ गया कि गांव में बाल्टी में आम भिगो दिया जाता था
0: हाँ,
1: और लोग बाल्टी, पूरी की पूरी बाल्टी आम खा
0: और
1: लेते
0: वो
1: थे।
0: छोटे छोटे चूसने वाले आम थे ममता
1: हाँ
0: जी, वो
1: हाँ और
0: आते
1: आप तो कह रही कि एक आम दो
0: थे।
1: फांक, वो
0: अब
1: तो
0: ओ ममता जी, वो जमाने में तो 10 आम भी खा लो तो कुछ नहीं होता था, पर
1: उसमें,
0: अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है ना।
1: और उसमें केमिकल नहीं होता था कोई
0: हाँ
1: भी,
0: केमिकल नहीं
1: कोई
0: होते,
1: दवा मिला के नहीं, वो सीधे देसी
0: और
1: आम
0: खेलते
1: मिलता
0: कितने थे
1: था।
0: ममता जी हम उस वक्त कि आम खाए और फिर खेलने चले गए, दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए, 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था। अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि गर्मियों की चिलचिलाती धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा आम खाने को मिलता है तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जुड़ाव, आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालना, परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम की, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हाफुस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं। और इसके व्यंजन भी जैसे आम रस है, मैंगो शेक है, आइसक्रीम और अचार भी थालियों की शान बढ़ाते हैं।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे, तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था, जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था और फिर उसे बाल्टी में ही रख कर खाते थे। तब होड़ लगता था कि किसके सामने गुठलियों की ढेर ज्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में फोड़े फुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे,
0: हाँ
1: और
0: ये
1: आम
0: होठों
1: का,
0: के यहाँ पे
1: और आम का पन्ना भी बनता था।
0: हाँ
1: और साथ में गांव में तो आम के, आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी धोए जाते थे।
0: ओहो
1: तो
0: ये।
1: ये कितने तरह के आम के, कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही निराली है।
0: और आम की जो रोटी भी बनाते थे, वो आम का
1: हाँ,
0: रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा
1: आम
0: घी लगा
1: पापड़।
0: के
1: हाँ
0: आम पापड़ उसमें डाल के और उसको सूखा दिया, वो साल भर खाते थे।
1: अमावट भी कहा
0: जी
1: जाता है
0: जी
1: जिसे। तो और बोलिए।
0: एक साथी ने लिखा है कि भाई आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं, और आम बैगन फली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं, आम खाने का मजा ना अलग होता है। सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना। तुमने उसको ज्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया। इसका तो मजा ही कुछ अलग होता था। आज भी आता है, आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूंगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है। इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ कर बैठ कर।

0: खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी का गांव याद आता है। नानी के गांव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी। बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहाँ जो उन छोटे रेशेदार आमों में होता था। तो अब क्या इरादा है,
0: आप एक गीत सुन ले।
1: सुनते हैं।

0: वजन कैसे कम करना है इस बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, फिर हमें राही प्यार के तक दोपहर तक बाजार बैंक से जुड़े काम निपटा लेता हूँ, सखी सहनी सुनने के बाद आराम कर लेता हूँ,
1: क्या बात
0: शाम
1: है।
0: को इवनिंग वॉक करने जाता हूँ जिसके कारण दोपहर का खाना भी आसानी से पच जाता है, और जब आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, चलने के कारण आपके हाथ पैर में दर्द भी शिकायत नहीं होगी, ये मेरा निजी अनुभव है। वही एक साथी कहते कि मैं और मेरी श्रीमती सुबह 4 बजे योग, शाम 6 बजे 5 किलोमीटर जाकर वापस घर पैदल आते हैं, रात का भोजन सिर्फ दाल और मूंग की दाल और 2 रोटी लेते हैं, दिन में संतुलित आहार दलिया दूध हरी सब्जी पालक लौकी करेला ग्वारफली 2 रोटी पर्याप्त और 1 कटोरी आम का रस, हर 1 घंटे 1 गिलास पानी। क्या बात है।
1: बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि अगर नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और जितनी कैलोरी ले रहें
0: जी
1: उतना आप शारीरिक श्रम करते रहें तो वजन बढ़ेगा नहीं। व्यायाम शरीर शरीर की अतिरिक्त कैलोरी जलाने में सहायता करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चाल से पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा योगा, साइकिलिंग, तैराकी और नृत्य भी अच्छे विकल्प हैं।
0: और सबसे जरूरी बात है ममता जी, नींद पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे ना भोजन छोड़ने लगते हैं कि कुछ लोग ये खाना बंद कर देते हैं वो खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद में अचानक से खाना शुरू कर देते हैं, उससे भी हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तनाव कम करें, जो लोग तनाव लेते हैं तो उन्हें भी उनका भी वजन बढ़ता है, और मीठे और जंक फूड पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, पिज्जा बर्गर चिप्स केक और मिठाइयों में कैलोरी ज्यादा होती है, तो पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए, और घर के बने भोजन को, पौष्टिक भोजन को हमें प्राथमिकता देना चाहिए।
1: मतलब आम के रस में शक्कर नहीं मिलाना चाहिए, आपने जैसे
0: हाँ, आम के रस में शक्कर
1: बताया
0: बिल्कुल नहीं
1: था
0: मिलाना है
1: बिल्कुल
0: उसे।
1: मीठी चीज़ में।

0: शक्कर मिला के ना खाएं।
1: अब कुछ लोग चाय में भी इतनी सारी शक्कर डाल के पीते हैं, तो जहां तक हो सके अगर मिठाई खाना है तो चाय फीकी पी सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: वही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि ये जो वजन घटाने की गति तेज करने के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर पर कार्डियो, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से भी शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे आराम करते समय कैलोरी बर्न होती है।
0: और साथ में पानी ज़्यादा पीते रहना चाहिए, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें अभी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना सुनवा दें, प्रोग्राम का आखिरी गाना सुन।

0: छोटी बहन फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें थी। और अब सोनाली जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं यूनुस खान बोल रहा हूँ। स्टूडियो नंबर एक वो स्टूडियो है जहाँ हम अपने फोन इन कार्यक्रमों के लिए आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 02-2867-0288 यानी 2867-0288 और 02-400-24662 यानी 400-2466। तो सोमवार को दिन में 11 बजे से रिकॉर्डिंग होती है। देश भर के श्रोता फोन करते हैं और कई श्रोता इस बात से निराश होते हैं कि उनका फोन नहीं लगता। दरअसल फोन लाइंस की अपनी सीमाएं हैं ना। देश के कोने कोने से जब हजारों लाखों श्रोता एक साथ कॉल करते हैं तो कुछ खुशनसीब श्रोताओं का कॉल लग जाता है और उनकी हमसे बात हो जाती है। बस ये है कि आप कोशिश करते रहिए। और हाँ, जहाँ से फोन कर रहे हो वहाँ शोर नहीं होना चाहिए। नेटवर्क अच्छा हो तो आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार,
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ, प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, कैसी हैं आप?
1: बहुत ही अच्छे हैं, मजेदार गर्मी का मजा लेते हुए हम आपको कॉल कर रहे हैं सर जी।
0: गर्मी का मजा, ये बड़ा तंज है ये।
1: हर मौसम का अपना मजा है सर जी। यदि अपन बारिश में फिर ये गर्मी धूप ढूंढेंगे तो फिर प्राप्त नहीं हो पाएगा ना।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन इस साल की गर्मियां कहर हैं, आपको ऐसा नहीं लगता?
1: नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सभी मौसम के आदी हैं और हमें हर मौसम में अपना उनका मजा लेना बहुत अच्छा लगता है।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, फिल्म का नाम है हम आपके है कौन।
0: अच्छा,
1: उस फिल्म में लता मंगेशकर SP बाल सुब्रमण्यम का गाया हुआ गीत है सर जी, उस गीत को प्ले कीजिएगा
0: जी।
1: गीत के बोल मैं थोड़ा गुनगुना के बता दूं क्या सर जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जदा होकर तुम्हें दूर जाना है, कुछ पल की जुदाई फिर लौट आना है, ये वाला गीत सर जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आपने बताया कि आपका नाम पूनम नायडू है और आप बस्तर से हैं, तो बस्तर में कब से हैं आप या यहीं पैदा हुई हैं?
1: हम यहीं पर पैदा हुए हैं सर जी। जब MP था, मेरे पापा का जॉब यहाँ आंध्रा से यहाँ हो गया तो हम लोग यहीं पे बस गए, मम्मी पापा, और हमारी पैदाइश जो है यहीं पे हुई MP में। बाद में डिवाइड हुआ ना छत्तीसगढ़ और MP।
0: अच्छा, तो आपको तेलुगु आती है?
1: हाँ, तेलुगु पूरा बोलते, घर में तो हमारी मातृभाषा है ना सर जी।
0: तो बताइए तेलुगु में इस बात को कैसे बोलेंगे कि सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गाना। अरे बाप रे बाप। नहीं, इसको को थोड़ा छोटा बोलिए। वेरवंडी वीरू मी नचिंदी पाटा, सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश।
1: राकेश यादव बोल रहा हूँ, सासनी के टलीगढ़ से।
0: राकेश जी
1: जी
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया ठीक है।
0: क्या काम करते हैं?
1: दुकान करते हैं मोबाइल के। टाइम बहुत सुनता हूँ मैं, काफी दिनों से सुन रहा हूँ। जब हमारे जब ऐसा वो रेडियो था
0: जी,
1: बहुत काफी समय पहले से रेडियो भारती सुन रहे हैं।
0: अच्छा बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है।
1: आशा पिक्चर का ही गाना सुनना चाहते हैं, शीशा हो या दिलो आके टूट जाता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते सर, जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी जगदीश जी, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया सर।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे वो सुमन कल्याणपुर जी और मुकेश जी की आवाज में मेरा प्यार भी तू है, बहार भी तू है, तू ही नजारों में।
0: साथी फिल्म का गाना, मजरू सुल्तानपुरी के बोल नौशाद की तर्ज। सुमन जी हमारे बीच
1: जी
0: नहीं रही और एक तरह से आप इस गाने के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं।
1: जी सर
0: जी, चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते सर,
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम अपने एमपी सागर से बिक्रम सिंह और पुचाली राजा।
0: बिक्रम सिंह, सागर में कौन से इलाके से बोल रहे हैं?
1: सागर इलाके मैंने तहसील बंडा, हमारा ग्राम छोटा सा गांव पड़ता है क्वायला।
0: बंडा तो समझ में आ गया हो, पर गांव का नाम समझ में नहीं आओ।
1: क्वायला क्वायला
0: अच्छा बताओ, क्या कर रहे हैं
1: जी
0: आज?
1: सर। अब बैठे हैं सर, छोटी सी किराने की दुकान है जी।
0: अच्छा, और गर्मी अर्मी कैसी पड़ रही?
1: गर्मी तो सर बहुत है, अभी आपको थोड़ी राहत मिल चुकी है
0: काय, बारिश हो गई का?
1: जी। बारिश हो गई 2 दिन तक में।
0: अच्छा, कितनी बारिश हुई? बहुत सारी हुई या थोड़ी सी हुई?
1: थोड़ी सी भाई है, सब ज्यादा तो नहीं भाई है।
0: हाँ,
1: हाँ
0: अभी तो 9 तपा चल रहे, ये खत्म
1: जी
0: हो गए।
1: जी सर, बिल्कुल 3 दिन बाकी हो सर, जगह उतरने को
0: तनक बाकी है, 3 दिन बाद तो फिर
1: जी।
0: बारिश आ जाए है, फिर मौज हो जाए है काय।
1: जी सर,
0: अच्छा कौन सा गाना सुनने हैं ये बताओ।
1: हमको सुना है पगला कहीं का।
0: है पगला कहीं का? को है पगला?
1: पगला कहीं का फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का, और बोल है वो मन्ना डे की आवाज में है, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा।
0: ए ददारे, किसी ने किसी की भैंस को डंडा मार दो का का होगा, हमें तो बताओ।
1: जी आपसे बात करके
0: मजा आ गया, हमसे बात करके हमेशा ही मजा आ गया आपसे
1: बहुत
0: बात करके।
1: आनंद आया सर।
0: सच्ची हमें भी बहुत ही आनंद आ गया, हमें जितने
1: जी
0: भी अपने श्रोताहरण है ना, सबसे बात करके बहुत ही मजा आता है।
1: आपका बिल्कुल सर, बुंदेलखंड जैसा बटका है बिल्कुल आपका।
0: बुंदेलखंडी आए अपन शुद्ध वाले। हाओ तो चलो, बातों का सिलसिला कर रहे खत्म और आपको सुना रहे आपकी फरमाइश को जे गाना।
2: क्यों मारा क्यों मारा क्यों मारा क्यों मारा क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों मेरी बहन।

लड्डू पेड़े खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है, ये मच्छर बीन बजाते हैं, वो अपना राग सुनाती है, वो ठुमक ठुमक नाचे जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं, एक तारा मेरी भैंस को डंडा।

हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हम सब

जहानारा मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चर तू के तेरे बाप का बोझा कर।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। हमारी सभा में आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को प्रणाम। अभी आपके साथ मैं हूं जया। अभी से लेकर रात्रि के 11:10 तक हम आपके साथ रहेंगे। अपनी सभा में हम आपके लिए ढेर सारे कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं युवावाणी से। यह कार्यक्रम विशेषकर हमारे युवा श्रोताओं के लिए है, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवावाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपकी पसंदीदा कार्यक्रम युवानी में। आज हम जानेंगे कि क्या कुछ खास है आज के पिटारे में। तो मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रिया, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आकाश। तो बताइए आकाश, क्या कुछ खास है?
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करता हूं मैं भी आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। श्रोताओं, सबसे पहले आज कार्यक्रम की शुरुआत प्रेरक पंक्ति के साथ करेंगे। इसके बाद आज है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, यानी जो बच्चे आक्रामकता के शिकार हुए हैं उनके लिए, उन्हें उनसे बचाने के लिए उनके लिए दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय निर्दोष बाल आक्रामकता पीड़ित दिवस के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और
0: वैसे आकाश, आज है दिन गुरुवार, और दोस्तों हर गुरुवार को हम लेकर आते हैं आपके लिए बेहद खास सेगमेंट थ्रो बैक थर्सडे। तो इसके अंतर्गत हम सुनेंगे गोल्ड मेडलिस्ट रंधीना कुमारी से आकाश की बातचीत, और फिल्म संगीत का तो माहौल बना रहेगा आकाश।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और साथियों, हम आपको बता दें कि कार्यक्रम में स्पोर्ट्स अपडेट और रोचक तथ्य का जो हमारा सेगमेंट है वो आज भी होगा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस पहले ट्रैक के साथ।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म वेलकम से आनंद राज आनंद और श्वेता पंडित की आवाज में ये प्यारा सा गीत।
1: श्रोताओं,
0: हम चलते हैं आज की प्रेरक पंक्ति के तरफ। तो प्रेरक पंक्ति के अंतर्गत आकाश क्या कुछ खास है जो प्रेरक पंक्ति हमारे युवा श्रोताओं के अंतर्गत एक जुनून जोश ला दे?
1: बिल्कुल। तो प्रिया, जैसा कि हम जानते हैं कि आम तौर पर जो हम परंपराओं का पालन करते हैं, उसके बारे में मशहूर अमेरिकी लेखक हेलेन केलर ने एक बात कही थी। उन्होंने
0: बिल्कुल
1: कहा था, एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाती है। यानी कि किसी भी परंपरा को हमें आंख मूंद कर उसका पालन नहीं करना चाहिए, हमें उसे समय के साथ आकलन करना चाहिए, उसकी परख करनी चाहिए और तभी उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाना चाहिए। क्योंकि कई बार परंपराएं जो होती हैं प्रिया, वो कुरीति में बदल जाती हैं।
0: बिल्कुल
1: क्या आप
0: आकाश
1: बता सकती हैं भारत में कोई ऐसी कुरीति जो अब खत्म हो गई है?
0: आकाश वैसे कहा जाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो ये जो आपने स्टेटमेंट बोला ये काफी अच्छा है कि लोगों को एक पीढ़ी का पाखंड न बनकर अगली पीढ़ी की परंपरा जो बन जाती है उसमें कहीं ना कहीं अपनी सोच के अनुसार उसको देखना चाहिए और परिवर्तन करना आज के समय में बेहद जरूरी है। और कहा जाता है ना आकाश की एक कबीर की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, उनकी दोहा है कि ऐसे बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहुं शीतल हो। दोस्तों आज के समय में जो वाणी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, उसका अपनी अहमियत है। लोगों के सामने हम क्या बोल रहे हैं, हमारी भाषा क्या है, उसकी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है कि मीठी वाणी हमेशा दूसरों के दिल को भी खुशी देती है और हमें सुख देती है। तो आकाश आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि हमें भाषा कैसे बोलनी चाहिए?
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने दोहे के माध्यम से बताया।

0: हम सभी को प्रिय तो बोलना ही चाहिए, किसी के लिए कर्कश या द्वेषपूर्ण भाव के साथ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें भाषा की, तो अगर हम एक शब्द, एक सेंटेंस को अगर हम आपको बोलकर समझाना चाहें, श्रोताओं को भी हम बताना चाहेंगे कि एक सेंटेंस मान लीजिए होता है, रोको मत आने दो। और उसी,
1: रोको मत आने दो।
0: जी बिल्कुल, रोको मत आने दो। और उसी को अगर मैं बोलता हूँ रोको मत आने दो,
1: क्या बात है,
0: कितना अर्थ बदल गया,
1: दोनों
0: आसमान और
1: बिल्कुल
0: जमीन का
1: बिल्कुल
0: अंतर आ
1: बिल्कुल
0: गया।
1: आकाश, रोको मत आने दो। तो ये बहुत ही अच्छा आपने वाक्य बोला। तो दोस्तों, अब हम इसी वाक्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं और अपने कार्यक्रम को रोकते नहीं हैं, आगे बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं हम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला ट्रैक।

0: श्रोताओं, अभी आपने यह प्यारा सा फिल्म संगीत सुना। शंकर महादेवन और शान और साथियों की आवाज़ में फिल्म दिल चाहता है से। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के विषय, अंतर्राष्ट्रीय निर्दोष बाल आक्रामकता पीड़ित दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन की।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल किसी एक देश, समाज या समुदाय से जुड़ा हुआ नहीं, ये एक ऐसा विषय है जो पूरी मानवता के हृदय को झकझोर देने वाला विषय है।
0: बिल्कुल सही कहा प्रिया आपने। हर वर्ष 4 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय निर्दोष बाल आक्रामकता पीड़ित दिवस। यह दिवस उन मासूम बच्चों की पीड़ा, संघर्ष और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है जो युद्ध, हिंसा, संघर्ष, आतंकवाद, घरेलू उत्पीड़न और विभिन्न प्रकार की आक्रामक घटनाओं का शिकार बनते हैं।
1: दोस्तों, जब हम बचपन की बात करते हैं तो हमारे मन में हंसी, खेल, सपने, शिक्षा, उत्साह और उज्जवल भविष्य की तस्वीर उभरती है। लेकिन दुनिया के अनेक हिस्सों में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनका बचपन हिंसा और भय के साए में बीत रहा है।
0: जरा सोचिए प्रिया, जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, उस उम्र में कोई भी बच्चा विस्थापन, भूख या भय या असुरक्षा का सामना करे तो उसे कैसा लगेगा। यह स्थिति केवल दुखद ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय है।
1: बिल्कुल आकाश, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1982 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। उस समय दुनिया के कुछ क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों के कारण बड़ी संख्या में बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे थे। संयुक्त राष्ट्र ने महसूस किया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता और प्रयासों की आवश्यकता है।
0: श्रोताओं, इस दिवस का मूल उद्देश्य है कि लोगों को यह समझना चाहिए कि किसी भी प्रकार की हिंसा का सबसे गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, चाहे वह युद्ध हो, सामाजिक संघर्ष हो, घरेलू हिंसा हो या किसी प्रकार का शोषण हो। सबसे अधिक प्रभावित जो होता है वे बच्चे ही होते हैं। दोस्तों, बचपन केवल जीवन का एक चरण नहीं होता बल्कि पूरे व्यक्तित्व की नींव होती है। यदि इसी नींव पर भय, हिंसा या असुरक्षा की छाया पड़ जाए तो उसका प्रभाव जीवन भर बना रह सकता है।
1: बिल्कुल आकाश, और कई शोध से हमें यह देखने को मिलता है कि हिंसा का सामना करने वाले बच्चों में मानसिक तनाव, आत्मविश्वास की कमी, असाध भय और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएं विकसित होती हैं। कई बार उनके सपने और संभावनाएं भी प्रभावित होती हैं।
0: लेकिन एक बात यहाँ और भी महत्वपूर्ण है प्रिया, यदि समय रहते बच्चों को सुरक्षा, प्रेम और शिक्षा के साथ उचित मार्गदर्शन मिले तो वे कठिन परिस्थितियों से भी उभर कर समाज के सशक्त नागरिक भी बन सकते हैं।
1: बिल्कुल, और इसीलिए यह दिवस केवल पीड़ा को याद करने का दिन नहीं है बल्कि यह संकल्प का भी दिन है। हम बच्चों के अधिकार की रक्षा करेंगे और उनके लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करेंगे।

0: जब हम बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार प्राप्त है।
1: सही कहा आकाश आपने। और बच्चों के अधिकार किसी उपकार का विषय नहीं है, बल्कि यह उनके मौलिक अधिकार हैं। दुनिया के लगभग सभी देशों ने बच्चों की सुरक्षा और विकास के लिए विभिन्न कानून और नीतियां बनाई हैं।
0: फिर भी चुनौती तो बनी हुई है। कई बच्चे संघर्ष ग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं, कई बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, कुछ बच्चे बाल श्रम और शोषण का भी सामना करते हैं।
1: दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि हम अपने आसपास के बच्चों के प्रति संवेदनशील रहें, उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें सहयोग प्रदान करें, तो हम उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।
0: श्रोताओं, अक्सर हम सोचते हैं कि वैश्विक समस्याओं का समाधान केवल सरकारें या बड़ी

0: झेल रहे हैं उनकी समस्याओं को समझे और उन्हें सहयोग प्रदान करें तो हम उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।
1: श्रोताओं, अक्सर हम सोचते हैं कि वैश्विक समस्याओं का समाधान केवल सरकारें या बड़ी संस्थाएं ही कर सकती है, लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति की छोटी सी संवेदनशीलता भी किसी बच्चे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।
0: वैसे आकाश, यदि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, यदि कोई बच्चा मानसिक तनाव में है तो उसकी बात सुनना, यदि किसी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके समर्थन में खड़ा होना, ये भी सभी छोटे लेकिन ये सभी तो छोटे काम है लेकिन काफी महत्वपूर्ण कदम
1: बिल्कुल,
0: है।
1: छोटे छोटे कदम से ही बड़ा बदलाव आता है। प्रिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्रोताओं, हमें यह भी समझना होगा कि बच्चों पर होने वाली आक्रामकता केवल शारीरिक हो, ये जरूरी नहीं। कई बार कठोर शब्द, अपमान, उपेक्षा और मानसिक दबाव भी बच्चे पर गहरा असर डालते हैं।
0: बिल्कुल आकाश, इसीलिए बच्चों के साथ संवाद, सम्मान और स्नेहपूर्ण व्यवहार अत्यंत आवश्यक है। हमारे बच्चे हमारे भविष्य की नींव हैं और उनकी खुशहाली ही जीवन की, समाज की वास्तविक प्रगति का संकेत है।
1: श्रोताओं, जब जब कोई बच्चा असहज, सुरक्षित महसूस करता है तो वह खुलकर सीखता है। सुरक्षित वातावरण में वह खुलकर बोल पाता है, सपने देख पाता है और अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर पाता है, और यही स्वस्थ समाज की पहचान होती है, स्वस्थ समाज की नींव होती है।
0: दोस्तों, आज के इस अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव सजग रहेंगे और किसी भी प्रकार के हिंसा या शोषण के प्रति मौन नहीं रहेंगे।
1: क्योंकि बच्चों की मुस्कान ही तो किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। प्रिया,
0: बिल्कुल आकाश, और जब बच्चे सुरक्षित होंगे तभी तो हमारा समाज सुरक्षित होगा और हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं विचारों के साथ हम चलते हैं आज की अगली ट्रैक की ओर। क्यों आकाश?
1: बिल्कुल प्रिया, आगे हम चर्चा करेंगे बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा में परिवार, समाज और विद्यालय की क्या भूमिका हो सकती है इस बारे में, लेकिन उससे पहले यह अगला ट्रैक।

0: छोटा बच्चा जान की, यह प्यारा सा गाना सुना आपने फिल्म मासूम से आदित्य नारायण की आवाज़ में। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और लौटते हैं हम अपने विषय पर।
1: बिल्कुल आकाश, और पहले हमने चर्चा किया था बच्चों पर हिंसा और आक्रामकता के प्रभाव के बारे में बातचीत की थी, लेकिन अब हमें यह समझना है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में हमारी भूमिका क्या हो सकती है। तो कहा जाता है ना कि परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होता है, और यहीं से उसे प्रेम, विश्वास, अनुशासन और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा मिलती है।
0: बिल्कुल प्रिया, यदि परिवार का वातावरण सकारात्मक और सहयोगपूर्ण हो तो बच्चा आत्मविश्वासी और संवेदनशील बनता है। वहीं यदि परिवार में लगातार तनाव, हिंसा या उपेक्षा हो तो उसका प्रभाव बच्चे के विकास पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है।
1: बिल्कुल आकाश, और इसीलिए माता पिता और अभिभावकों की बच्चों की भावनाओं को समझना उन्हें बेहद जरूरी है। उनकी बात सुननी चाहिए उन्हें, और उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वे सुरक्षित हैं।
0: दोस्तों, विद्यालय भी बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय भी एक अहम पड़ाव होता है किसी भी बच्चे के जीवन का। विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का केंद्र भी होते हैं।
1: और हाँ, शिक्षकों की जिम्मेदारी केवल पाठ पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों में मानवीय मूल्यों, सहानुभूति और आत्मविश्वास का विकास करना भी है आकाश।
0: बिल्कुल, जब विद्यालय में सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण होता है तब बच्चे अपनी प्रतिभा को बेहतर ढंग से विकसित कर पाते हैं, उन्हें निखार पाते हैं।
1: वैसे दोस्तों, समाज की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी बच्चे के साथ अन्याय या हिंसा हो रही है और समाज मौन रहे, तो समस्या और भी गंभीर हो जाती है ना आकाश?
0: बिल्कुल प्रिया, हमें यह समझना होगा कि हर बच्चा केवल परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।
1: और इसीलिए आज डिजिटल युग में

0: एक नई चुनौती भी हमारे सामने आई है, ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग और इंटरनेट के माध्यम से होने वाले शोषण से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है।
1: बिल्कुल, बच्चों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में जागरूक करना, उनके साथ संवाद बनाए रखना और डिजिटल दुनिया के खतरों से उन्हें परिचित कराना बेहद आवश्यक हो चला है।
0: श्रोताओं, दुनिया के अनेक देशों में विभिन्न संस्थाएं और संगठन बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है आकाश, पता है? जागरूक नागरिकों की है। हमें बच्चों की भूमिका में सतर्कता बरतनी चाहिए और जागरूक होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, यदि हम अपने आसपास बच्चों की समस्याओं को पहचानें, उनकी सहायता करें और उनके अधिकारों के प्रति सजग रहें, तो समाज में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन संभव है।
0: दोस्तों, यह दिवस हमें याद दिलाता है कि किसी भी बच्चे की पीड़ा केवल उसका व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि मानवता की चिंता है, और किसी बच्चे की मुस्कान केवल उसकी खुशी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सफलता का प्रतीक है।
1: तो आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाने का संकल्प लें जहां हर बच्चा सुरक्षित हो, शिक्षित हो, सम्मानित हो और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर प्राप्त करे।
0: साथ ही दोस्तों, हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंसा, शोषण और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाएंगे तथा बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, क्योंकि हर बच्चे को भय नहीं भरोसा चाहिए, हर बच्चे को संघर्ष नहीं अवसर चाहिए, हर बच्चे को उपेक्षा नहीं सम्मान चाहिए।
1: इतना ही नहीं प्रिया, हर बच्चे का ऐसा बचपन चाहिए जिसमें सपने हो, मुस्कान हो और उनके उज्जवल भविष्य की आशा हो।
0: तो इन्हीं संदेशों के साथ आकाश, हम चलते हैं आज की अगली ट्रैक की ओर।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: दोस्तों अब चलते हैं आज के बेहद खास सेगमेंट में। थ्रोबैक थर्सडे के अंतर्गत हम सुनेंगे गोल्ड मेडलिस्ट रणधीरा कुमारी से आकाश की खास बातचीत।
4: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आकाश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना और कार्यक्रम है युववाणी। श्रोताओं आज का दिन है गुरुवार और जैसा कि आप जानते हैं इस दिन होता है हमारा खास सेगमेंट थ्रोबैक थर्सडे। इस सेगमेंट में हम आपको सुनवाते हैं हमारे युवा श्रोताओं से खास बातचीत, जो कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर किसी नौकरी या अन्य रोजगार में अपनी करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयास में जुटे हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जो अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट रही और वर्तमान में नौकरी के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं। तो हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान रणधीरा कुमारी का। स्वागत है रणधीरा जी आपका हमारे इस खास प्रोग्राम युववाणी में।
5: बहुत बहुत धन्यवाद आकाश।
4: सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे श्रोताओं को दें।
5: आकाश मेरा नाम रणधीरा कुमारी है, मैं सिवान जिले के आंदर प्रखंड से संबंध रखते हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से की है। वर्तमान में मैं मद्य निषेध विभाग सिवान में कार्यरत हूँ।
4: हमारा सबसे पहले आपसे सवाल होगा कि सिवान के छोटे से गांव से आकर आपने पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और अपनी मेहनत व लगन से आपने गोल्ड मेडलिस्ट होने का गौरव प्राप्त किया, इस सफर को आप कैसे याद करती हैं?
5: काश ये सफर मेरा बहुत ही यादगार पल है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। खासकर जो यूनिवर्सिटी का लाइफ होता है हर किसी के जीवन में यादगार तो होता ही है। मैं देखती हूँ अपने नजरे से तो वो ज्यादा यूनिक नजर आता है क्योंकि मैं सोच ही नहीं थी कि इतने बड़े विश्वविद्यालय में मैं जाकर के पढ़ पाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी पीढ़ी का पहला ऐसा मतलब वो घर में डिजर्व करती हूँ कि लड़की हूँ जो कि यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई पूरी की अपनी। और पढ़ाई ही नहीं बल्कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रही हूँ और इसका श्रेय पूरी तरह से मेरे शिक्षकों को जाता है। मेरे शिक्षकों ने, मेरे सहपाठियों ने, मेरे सीनियर्स ने हर तरीके से सपोर्ट किया, चाहे वो जिस तरीके के

0: हो, नोट्स हो, सभी तरीके से या फिर मेंटली हो, कैसे चीजों को ऑब्जर्व करना है सिखाया बताया, और उन चीजों को मैंने फॉलो किया और मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी बनी।
1: तो बिल्कुल आप जैसा बता रही हैं, किसी की भी कामयाबी में उसके सपोर्ट सिस्टम जो होते हैं, जो उसके मित्र होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है।
0: जी जी
1: तो जैसा कि आपने बताया कि अभी आप मध्य निषेध विभाग में कार्यरत हैं, तो थोड़ा उस बारे में बताएं कि आप क्या काम करती हैं और इसके अलावा भी क्या कोई आप पढ़ाई लिखाई अभी कर रही हैं वर्तमान में।
0: जी बिल्कुल आकाश, जैसा कि मैंने बताया कि मद्य निषेध विभाग में मैं कार्यरत हूँ, तो मद्य निषेध जो नीति है वो 2016 से लागू की गई थी बिहार में, और ये पूर्णतः लागू भी है वर्तमान में बिहार में, और इस विभाग में मैं कार्यरत हूँ। इस को लेकर के मैं जिस जिले में कार्यरत हूँ वहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है कि प्रतिदिन जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, कितना शराब जब्त कर रही है, कितने लोगों को जेल भेज रही है, कितने लोग पीने में संलिप्त हैं, उन सभी लोगों का डेटा कलेक्ट करके मुख्यालय को अवगत कराना होता है। मेरा काम यही होता है, और इसके अलावा विज्ञप्ति बनाना होता है, प्रेस विज्ञप्ति हो या फिर किसी भी तरीके का सूचना हो, अगर विभाग के द्वारा जिला पदाधिकारी को देना हो या फिर मुख्यालय तक भेजना हो तो उसका प्रेस रिलीज बनाना या फिर कोई लेटर हो तो वो बनाना, डेटा कलेक्ट करना, यही मेरा काम विशेष तौर पर रहता है मेरे विभाग में।
1: इसके साथ साथ आप कोई अभी पढ़ाई भी कर रही हैं, कोई कोर्स कोई पाठ्यक्रम में इन्वॉल्व हैं?
0: बिल्कुल काश, मैंने अभी हाल के दिनों में हिंदू स्टडीज में एडमिशन लिया है और मैं अभी उसका प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। एग्जाम है मेरे इसी महीने में 15 तारीख से एग्जाम भी होने हैं हिंदू स्टडीज, और ये एक मेरा सोच था कि अगर मैं हिंदू हूँ और वर्तमान के दिनों में अभी आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा हिंदुइज्म वो कहें कि देश में चल रहा है, तो मुझे आया कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू ग्रंथों को नहीं जानती हूँ, हिंदू आखिर है क्या, मैं हिंदू परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी अगर एक्चुअल चीज नहीं जानती हूँ तो फिर क्या ही है, ये चीजें मेरे मन में चली थी और मैंने ये प्लानिंग 2-3 सालों से कर रखा था, लेकिन कुछ वजह से लेट होते गया और 25 में फाइनली मैंने एडमिशन लिया और 26 में मैं जस्ट एग्जाम देने जा रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का मेरा एग्जाम है इसी माह।
1: तो जैसा कि आपने बताया कि हिंदू स्टडीज ये बिल्कुल यूनिक सा विषय मालूम पड़ता है, अभी आप जैसा बता रही हैं कई लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे, मुझे भी इस बारे में बहुत जानकारी नहीं है। आमतौर पर लोग हिंदी अंग्रेजी BCA BBA आदि विषयों की पढ़ाई करते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं कि आखिर हिंदू स्टडीज है क्या और इसका मेन मकसद क्या है?
0: जी जी आकाश, मैं बेसिकली यही छोटे स्तर पे बता सकती हूँ कि हिंदू स्टडीज एक समग्र और बहुत ही बृहद स्टडीज है जिसके अंतर्गत हम सभी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, न सिर्फ ग्रंथ बल्कि इन ग्रंथों पे आधारित जितने दर्शन हैं सभी का अध्ययन करना, और इसके अलावा जो फिलोसफी के कुछ टॉपिक्स हैं उन्हें भी पढ़ना होता है। विशेष तौर पे इसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो हिंदू और रिलीजन, इन दो चीजों में बेसिक अंतर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। अभी वर्तमान में जो हम राजनीति के तौर पे देख रहे हैं वो रिलीजन हम लोग जानते हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म एक्चुअल में जो हमारा है वो जानना है तो हिंदू स्टडीज का स्टडी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं तो कहूंगी कि ये सस्पेंस बरकरार रहना चाहिए कि छात्र जाने कि आखिर धर्म क्या है, और इसको लेकर के भी स्टडीज ना सही लेकिन पढ़ाई जरूर करें कि आखिर ये हिंदू स्टडीज क्या है।
1: तो जैसा कि आपने बताया कि अभी हमें हिंदू स्टडीज के जरिए ये जानकारी मिल सकती है कि आखिर हिंदू धर्म ग्रंथ और जो इसका दर्शन है वो क्या है, तो ऐसे में क्या आप बताना चाहेंगी कि जो इसका करियर लेकर के स्कोप है, जो करियर के दृष्टिकोण से हम आगे इसमें किस रूप में देखते हैं, इसको क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स को जो इसकी पढ़ाई करेंगे?
0: आकाश, मैं करियर को लेकर के ये कहूंगी कि अभी गवर्नमेंट ने शामिल किया है UGC के अंदर, और ये इसे नेट जारी भी करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, या इसके अलावा जो धार्मिक संस्थान है वहाँ पे प्रवक्ता के तौर पे आप रिक्रूट किए जा सकते हैं।
1: जी बढ़िया बताया आपने, संक्षिप्त में अच्छी जानकारी दी। हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि कॉलेज के दिनों को अगर हम एक बार फिर से हम आपसे पूछें कि जो अनुभव आपके रहे हैं और उनमें आपने चर्चा की अपने सहपाठियों की, शिक्षकों का जो योगदान रहा, तो इसे कैसे याद करती हैं और कौन से वे शिक्षक हैं जिनको आज भी आप नहीं भूली हैं, आज भी उनके सीख को याद रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं?
0: आकाश, वैसे एक शिक्षक का नाम लेना तो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, खासकर क्योंकि मैं कॉलेज के दिनों में शिक्षकों के लिए मैं

0: हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाई। अगर इन फ्यूचर मुझे मौका मिला तो मैं उन सभी शिक्षकों के लिए जरूर कुछ करूंगी। ये मेरा लालसा है या फिर कहें कि इच्छा है, शिक्षक का नाम नहीं बल्कि सभी शिक्षकों को। 35 शिक्षक क्लास लेते थे पटना यूनिवर्सिटी में, और उन सभी शिक्षकों को मैं पहले प्रणाम करना चाहूंगी, या फिर जो भी सीनियर्स हैं, सपाठी हैं, उन्हें आज भी मैं याद करती हूँ। सबसे मेरा विशेष मोमेंट रहा गोल्ड मेडलिस्ट बनना, और उसके अलावे एक बहुत ही शानदार सफर रहा कि बीपीएससी में डीपीआरओ का एग्जाम देना और उसमें इंटरव्यू तक का सफर तय करना। लेकिन इंटरव्यू देने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, फिर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर भी जो कोशिश होनी चाहिए ये मोटिवेट आज भी मेरे शिक्षक गुरु करते रहते हैं। और कई एक शिक्षक हैं जो वर्तमान में उस पद पे कार्यरत हैं, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है कि मैं फिर से वैकेंसी अगर बीपीएससी के द्वारा आती है तो ये मेरा पटना यूनिवर्सिटी का जो सफर रहा है उसके अंतर्गत जो मैं मास कम्युनिकेशन की हूँ फॉर्म फिल करके मैं फिर से इस एग्जाम को दे सकती हूँ अगर ऐसी भर्ती आती है। कॉलेज का दिन मेरे लिए खासकर ये सबसे यादगार इसलिए रहा कि मैंने जितनी लगन से पढ़ाई की मुझे यकीन था कि मैं जरूर कुछ करूंगी, और मैंने अपने क्षेत्र में किया भी। मैं मीडिया से हमेशा जुड़ी रही, पीआर कंपनी में भी मैंने काम किया हो या फिर यू स्टेशन में भी काम हो या फिर इसके अलावे यूट्यूब चैनल का भी क्रेज था बहुत ज्यादा पटना में, तो वहाँ भी मैंने कार्य किया। इवन टीवी चैनल में भी मैंने इंटर्नशिप वगैरह किया, लेकिन बाद में जब कोरोना का टाइम था उस समय मैं एमए कर रही थी तो एक फॉर्म आया और उस फॉर्म को मैंने फिल किया और 21 में मेरा योगदान हुआ। 2 टायर का एग्जाम दी थी मदनिषेध में। इस बीच मैंने एक और फॉर्म अप्लाई किया था वही डीपीआरओ का, जिसका सफर मैंने आपको बताया, तो वो मेरे लिए सबसे यादगार रहा कॉलेज का कि मैं भूल नहीं सकती हूँ। और जो मैं पढ़ाई की हूँ मैं चाहूंगी कि आगे उस सेक्टर में कुछ ना कुछ जरूर करूँ। मेरा इंतजार है कि उस पोस्ट से रिलेटेड अगर कभी भी वैकेंसी आए तो मैं जरूर फिलअप करूंगी। और सभी छात्रों को जो सुन रहे हैं मुझे, मैं उनसे कहूंगी कि कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं होता, अगर आपका डेडिकेशन सही हो तो आप लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। और इसमें सहपाठी से लेकर शिक्षकों और जो घर वाले होते हैं उनका योगदान सबसे ज्यादा होता है। अगर आप शिक्षकों के बारे में कहें तो मैं कह सकती हूँ कि मैं जब पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली थी उस दौरान मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई मदद किया तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्वेंदु जी थे, उन्होंने किया। बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो या फिर लोन का प्रोसीजर में जो भी सर्टिफिकेट बनवाने थे कॉलेज से उन्होंने बनवाया। अपने स्तर से उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा। और इस तरीके से मेरा जो ग्रेजुएशन का सफर रहा शायद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के वजह से ही पूरा हो पाया। और आज मैं लोन भी चुकता कर चुकी हूँ अपनी मतलब मेहनत से। तो ये मुझे लगता है कि शिक्षक का ही देन है। और इस दौरान काफी सारे शिक्षक हैं जो कि आज भी मुझे याद आते हैं जिनका नाम लेना तो बहुत मुश्किल है। 35 शिक्षकों का लिस्ट में नाम,
1: जैसे कि आपने बताया कि 35 शिक्षक आते थे तो जाहिर तौर पर सभी का नाम अभी याद करना मुश्किल होगा, लेकिन आपने अच्छे से बयां की उन पहलुओं को, उन कहानियों को बताया जो आपके कॉलेज टाइम की रही हैं। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो आपका सपना है डीपीआरओ बनने का वो जरूर पूरा हो और आप सफल हो, तो हमारी ओर से भी आपको शुभकामनाएं हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आगे हम एक और सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। जैसा आपने बताया कि आप जनसंचार की छात्रा रही हैं, आपने मास कम्युनिकेशन किया है ग्रेजुएशन में, ऐसे में आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है, तो आकाशवाणी की भूमिका जो हम लोगों ने पढ़ा है मास कम्युनिकेशन के दौरान, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, यानी कि तीन जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, इसमें कहाँ तक सफल हुआ है और आप इसे किस रूप में देखती हैं?
0: मैं मानती हूँ आकाश, ये आकाशवाणी जो है हर घर तक 90 के दशक में ही पहुँच चुका था, और अभी तो आकाशवाणी ने अपना इतना अमूलचूल परिवर्तन किया है कि ऐप तक लाया है, मोबाइल अपने आप को जिंदा रखे हुए है। तो ये सफल है, लोगों के दिलों में गूंज रहा है। और मेरा मानना है कि आकाशवाणी जो खबर दे या फिर लोगों का जो मनोरंजन करता है वो कहीं ना कहीं एक लोगों को यूनिक स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करता है।
1: यानी आप कह रहे हैं कि जो लोक प्रसारक की भूमिका होनी चाहिए उसमें आकाशवाणी बहुत हद तक सफल है।
0: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है सर।
1: जी बिल्कुल। तो हम आपसे आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि जाते जाते आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आकाशवाणी के माध्यम से, क्या कहना चाहिएगा उनसे?
0: मैं यही कह

0: कहना चाहूंगी कि सफर कितना भी कठिन हो उसके लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। परिणाम की इच्छा तो मैं कहूंगी कि रखने के साथ ये नहीं रखना चाहिए कि मैं इस चीज में अव्वल आऊं हूं। अगर इंसान परिश्रम करे तो जरूर ही अव्वल आ सकता है, इसलिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए।
1: जरूर। तो आप अपनी पसंद का एक फिल्म संगीत भी बताएं, क्योंकि हम अपने मेहमानों को उनकी पसंद का जरूर सुनवाते हैं। तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
0: जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, ये मेरी कॉलेज लाइफ के लिए डेडिकेटेड रहा।
1: जरूर जरूर। तो हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। आपको आने वाले करियर के लिए, आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी बातें बताई जिससे हमारे श्रोतागण जरूर प्रेरित होंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट स्पोर्ट्स अपडेट की ओर। श्रोताओं, हम आपको बता दें क्रिकेट की जगत से जो खबर है, जहां आगामी T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। जी हां श्रोताओं, भारतीय टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबलों में नए कप्तान के साथ मैदान में उतर सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सूर्य कुमार यादव के खराब परफॉर्मेंस के कारण उन्हें कप्तान के पदभार से मुक्त किया जा सकता है और श्रेयस अय्यर या तिलक वर्मा को कप्तान की भूमिका में खिलाया जा सकता है। तो अगला स्पोर्ट्स अपडेट प्रिया आप बताएंगी।
1: बिल्कुल दोस्तों, भारत न्यूजीलैंड के खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा दौरा करेगी टीम इंडिया। इस दौरान टीम इंडिया कुल 12 मैच खेलेगी, जिनमें 2 टेस्ट, 5 वनडे और 5 T20 मुकाबले शामिल हैं। आपको बता दें कि 1926 में इंडियन आर्मी की हॉकी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर भी गई थी।
0: तो श्रोताओं, आज का कार्यक्रम युववाणी आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, हमें फीडबैक दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है feedback@patna@gmail.com। अब घड़ी ईशुओं ने इशारा किया है प्रिया विदा लेने का,
1: और चलते चलते हम अपने श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं,
0: लेकिन अब समय की चूंकि कमी है तो ऐसे में हम माफ़ी चाहेंगे श्रोताओं से, और हम चाहेंगे कि हमें फीडबैक दें हमारे ईमेल आईडी feedback@patna@gmail.com पर। अब अपने रेडियो दोस्त आकाश
1: और प्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए मैथिली कार्यक्रम भारती।

मैथिली कार्यक्रम भारती सुननिहार समस्त श्रोता के प्रभातक सादर नमन। श्रोता मित्र, आजुक कार्यक्रम में हम सब गीत नादक आनंद लेब। गीत नाद सुनौता आशुतोष कुमार मिश्रा, संगे सुनब वार्ता बिखे होयत प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या। ई वार्ता सुनौता मिहिर कुमार झा, मुदा ओहि सबसे पूर्व किछ अपना में गप सब सेहो करब। देखू श्रोता मित्र, आजुक समय में बढ़ैत प्रदूषण आ प्राकृतिक संसाधन के अंधाधुंध दोहन संपूर्ण मनुख जातिक लेल पैघ खतरा बनि गेल अछि। अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन, औद्योगिक कचरा आ जंगल के क्षति सँ धरती के तापमान लगातार बढ़ि रहल अछि। ग्लेशियर लगातार पिघल रहल छैक, एहिसँ समुद्र के जलस्तर बढ़ि रहल अछि। कारखाना आ वाहन सँ निकलै वाला धुआं हवा के जहरीला बना देने छैक। ओतहि प्लास्टिक कचरा जल स्रोत के दूषित बना रहल अछि। प्राकृतिक आवास के नष्ट भेला सँ कतेको प्रजाति विलुप्त होयबाक स्थिति में आबि गेल छैक। एहि लेल ठोस आ सामूहिक डेग उठेबाक जरूरत अछि। प्रत्येक वर्ष पर्यावरण संरक्षण के लेल विश्व भर में जागरूकता पसारबाक लेल 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस मनाओल जाइत अछि। एहि मादे हमरा अहाँ के पर्यावरण के रक्षा लेल प्रेरित कयल जाइत अछि। संयुक्त राष्ट्र 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में विश्व पर्यावरण दिवस के शुरुआत कयने छल। एहि के बाद 1973 सँ ई दिवस मनाओल जाय लागल आ प्रत्येक वर्ष 5 जून के ई दिवस आब मनाओल जाइत अछि। श्रोता मित्र, जँ हमसब अपन आबयवला पीढ़ी के एक गोट सुरक्षित आ स्वस्थ धरती सौंपय चाहैत छी तऽ हमरा सबके सामूहिक रूप सँ ठोस डेग उठाबऽ पड़त। एहि लेल वनक कटाई रोकऽ पड़त आ अपना लग पास के बेसी से बेसी जगह पर गाछ वृक्ष लगाबऽ पड़त। ई गाछ वृक्ष निश्चित रूपेण प्रदूषण के कम करत, संगे सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग रोकऽ पड़त आ एहि के स्थान पर जूट वाला झोरा के उपयोग करऽ पड़त। बिजली आ पानिक उपयोग सीमित करऽ पड़त, सौर ऊर्जा के उपयोग बढ़ाबऽ पड़त, बरखा के पानि के संरक्षित कऽ उपयोग में लाबऽ पड़त। एहि पानि के उपयोग विविध रूप में यथा कृषि में सेहो हमसब कृषि कार्य में कऽ सकैत छी। गील आ सूखल कचरा अलग अलग कऽ ओकरा उचित निपटान सेहो करऽ पड़त। पर्यावरण संरक्षण मात्र सरकार नहि किंबा हमरा सभक सामूहिक जिम्मेदारी अछि। ताउ एहि जिम्मेदारी के हमसब बुझी आ अपना लेल संगे आबय वाला भविष्य लेल एक गोट नीक आ सुरक्षित पर्यावरण प्रदान करी। ई तऽ छल किछु अपना में श्रोता मित्र दुटप्पी। आउ आब हमसब कार्यक्रम दिस प्रवेश करैत छी आ सर्वप्रथम अपने सबके सुनबैत छी ई विद्यापति गीत। कलाकार छथि आशुतोष कुमार मिश्रा, सुनल जाय।

0: माधव कत तोर करब बराई, उपमा तोहर कहब ककरा सँ। सुमधुर सन एखन विद्यापति गीत सुनि रहल छलहुँ। कलाकार छलाह आशुतोष कुमार मिश्रा, हिनका धन्यवाद दियनि। कार्यक्रममे हिनका सँ आर गीत नादक हमसभ आनन्द लेब, मुदा एखन आउ सुनैत छी ई वार्ता। विषय अछि प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या। वार्ताकार छथि मिहिर कुमार झा। ताव एहि संदर्भमे सुनैत छी हिनक विचार।
1: हमरा लोकनिक आसपास जे परिवेश पाओल जाइत अछि ओ पर्यावरण कहैत अछि। हमरा लोकनिक जीवनक लेल एकर शुद्ध आ स्वच्छ भेनाइ बहुत आवश्यक अछि, मुदा एखुनका जीवनशैली आ लोकक रहन सहनक जे तरीका भऽ गेल छनि ताहिमे पर्यावरणके शुद्ध राखब बहुत कठिन भऽ गेल अछि। वर्तमानमे पर्यावरण कतेक तरहक प्रदूषण, जेना वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण आदि आदिसँ प्रदूषित भऽ रहल अछि। एकरा अन्तर्गत पर्यावरणमे अनेकानेक प्रकारक हानिकारक तत्वक प्रवेश भऽ जाइत अछि। एकर परिणाम तखन विशेष रूपसँ घातक भऽ जाइत अछि जखन ई पारिस्थितिकी तंत्र आ मानवक सङ्ग सङ्ग जैव मण्डलमे अवस्थित विभिन्न जीवक स्वास्थ्यकेँ सबसँ बेसी नुकसान पहुँचाबैत अछि। एहिसँ

हवा, पानि, माटि आ जीवित जीव सभ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ैत छैक। औद्योगिक अवशिष्ट, गाड़ीसँ निकलैवला धुआँ, जंगलक कमी आ प्लास्टिकक अत्यधिक उपयोग सभसँ एहि प्रकारक प्रदूषणक स्थिति उत्पन्न होइत अछि। ई प्रदूषण मानव स्वास्थ्य आ पारिस्थितिकी तंत्रक लेल एकटा गंभीर खतरा बनि गेल अछि। वर्तमानमे घरसँ बाहर धरि प्लास्टिकक उपयोग अत्यधिक बढ़ि गेल अछि। एखुनका समयमे पूरा विश्व एक गाम भऽ गेल अछि। सभ देशक सामान सभ देशमे उपलब्ध भऽ जाइत अछि। लगभग सभ सामानक पैकिंग प्लास्टिकक पैकेटमे होइत अछि। दुनियामे भारत सभसँ पैघ जनसंख्यावला देश हेबाक कारण सभसँ पैघ बाजार सेहो थिक। कंपनी सब अपन सामान बेचबाक लेल छोट छोट लोक लुभावन पैकेट बना ओकरा बाजारमे उपभोक्ताकेँ उपलब्ध करबैत अछि आ ओ सब पैकेट प्लास्टिकक रहैत अछि। पैकेजिंग एहन सुंदर रहै छै जे आवश्यकता नहियो रहैत लोक ओकरा खरीद लैत छथि। प्लास्टिक संग अधिकांश सिंगल यूज वाला रहैत अछि। ओकर उपयोग कऽ लोक ओकरा यत्र तत्र फेंक दैत छथि, जाहिसँ ओ भूमि, जल वा अन्यत्र कतौ जतौ खराब नहि होइत अछि ओतौ पहुँच जाइत अछि। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक उत्पाद थिक। नॉन बायोडिग्रेडेबल ओ भेल जे पंचतत्व क्षितिजल पावन गगन समीरा जे छै ताहिमे नहि मिलैवला पदार्थ थिक। एकरा नष्ट नहि कयल जा सकैत अछि। एहिसँ ई आओर बेसी प्रदूषणक कारण बढ़ैत अछि। एकरा जरेलासँ कार्बन डाइऑक्साइड एहन हानिकारक गैस उत्पन्न होइत अछि। ई जल प्रदूषण आ मृदा प्रदूषणक मुख्य कारण बनल जा रहल अछि। सभठाम एकर उपयोग भेलाक कारण एहिसँ निकलैवला कचरा पोखरि, धार आ धरती पर फेंका जाइत अछि, जाहिसँ ओ ओकरा प्रदूषित कऽ दैत अछि। संयोगसँ ओकरा यदि जमीन पर जरा देल जाइत अछि तऽ ओतऽ एकदम कारी कारी धुआँ उठैत अछि आ जरलाक बाद जमीन पर जतऽ जराओल जाइत अछि कारी कारी तैलीय पदार्थ जमा भऽ जाइत अछि आ कतेक दिन धरि ओतऽ कोनो घासो पात नहि उगैत अछि। पहिने गाम घरमे केराक पात पर भोज होइत छल। सभके नीक नीक पात ताकि कऽ देल जाइत छलनि। किछु भोज खेनिहार व्यक्ति अपनो शौकसँ पात लऽ कऽ अबैत छलाह, मुदा आब सब प्लास्टिकेक पात पर भोज करैत छथि। ओ आसानीसँ बाजारमे उपलब्ध भऽ जाइत अछि। पहिने लोक लोटा लऽ भोज खेबाक लेल जाइत छलाह, आब लोटा लऽ कऽ गेनाइ अपन हीनस्ताय बुझैत छथि। भोज केनहार सेहो प्लास्टिकक ग्लास बाँटि दैत छथिन। भोज समाप्त भेलापर ओ ऐंठका पात आ ग्लास उड़ियाइत रहैत अछि। ओकरा घर, ओकरा चारपर किछु दिनक बाद जे कतेक कने मने शेष रहि जाइत अछि ओकरा लोक जरा दैत छथि। ई सब प्लास्टिक प्रदूषणक सङ्ग सङ्ग अन्य प्रदूषणक लेल सेहो बहुत पैघ कारण बनैत अछि। पूर्वमे लोक झोरा लऽ बाजारसँ सामान आनऽ जाइत छलाह। दुकानदार कागजक ठोंगा या पैकेटमे सामान तौलि कऽ झोरामे दऽ दैत छलथि, मुदा आब एकाध किलोसँ लऽ 5-10 किलो धरि सामान लोक प्लास्टिकक थैला या पॉलीथीनमे लऽ अबैत छथि। दुकानदार सेहो पॉलीथीनेमे सामान तौलि कऽ दऽ दैत छनि। एकर दुष्परिणाम कखनो कखनो तऽ इहो देखल जाइत अछि जे पॉलीथीन हाथेमे रहि जाइत छनि आ सामान नीचा खसि पड़ैत अछि। तखन लोककेँ अफसोस करबाक अतिरिक्त कोनो उपाय नहि रहि जाइत छनि। पानि पीबाक लेल लोक बेसीसँ बेसी बोतलक उपयोग करैत छथि, जे स्वास्थ्यक लेल नीक बात नहि होइत अछि। प्लास्टिक एक एहन वस्तु थिक जे बाजारमे बहुत आसानीसँ भेट जाइत अछि आ सस्ता सेहो होइत अछि, मुदा आन वस्तु जकाँ नष्ट आसानीसँ नहि होइत अछि। वर्षक वर्ष जमीन पर रहलाक बादो ओहिनाक ओहिना रहैत अछि। शहरक अधिकांश नाली प्लास्टिक आ पॉलीथीनक अत्यधिक उपयोग आ ओकर एम्हर ओम्हर फेंक देलाक कारणे जाम भऽ जाइत अछि आ माछी मच्छरक सङ्ग आन कीड़ा मकोड़ा सभक उत्पत्तिक कारण बनैत अछि, जे अनेकानेक बीमारीक कारण सेहो बनैत अछि। सरकार द्वारा प्लास्टिक पर कते ठाम प्रतिबंध लगा देल जा गेल अछि, मुदा ओ पूर्ण कारगर नहि भेल आ होयत जावत धरि लोकक मन नहि निरुद्ध होयत। प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या थिक। एहिमे प्लास्टिकक अधिक उपयोगसँ धरती पर प्रदूषण बढ़ैत अछि, जे नहि केवल पर्यावरण बल्कि जीव मात्रक स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव करैत अछि। एहि कारणसँ हमरा लोकनिकेँ प्लास्टिकक उपयोगकेँ नियंत्रित करैत बहुत कम कऽ देबाक चाही आ ओकरा स्थानपर आन हानि रहित चीजक उपयोग करबाक चाही। हमरा लोकनिकेँ प्लास्टिकक झोड़ाक स्थानपर कपड़ाक झोड़ा लऽ कऽ बाजार जेबाक चाही, जाहिसँ पॉलीथीनक उपयोगमे कमी आयत। वर्तमानमे पर्यावरण कतेक तरहक प्रदूषण, जेना वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण

0: आदि आदि सँ प्रदूषित भऽ रहल अछि। एकरा अंतर्गत पर्यावरणमे अनेकानेक प्रकारक हानिकारक तत्वक प्रवेश भऽ जाइत अछि। एकर परिणाम तखन विशेष रूपसँ घातक भऽ जाइत अछि जखन ई पारिस्थितिकी तंत्र आ मानवक सङ्ग सङ्ग जैव मण्डलमे अवस्थित विभिन्न जीवक स्वास्थ्यकेँ सबसँ बेसी नुकसान पहुँचाबैत अछि। एहिसँ हवा, पानि, माटि आ जीवित जीव सभपर नकारात्मक प्रभाव पड़ैत छैक। औद्योगिक अवशिष्ट, गाड़ीसँ निकलैवला धुआँ, जंगलक कमी आ प्लास्टिकक अत्यधिक उपयोग सबसँ एहि प्रकारक प्रदूषणक स्थिति उत्पन्न होइत अछि। ई प्रदूषण मानव स्वास्थ्य आ पारिस्थितिकी तंत्रक लेल एकटा गंभीर खतरा बनि गेल अछि। स्वयं प्लास्टिक पूर्ण उपयोग करबाक चाही जामे धरि ओ उपयोग करबाक योग्य रहे। ओकर पुनर्निर्माण सेहो करक चाही जाहिसँ ओ पुनर्निर्माण आ पुनर्प्रयोग योग्य भऽ सकय। गीतामे भगवान कहने छथि, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयोर्भूतेर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। अर्थ ई जे जतय भगवान कृष्ण आ धनुर्धर अर्जुन रहित छथि ओतय विजय निश्चित रहित अछि। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयोर्भूतेर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। हमरा लोकनिकें अपन मनके भगवान श्री कृष्ण आ धनुर्धर अर्जुन बनाकर प्लास्टिकक उपयोगकें नियंत्रित करय पड़त आ समाजमे एक मुहिम चलेबाक चाही जाहिमे हमरा लोकनिकें अन्य लोकके सेहो प्लास्टिकक उपयोगसँ रोकबाक चाही जाहिसँ मनुष्य आ परिवेशमे रहयवला जीव मात्रक स्वास्थ्य समस्यासँ बहुत बेसी नियंत्रित रहत। हमसभ एहन उपाय करी ताहि लेल मनके नियंत्रित करब परम आवश्यक। एकर नियंत्रित उपयोगसँ हम प्लास्टिकक प्रदूषणक गंभीर समस्यासँ मुक्ति पाबि सकैत छी आ हमरा लोकनिक स्वस्थ जीवन जीवामे ई मदद करत।
1: प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर समस्या। एखन सुनि रहल छलहुँ ई वार्ता। वार्ताकार छलाह मिहिर कुमार झा, हिनका धन्यवाद दियनि। आउ श्रोता मित्र, एखन कार्यक्रममे हमसभ सुनैत छी ई झूमर आशुतोष कुमार मिश्रके स्वरमे। आनन्द लेल जाय।

सुमधुर सन झूमरसँ एखन आनन्दित भऽ रहल छलहुँ। देखू श्रोता मित्र, सभक माता पिताके मोन रहैत छनि जे हुनक बच्चा नीक, संस्कारी आ सफल बनय, आ एहि लेल ओ हुनक शिक्षापर पूरा जोर लगबैत छथि, ध्यान लगबैत छथि। मुदा नैनाके परवरिश मात्रे पढ़ाइ धरि सीमित नहि अछि, एकरा बच्चाके सम्पूर्ण व्यक्तित्वके रूपमे विकसित करबाक लेल हुनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आ सामाजिक विकासपर ध्यान देब सेहो बड्ड जरूरी अछि। एकटा सकारात्मक आ मित्रवत माहौल दऽ माता पिता अपना बच्चाके आत्मविश्वास, रचनात्मकता आ स्वतंत्रता बढ़ा सकैत छथि। ई हुनका जीवनके चुनौतीके सामना करऽ आ अपन पूर्ण क्षमताके उपयोग करबामे पूर्ण सक्षम बनाबैत अछि। जँ नैना किछु नीक करैत अछि तऽ ओकरा भरपूर तारीफ करी, एहिसँ हुनका प्रेरणा भेटत, बच्चाके भावना बुझी आ हुनका सङ्ग धैर्य सङ्ग प्रस्तुत होइ। सङ्गहि बच्चाके दोसरके सङ्ग मिलकऽ काज करब सिखाबी, एहिसँ ओ नीक मित्र बनता। तहिना बच्चा सबके पढ़ाइ लेल शांत आ नीक वातावरण दी, एहिसँ ओ ध्यान केंद्रित कऽ सकता आ हुनका पढ़ाइमे रुचित होयत। बच्चा सबके नव नव जगह पर घुमबाक अवसर दी, नव जगह पर लऽ जाय, नव लोकसँ भेंट कराबी, एहिसँ ओ दुनियाके बारेमे बेसीसँ बेसी जानि सकता। तहिना नैना सबके किताब पढ़बा लेल सेहो मोटिवेट करी। एखनुक समयमे जखन कि मोबाइलक उपयोग बड्ड बढ़ि गेल अछि, किताब दिस लऽ जायब बड्ड बेसी जरूरी अछि। तहिना बच्चा सबके छोट छोट फैसला स्वयंसँ लेबऽ दी, एहिसँ ओ आत्मविश्वाससँ भरपूर होयता। बच्चा सबके प्रकृति सङ्ग जोड़ब सेहो बड्ड जरूरी अछि। हुनका सबके गाछ वृक्ष लगाबऽ, पशु पक्षीके देखरेख करऽ आदि लेल सेहो प्रोत्साहित करी, एहिसँ हुनक रचनात्मकता बढ़त आ ओ शांत सेहो होयता। एहिके सङ्ग खेलकूद लेल सेहो बच्चा सबके पूरा समय दी, जाहिसँ ओ स्वस्थ सेहो रहता। तऽ ई तऽ छल किछु बच्चा सबके संस्कार सङ्गे शिक्षा आ हुनका स्वस्थ रहबा लेल छोट छोट डेग जँ उठायब तऽ निश्चित रूपेण आगू चलि कऽ नीक करता। एखन कार्यक्रमक समापनसँ पूर्व अपने सबके सुनबैत छी ई श्रृंगार गीत आशुतोष कुमार मिश्र केर स्वरमे।

एहि श्रृंगार गीतक संग आर गीतनाद सुनेबाक मन छल, मुदा आब समय हमरा सबके अनुमति नहि दऽ रहल अछि जे आर हमसब गीतनाद सुनी। तऽ पुनः अगिला कार्यक्रममे अपने सबसँ भेंट होयत, गीतनादक संग अपने सबक बीच उपस्थित होयब। आजुक भारतीय कार्यक्रमसँ प्रभातके विदा देल जाय। बेस तऽ, शुभ साँझ।

अभी आप सुन रहे थे मैथिल कार्यक्रम भारती, ये आकाशवाणी पटना है। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की।

अब से कुछ देर बाद आप सुन सकेंगे भोजपुरी बुलेटिन। चौपाल का वक्त होगा 6:30 पर। खेती गृहस्थी आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे। सात बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7:52 पर।

सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात्रि 8 बजे। 8:35 से आप सुन सकते हैं बातों बातों में समाचार क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में प्रसारित किए जाएंगे। 8:45 से प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

सौम्या मिश्रा से मैथिल लोकगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे से 10:30 पर प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।

श्रोताओं, ये संक्षिप्त जानकारी थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आगे आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: और इस गीत के बाद
2: ऑल इंडिया रेडियो।

that it has undergone 9 revisions. नमस्कार, ई आकाशवाणी पटना है। अब रउआ रजिया सुल्ताना से भोजपुरी में समाचार सुनी। मुजफ्फरपुर के एगो निजी अस्पताल में आज बिनुसहरे आग लगला से 5 मरीजन के मौत हो गई बा। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन बतौलन कि मृतकन के शव के पोस्टमार्टम कई के उनका परिजन के सौंप दिहल गई बा। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार परिजन सब के 4-4 लाख रुपया अनुग्रह राशि भी उपलब्ध करा दिहल गई बा। श्री सेन बतौलन कि मामला

जांच खातिर 5 सदस्य टीम के गठन कैल गेल बा। एह टीम के मामला के हर बिंदु के जांच के निर्देश दिहल गेल बा। उहे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एह घटना पर गहरा दुख जतौले बाड़े। उ कहले कि घटना सबके समुचित उपचार खातिर प्रशासन के निर्देश दिहल गेल बा। एही बीच स्वास्थ्य मंत्री निशांत भी एह हादसा पर गहरा दुख जतौले और कहले कि घटना के उच्च स्तरीय जांच कैल जाई और जे भी दोषी पावल जाई ओकरा पर कड़ा कार्रवाई होखी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बढ़त आबादी आ यातायात के जरूरत के देख के ग्रामीण सड़कन के चौड़ीकरण योजना के तेजी से पूरा करे के निर्देश दिहले बाणे। आज पटना में ग्रामीण विकास विभाग के समीक्षा बैठक के दौरान उ कहले कि बेहतर कनेक्टिविटी से गांव के अर्थव्यवस्था के नया रफ्तार मिली और रोजगार के नया अवसर पैदा होखी। उ कहले कि ग्रामीण सड़कन के नियमित निगरानी आ सुदृढ़ीकरण के जरूरत पर भी जोर देवे के बा। ओजे पथ निर्माण विभाग के बैठक में मुख्यमंत्री सब पुल के नियमित निरीक्षण आ सुरक्षा ऑडिट करावे के निर्देश देहले बाड़े। श्री चौधरी कहनी कि सड़क आ पुल निर्माण के गुणवत्ता से कोनो समझौता ना कैल जाई। मुख्यमंत्री मुंगेर बरियारपुर घोरघट सुल्तानगंज भागलपुर सबौर फोरलेन गंगा पथ परियोजना के PPP मॉडल पर करावे के कहले बाड़न। जदयू के वरिष्ठ नेता मंत्री श्रवण कुमार कहले बाड़े कि बिहार विधान परिषद चुनाव के लेके जल्दी सीट बंटवारा के अंतिम रूप दे दिहल जाई। आज पटना में पत्रकारन से बातचीत में वहां के कहनी कि सीटन के लेके एनडीए के वरिष्ठ नेता लोगन के बीच विचार विमर्श चल रहल बा। युवा रोजगार आ कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद कहले बाड़न कि रोजगार मेला के तहत मई महीना में 10,882 गो युवा लोगन के अलगे अलगे कंपनियन में नौकरी मिलल बा। पटना में पत्रकारन से बात करत उहां के बतौनी कि जुलाई महीना तक औरी 20,000 युवा लोगन के रोजगार देवे के लक्ष्य राखल गेल बा। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के ओर से दरभंगा के अलगे अलगे प्रखंडन में आज से रोजगार मेला के आयोजन कैल जा रहल बा। ई मेला 6 जून तक अलगे अलगे प्रखंडन में लगावल जाई। ओहिजे खगड़िया और मोतिहारी में आज एक दिवसीय रोजगार मेला के आयोजन कैल गेल बा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कहले बाड़न कि राज्य में पार्टी संगठन के जल्दी विस्तार कैल जाई। कटिहार के पत्रकारन से बातचीत में वहां के कहनी कि अब डिजिटल माध्यम से प्रखंड अध्यक्ष से लेके प्रदेश उपाध्यक्ष तक के चुनाव हुई। श्री राम बतौलन कि पार्टी के ओर से डिजिटल माध्यम से सृजन साथी नाम के अभियान शुरू कैल गेल बा, जेकरा में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहल बाड़न। दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरलम में दस्तक दे देले बा। मौसम विभाग के कहनाम बा कि मॉनसून के आगे बढ़े खातिर माहौल ठीक बा। एह बेर मॉनसून अपना तय समय से 3 दिन देरी से पहुंचल बा। ओहिजे बिहार में भीषण गर्मी के स्थिति बनल बा। कई जगहन के तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चल गेल बा। प्रदेश में पिछला 24 घंटा के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ ही बक्सर सबसे गर्म जगह पावल गई। मौसम पूर्वानुमान में कहल गेल बा कि अगला 3 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी हो सकेला। ओहिजे काल राज्य के उत्तर पूर्वी आ दक्षिण पूर्वी हिस्सा में कुछ जगहन पर हल्का बारिश हो सकेला। ए दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से धूल भरी आंधी चले के भी चेतावनी जारी कैल गेल बा। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।

0: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
1: मन्ना डे की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल ही तो है का ये गीत। साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

0: है कम और काटे हैं ज्यादा वादा तेरा वादा।
1: इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे संस्कृत समाचार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली नगरे वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महाभागया सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। वयोवृद्धः चलचित्र निर्माता पहलाज निहलानी अद्य दिवंगतः। अमेरिका देशस्य प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पम् ईरान देशं विरुध्य अग्रिम सैन्य कार्याचरणात् निरोद्धुं प्रस्तावं स्व्यकरोत्। केरल राज्ये

0: प्रणाम मीनू, कहू की हाल चाल।
1: हाल चाल तो खूब नीमन बा, पर अभी जे इ लहरल गर्मी पड़ रहल बा।

0: एकरा से तो मिजाज एकदम लहर जाता।
1: हाँ देखियो गर्मी में स्वास्थ्य के तो देखा
0: हाँ
1: जरूरी है छी, कोन मौसम कोनो रहे स्वस्थ रहे के चाहिए।
0: हाँ
1: खास के त्वचा के देखभाल झुलस जाए छे लोग
0: एकदम एकदम। मतलब रवा कहे चाहते नहीं कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ त्वचा ही सचमुच के सुंदरता के पहचान बाटे। जब स्वस्थ रहे
1: जेना जेना तापमान और नमी बढ़त है अकर असर त्वचा पर देखो लगत है।
0: हाँ
1: अत्यधिक तेल अचानक होबय वाली मुहासे अधिक समय धरि रौद में रह से होबय वाली रुखी त्वचा धरि गर्मी के मौसम त्वचा के लिए विशेष रूप से हानिकारक भ सकता।
0: हाँ केकरो घमौरी होता तो केकरो खुजली होता मुहासा होता आ तेज धूप में जेला से मतलब कि सनबर्न होता इस तरह के समस्या उत्पन्न हो रहल बाटे।
1: हाँ गर्मी में त्वचा के देखभाल एक सुनियोजित तरीका नहीं केवल त्वचा के गर्मी आ प्रदूषण से बचबत है
0: हाँ
1: बल्कि ओकर प्राकृतिक चमक के बना कर राख में मदद से हो करते हैं।
0: हाँ
1: चूँकि हरेक प्रकारक त्वचा मौसमी बदलाव पर अलग अलग प्रतिक्रिया दैत अछि अही कारण गर्मी में त्वचा के देखभाल के सरल मुद्रा प्रभावी तरीका के अपनायल जा सकत अछि।
0: हाँ
1: दैनिक दिनचर्या से लऽ कर उत्पादक चुनाव आ नवी बना कर राख के टिप्स धरि गर्मी भरि स्वस्थ आ संतुलित त्वचा के लिए आवश्यक सब चीज के कवर करते हैं।
0: हाँ
1: त्वचा के देखभाल सबक लेल एक जेहन नहीं होते हैं, सबके अलग
0: अलग अलग त्वचा बा।
1: हाँ
0: हर आदमी के अलग अलग त्वचा बा, केकरो ज़्यादा पसीना होता तो केकरो कम होता। आ देखिए कभी भी बाहर निकलतनी तो बाहर से घर आवतनी तो हाथ पैर धोई त्वचा के भी तनी साफ कर ली और
1: वो तो कम से कम
0: हाँ धोही के चाही। हाथ पैर जैसे लोग धोयला तो मुँह के भी धो ली मतलब चेहरा के धो ली हो सके तो बाहर से अला के बाद नहा भी सकीला थोड़ा देर रुक के ऐसा ना कि रौदा से आईनी आ तुरंत नहा लेनी तो वैसे तो शरद गर्म होए से तबीयत खराब हो जाए। तो अपन त्वचा के साफ सुथरा रखे खातिर बाहर से अला के बाद त्वचा के जरूर पानी ठंडा पानी से धोई। और देखिए गर्मी में मतलब कि खूब मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीएं, ये भी त्वचा खातिर बहुत जरूरी बा। 8 से 10 गिलास तो पानी पीते बानी, हो सके तो ओकरा से ज़्यादा भी पी सकीला।
1: हाँ।
0: नारियल पानी हो गए, नींबू के पानी हो गए, या फिर ताज़ा फल खाएं, ताज़ा फल के रस पी, ओकरो से त्वचा बहुत त्वचा में निखार आई। और तेज धूप में निकले से पहले एगो बहुत जरूरी चीज जैसे कि छाता, ये बहुत उपयोगी बा। छाता लेके निकली तो बहुत राहत लगेला। हो सके तो गमछा ले ली, टोपी पहन ली या दुपट्टा के उपयोग करी ओकरा से चेहरा के ढक ली। आ देखिए दुपट्टा भी जो ली ना उ सूती के रही तो ज़्यादा अच्छा रही। हाँ ऐसा ना कि सिल्कन ले लेनी जेकरा से और चेहरा पर मतलब कि पसीना अधिक हो जाए। और अभी खास करके देखा था नहीं कि सुबह 11 बजे से मतलब दोपहर शाम 4 बजे तक तनी बहुत कड़ा धूप रहता।
1: 8-9 बजे के बाद से एकदम रौद में 5 मिनट निठार भ सकै छी।
0: तो
1: गर्मी के दिन देखियो लंबा होइत अछि, रौद तेज होइत अछि, नमी अधिक होइत अछि आ पसीना भी अधिक अबैत अछि। ई सब चीज त्वचा के बनावट, तेल संतुलन आ समग्र स्वास्थ्य के सीधा प्रभावित करैत अछि। अपन त्वचा के देखभाल के दरमियान दिन में कम से कम 2 बेर सफाई करी, यानी पानी से जना अहा कहलो तो कम से कम साफ करे के चाहिए पानी से, ठंडा पानी से। त्वचा के साफ करे के बाद विटामिन सी सीरम व अय तरह के कोनो एंटीऑक्सीडेंट लगाबी ताकि त्वचा के पर्यावरणीय नुकसान से बचाओल जा सके। नमी युक्त मौसम में त्वचा के हाइड्रेटेड राखब आवश्यक अछि। अपन भोर के दिनचर्या नीक सनस्क्रीन के संगे करी जे यूवीए आ यूवीबी दुनू किरण से सुरक्षा प्रदान करैत अछि।
0: आ देखिए चंपा बहन हम तो ये कहम कि घरेलू उपाय भी अपना सकीला।
1: हाँ।
0: एकरा अपनावे खातिर जैसे कि गुलाब जल हो गए एकरा भी चेहरा पर लगा सकीला, एलोवेरा जेल हो गए या एलोवेरा अगर घर में लगेले बनी

0: काट के भी चेहरा पर लगाई, ओकरा से चेहरा बहुत ठंडा रही। और दही बेसन के लेप लगाई, हो सके तो चंदन के लकड़ी के रगड़ के ओकरा में हल्दी मिला के
1: और
0: ओकरो से लगाई।
1: एकटा और अहाँके हम उपाय बतबै छी
0: हाँ
1: जे
0: हाँ
1: करै छी उपयोग।
0: हाँ
1: चाउर के रात में अहाँ धो के फूलल राखि दियौ,
0: हाँ
1: बुझलहुँ, आ सवेरे ओकरा पीस लियौ, आ ओहिमे ओतबे दही, जतेक चाउर अइ ततेक
0: ओतने
1: दही,
0: दही।
1: और 2-3 चम्मच हल्दी मिला के फ्रेश पैक बना के अहाँ फ्रिज में राखि दियौ।
0: अच्छा
1: और 1-2 दिन बीच के या प्रतिदिन साबुन के जगह
0: हाँ,
1: नहाय से 10 मिनट पहले अहाँ
0: ओकरा
1: स्किन
0: लगा ली ही।
1: लगा
0: हम
1: दी।
0: वही सोचत रहे कि राउर चेहरा इतना चमकत कैसे बा।
1: हाँ, तो हम ओकर उपयोग करै
0: राउर
1: छी।
0: रउआ आपन ई मतलब कहल जाला ना कि
1: सीक्रेट
0: हाँ सीक्रेट बात जे रहे वो आज रउआ अभी हमरा से बता देनी, तो ई उपाय हम जरूर घर जाके करम।
1: हाँ,
0: तो
1: कोनो
0: बहुत ई नीमन और बहुत सरल उपाय बा, घर में तो
1: हाँ,
0: चावल रहबे करेला।
1: हम एके बेर में बना के एक डिब्बा राखि दै छियै, आ नहाय से बस 10-15 मिनट पहले लगा लेलहुँ, आ तकर नहा लेली पानी से।
0: देखिए, अपन निमन त्वचा रखे खातिर हरियर तरकारी भी खाई, मौसम के अनुसार फल सलाद ई सब खाई, रस वाला फल जैसे कि अभी तरबूज खरबूजा खीरा ककड़ी, एकरा में पानी भरल रहेला। आ खीरा ओकरा चाहिए तो चेहरा पर भी लगा
1: लगा
0: सकेला।
1: सका। हाँ,
0: आ देखिए, बात करे खातिर तो बहुत सारा बात बाटे, इतना चीज बाटे जेकरा लगा के खा के गर्मी से राहत मिल सकेला। लेकिन अभी अब समय हो गया कि हमने के कार्यक्रम में थोड़ा आगे बढ़ें, तो चलिए लोक भजन से शुरुआत करतनी, मोहिनी देवी से।

0: वाह, बहुत निमन ई लोक भजन गीत अभी हमने के सुननी।
1: हम्म।
0: अब चंपा बहन काहे ना एगो महत्वपूर्ण वार्ता हमने के सुन लेवल जाओ और श्रोता बंधु के भी सुनवा देवल जाओ। तो चलिए एगो वार्ता सुन लिहल जाए। तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, वार्ताकार बड़ी जूनी कुमारी।
1: तो सुनो ये वार्ता।
2: वर्तमान समय विज्ञान और तकनीक का युग है। जिस देश की तकनीकी शिक्षा जितनी उन्नत होती है, वह देश उतना ही तेजी से विकास करता है। तकनीकी शिक्षा परंपरागत शिक्षा की तुलना में अधिक व्यवहारिक, कौशल आधारित और उद्योग उन्मुख होती है। यह शिक्षा व्यक्ति को रोजगार पाने या स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम बनाती है। भारत जैसे विकासशील देश के तकनीकी शिक्षा का विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तकनीकी शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यार्थियों को किसी विशेष तकनीकी क्षेत्र में व्यावसायिक दक्षता और प्रायोगिक ज्ञान प्रदान करती है। इसके अंतर्गत विभिन्न ट्रेड्स जैसे कि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, सिविल, आईटी, कृषि यंत्र, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। तकनीकी शिक्षा का आशय शिक्षा से है जो छात्रों को किसी विशेष कार्य या कौशल में दक्ष बनाती है। यह परंपरागत पुस्तकीय ज्ञान से हटकर व्यवहारिक और उद्योग आधारित ज्ञान देता है। इस प्रकार की शिक्षा उन्हें नौकरी के लिए तैयार करती है या स्वयं व्यवसाय शुरू करने का अवसर देती है। भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थान और योजनाएं कार्यरत हैं। कुछ प्रमुख संस्थान और योजनाएं जैसे कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद देश में तकनीकी संस्थानों को मान्यता और दिशा निर्देश देने वाली सर्वोच्च संस्थान है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम युवाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए कार्यरत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को अल्पकालीन तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार योग बनाता है। उद्योग से जुड़ी शिक्षा कंपनियों को और प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से छात्रों को इंटर्नशिप और ऑन जॉब ट्रेनिंग देता है। इसमें और अधिक ज्ञान देता है जैसे कि कंप्यूटर साइंस, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेड्स, सूचना प्रौद्योगिकी, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी वेलनेस एंड हेयर टेक्नोलॉजी, मोबाइल रिपेयरिंग, खाद्य प्रसरण और पाक कला, स्वास्थ्य तकनीकी और नर्सिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिस्ट जैसे आधुनिक सम्मिलित। 2024 तक भारत में लगभग 10,000 से अधिक पॉलिटेक्निक कॉलेज और 15,000 से अधिक आईटी संस्थान कार्यरत हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ऑनलाइन तकनीकी शिक्षा भी सुलभ होती जा रही है। तकनीकी शिक्षा से अनेकों अनेक लाभ हैं, जैसे इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती हैं, छात्र कौशल आधारित नौकरियों के लिए तैयार होते हैं, स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है, प्रशिक्षण प्राप्त छात्र अपना स्टार्टअप या छोटा व्यवसाय शुरू करके काम कर सकते हैं, देश की औद्योगिक प्रगति में योगदान देता है। तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संस्थान उद्योगों की रीढ़ होता है। कम समय और कम खर्च में यह शिक्षा तकनीकी डिप्लोमा या आईटी कोर्सेज पूरी हो जाती हैं।

गांव और पिछड़े इलाकों के युवाओं को अवसर सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ता है। तकनीकी शिक्षा केवल रोजगार पाने का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय सशक्तिकरण की कुंजी है। यह युवा को सिर्फ नौकरी की तलाश करने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाती है। भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो तकनीकी शिक्षा को और अधिक सशक्त, सुलभ और समावेशी बनाना होगा। तकनीकी शिक्षा महिलाओं के लिए रोजगार का एक बहुत सुंदर अवसर है। आज के आधुनिक और प्रगतिशील समाज में महिला का केवल घर की सीमाओं तक सीमित रहना उसकी क्षमताओं और प्रतिभा का अपमान है। जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है वैसे वैसे यह स्पष्ट होते जा रहा है कि महिलाओं के लिए रोजगार न केवल व्यक्तिगत जरूरत है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय विकास की अनिवार्यता भी है। प्राचीन समय से ही महिलाएं समाज की नींव को मजबूत करती आ रही हैं, चाहे वह घर संभालने का काम हो या युद्ध भूमि में वीरांगना बनकर राष्ट्र की रक्षा करना। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब विज्ञान, तकनीकी, सूचना और शिक्षा का युग है, महिलाओं का रोजगार में सक्रिय भागीदारी और भी आवश्यक हो जाती है। रोजगार से महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं। उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इससे उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ता है। एक आत्मनिर्भर महिला न केवल अपने फैसले खुद ले सकती है बल्कि मुश्किल समय में अपने परिवार का सहारा भी बन सकती है। जब किसी महिला का पति या पिता किसी कारणवश कमाई करने में असमर्थ हो जाता है तब वह महिला परिवार की रीढ़ बन जाती है और ऐसी अनगिनत उदाहरणें हमारे चारों ओर हैं। महिला यदि नौकरी करती है या कोई व्यवसाय करती है तो परिवार की दोहरी आमदनी होती है जिससे बच्चों की अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन स्तर का उत्थान संभव हो पाता है। महिलाओं के कमाने से घर व घर के खर्चों में भागीदारी होती है, साथ ही बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। रोजगारशील महिला समाज में एक सशक्त पहचान बनाती हैं। वह केवल किसी की पत्नी, बेटी या मां नहीं रहती बल्कि एक शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अधिकारी या उद्यमी बनकर समाज में अलग पहचान बनाती हैं। जब महिलाएं कार्य क्षेत्र में उतरती हैं तो लोगों की मानसिकता भी बदलती है और उन्हें पुरुषों के बराबर सम्मान मिलने लगता है। जब महिलाएं कमाती हैं तो वह अपना जीवन अपने तरीके से जीने की आजादी महसूस करती हैं। वे अपने बच्चों की शिक्षा, घर की व्यवस्था एवं स्वयं के स्वास्थ्य और भविष्य की योजनाओं के बारे में निर्णय लेने में सक्षम हो जाती हैं। निर्णय लेने का अधिकार उन्हें सशक्त बनाता है और उन्हें परिवार व समाज में एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका मिलाता है। रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी समाज को यह संदेश देती है कि महिला और पुरुष समान हैं। इससे लैंगिक भेदभाव को कम करने में मदद मिलती है। जब महिलाएं ऑफिस, फैक्ट्री, स्कूल या किसी व्यवसाय में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं, तो यह समाज को सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आता है। एक रोजगारशील महिला अपने बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत होती हैं। वह बेटियों को बताती हैं कि वे भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं और बेटों को सिखाती हैं कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। इस प्रकार वह अपने बच्चों को संतुलित सोच, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करती हैं। रोजगार करने वाली महिलाएं देश की संपत्ति निर्माण में भी भागीदारी निभाती हैं। भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था जहां आधी संख्या महिलाएं हैं वहां पूर्णतः विकसित नहीं हो सकता जब तक कि महिलाएं कार्यबल में सक्रिय न हो। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार यदि महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए तो भारत की जीडीपी 27% तक वृद्धि हो सकती है। महिलाओं का रोजगार करना परिवार के लिए सुरक्षा कवच की तरह होता है। महामारी, प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य आपदा स्थिति में अगर परिवार का कोई सदस्य काम करने में असमर्थ होता है तो महिला की कमाई परिवार को सहारा देती है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो वो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और सामाजिक शोषण का डटकर सामना कर सकती हैं। रोजगार उन्हें मजबूरी नहीं बल्कि विकल्प प्रदान करता है कि वे अपने लिए सही निर्णय और अत्याचारों का विरोध कर सकें। महिलाओं के लिए रोजगार एक केवल विकल्प नहीं बल्कि उनका अधिकार है। यह उन्हें सम्मान, आत्मबल, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। एक रोजगारशील महिला न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाती है बल्कि समाज और देश के विकास में भी सक्रिय भागीदारी निभाती है। पिछले कुछ वर्षों से देखा गया है कि महिलाएं तकनीकी शिक्षा की ओर बड़ी संख्या में आकर्षित हो रही हैं। गांव और कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक महिलाएं अब IIT संस्थानों, डिजिटल ट्रेनिंग हब्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तकनीकी प्रशिक्षण ले रही हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं भी इसी प्रकार इशारा करती हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिसे महिलाओं को मुफ्त तकनीकी प्रशिक्षण मिलता है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिससे महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, जिनसे कि महिलाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। उद्योग साझेदारी कार्यक्रम में महिलाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ इंटर्नशिप और रोजगार भी मिलता है। हेनरी क्लिंटन के अनुसार महिलाएं दुनिया की में प्रतिभा का सबसे बड़ा भंडार है, जिससे अभी तक पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया जा सका है। वैदिक साहित्य में भी महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं में आत्मशक्ति की भावना स्वयं के विकल्पों को निर्धारित करता है, स्वयं और दूसरों के लिए सामाजिक परिवर्तन को भी प्रभावित करने में उनके अधिकार एवं उनमें समानता और उपलब्धियों के प्रति जागरूकता लाता है। महिला सशक्तिकरण एक मानसिक अवधारणा है। शिक्षा इस अवधारणा का विकास और प्रोत्साहन करती है। महिला सशक्तिकरण किसी व्यक्तिगत उन्नति की बात नहीं, वरन एक शांतिपूर्ण, उन्नत, विकसित एवं खुशहाल समाज, देश और विश्व के निर्माण के लिए आवश्यक शर्त है।

0: है। शिक्षा इस अवधारणा का विकास और प्रोत्साहन करती है। महिला सशक्तिकरण किसी व्यक्तिगत उन्नति की बात नहीं, वरन एक शांतिपूर्ण, उन्नत, विकसित एवं खुशहाल समाज, देश और विश्व के निर्माण के लिए आवश्यक शर्त है। महिला शिक्षा और सशक्तिपूर्ण संपूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वे देश और राष्ट्र जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, वे कभी महान नहीं बने और न ही भविष्य में कभी हो पाएंगे। यहाँ महिलाओं का सम्मान सशक्तिकरण से सीधे सीधे संबंधित है। महिला सशक्तिकरण के लिए चल रही बहुयामी प्रक्रिया के कारण जीवन, समाज, राजनीति, कॉरपोरेट जगत, प्रशासन, सभी संस्थाओं पर महिलाओं की भूमिका में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आर्थिक विकास विशेष रूप से महिला नागरिकों के बीच शिक्षा द्वारा ही पूरा हो सकता है। कोई भी देश कितना भी समृद्ध एवं विशाल क्यों ना हो, प्रभावी शिक्षा के बिना नागरिकों का कोई लक्ष्य या नया सपना पूरा नहीं हो सकता है। श्रोताओं, तकनीकी शिक्षा ने महिला रोजगार में नई संभावनाओं का द्वार खोला है। आज महिलाएं केवल शिक्षक या नर्स नहीं बल्कि डिजिटल मार्केटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐप डेवलपर, मशीन ऑपरेटर, फार्मा असिस्टेंट, रसोई, वैज्ञानिक, इकोटेक उद्यमी भी बन रही हैं। तकनीकी शिक्षा से मिलने वाले अनेक लाभ हैं, जैसे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, आर्थिक मजबूती से घर की आमदनी में योगदान कर रही हैं, लैंगिक समानता पुरुषों के बराबर अवसर प्रदान करती है, सामाजिक सम्मान, समाज में उनकी भूमिका और भागीदारी बढ़ती है। स्वरोजगार के अवसर से महिलाएं स्टार्टअप की शुरुआत भी कर रही हैं। जहां एक ओर सकारात्मक पहलू है, वहीं कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं, जैसे कि पारिवारिक या सामाजिक प्रतिबंध। प्रशिक्षण केंद्रों में भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कमी है, जिसको कि दूर करने की आवश्यकता है। डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट की पहुंच या तकनीकी उपकरणों की कमी भी है। जागरूकता की कमी महिलाओं को योजनाओं की जानकारी नहीं होने देती है। इन चुनौतियों का समाधान है, बहुत आसान है। महिलाएं केंद्रित शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए। अब मोबाइल आधारित तकनीकी शिक्षा एवं एप्स महिलाओं को जोड़ा जाए। स्थानीय समुदाय में प्रेरणादायी महिलाएं रोल मॉडल की भूमिका निभाएं। पंचायत स्तर पर डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जाए। पारिवारिक और समाज में सोच बदलने की भी अति आवश्यकता है। श्रोताओं, यह स्पष्ट है कि तकनीकी शिक्षा आज की महिलाओं को केवल रोजगार ही नहीं देती, बल्कि आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और समाज में नेतृत्व की भूमिका भी प्रदान करती है। शिक्षा संभावनाओं का द्वार खोलती है। अब 21वीं सदी में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे रह रही हैं, तो उन्हें सशक्त बनना वास्तव में आवश्यक है। भारत एक महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, इसलिए महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में महिला शिक्षा के महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते। शिक्षा जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण के द्वार खोलने की मुख्य कुंजी है। शिक्षा आज के तकनीकी युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनने में मदद कर परिवार की, समाज की और देश के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। महिलाओं को शिक्षित व सकारात्मक बनाने वाला समाज ही उन्नत समाज बन सकता है। प्रजनन दर, मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी, लैंगिक समानता, समान अधिकार और अवसर कम, घरेलू हिंसा, परिवार में महिलाओं की अधिक सक्रिय भूमिका आदि प्रमुख सामाजिक विकास के बिंदु हैं। एक शिक्षित पिता की तुलना में एक शिक्षित माँ से जुड़े बच्चों की न केवल जीवित रहने की उच्च दर अधिक रहती है, बल्कि उन्हें बेहतर पोषण भी मिलता है। शैक्षिक सुविधाओं की बेहतर पहुँच और स्थिति बाल श्रम से जुड़े गरीब के दुष्कर्म को तोड़ने में मदद करती है। शिक्षा नारी को अनेक बंधनों से मुक्त कर उनके लिए नई प्रबद्ध दुनिया के द्वार खोलती है। शिक्षा सामाजिक बुराइयों, दहेज, यौन उत्पीड़न, कुप्रथाओं, पिता सत्तात्मक व्यवस्था को समझने में, उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने में सक्षम बनाती है। हमें यह समझना होगा कि एक शिक्षित और तकनीकी रूप से दक्ष महिला सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए, विकास के लिए एक मजबूत स्तंभ है। तकनीकी प्रगति के इस युग में शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है और इसी परिवर्तन के केंद्र में तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा, जो न केवल युवाओं को बल्कि विशेष रूप से महिलाओं को नए अवसर प्रदान कर रही है। यह शिक्षा उन्हें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त बना रही है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हमें अपने घर, समाज, गांव की बेटियों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यदि उन्हें मौका दिया जाए तो वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं, बल्कि कई बार आगे साबित होती हैं। अफ्रीकी विद्वान डॉक्टर जेम्स एम्यूल ने कहा है, अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है और रोजगारशील होती है तो पूरा परिवार और समाज प्रगति करता है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो समाज आगे बढ़ता है।
1: हाँ, तभी जूनी कुमारी कितना फरिया फरिया के बतेली।

0: की तकनीकी शिक्षा अगर महिला के मिल जाए तो कितना तरह के रोजगार मिटा सकेला।
1: तखने महिला रोजगार ही तो है, तखने देश तरक्की करत, समाज तरक्की है,
0: हाँ
1: देश
0: हाँ
1: में खुशहाली है।
0: हाँ
1: तो इतने निक वार्ता सुनेबाक लेल जूनी कुमारी के बहुत बहुत धन्यवाद। आब एकटा
0: हमरा मन करता
1: झूमर,
0: खूब झूमे के,
1: हाँ
0: आ रउआ भी मन करता,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: चलिए एगो झूमर सुन लेवल जाओ मोहनी देवी से।

0: वाह, बहुत निमन ई झूमर रहे। हमार
1: हाँ
0: बलमो रात काहे न अइल, मोहिनी देवी से हमनी के सुनत रही। और
1: एहि संगे आंगन के समय संपन्न भ गेल अछि। कनि कालक बाद हम सब खेती के बात करब।
2: बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हाँ तो चंपा बहन, खेती गृहस्थी में देखी हमनी के तो देश कृषि प्रधान देश बाटे, जेकरा में 70% लोग खेती बाड़ी करके अपन जीवन जी रहल बाड़े। और आज किसान भाई अपन आमदनी के खूबे बढ़ावे खातिर ढेर मनी प्रकार के ऐसन फसल के लगा रहल बाड़न जेकरा से कम लागत ढेर मनी मुनाफा हो रहल बा। तो
1: हाँ ठीक है,
0: आज
1: अहाँ कहल गेल।
0: हाँ
1: देखियौ, पारंपरिक फसल तो जरूरी छै है,
0: हाँ
1: लेकिन ओकरा अतिरिक्तो वा ओकरा संगे
0: हाँ
1: बहुत से एहन फसल है जे कके ओकर बाजार में मांग भी बहुत है,
0: हाँ
1: आ ओहिसँ किसान भाई के आमदनी भी बढ़ सकैत अछि,
0: हाँ
1: बढ़ैत अछि। हम
0: तो
1: बात कर रहल छी मशरूम के।
0: हाँ मशरूम के
1: भारत में उगे वाला मशरूम के दू सर्वाधिक प्रजाति अछि, व्हाइट बटन आ मशरूम आ आयस्टर मशरूम। अपना देश में होबे वाला व्हाइट बटन मशरूम के ज्यादातर उत्पादन मौसमी अछि,
0: हाँ
1: अकर खेती परंपरागत तरीका से कयल जाइत अछि।
0: हाँ हाँ
1: सामान्यतः अपाश्चरीकृत कूड़ा, वो जो खाद कहै छी वर्मी कंपोस्ट,
0: हाँ हाँ
1: खाद के प्रयोग कयल जाइत अछि, अही लऽ कऽ एकर उपज बहुत कम होइत अछि। पछिला किछु वर्ष में बेहतर कृषि विज्ञानक शुरुआत के परिणाम स्वरूप मशरूम के उपज में वृद्धि भेल अछि। आम व्हाइट बटन मशरूमक खेती के लेल तकनीक कौशल के आवश्यकता अछि।
0: आ देखिए, मशरूम तो एगो पौष्टिक और स्वादिष्ट और लाभदायक फसल है।
1: अब कतेक मने महंग छै, एकर मांग
0: हाँ
1: कतेक
0: मांग
1: छै
0: भी
1: बहुत,
0: बहुत बा।
1: आ कते व्यंजन एकर बनाओल जाइए, सब्जी से लऽ कऽ एकर सूप
0: अब
1: बनाओ,
0: मशरूम
1: अचार बनाओ, मने बहुत रंग के एकर व्यंजन बनाओल जाइत अछि,
0: हाँ हाँ
1: आ पौष्टिकता तो इनमें
0: एकरा में
1: भरपूर अछि।
0: भरपूर बा। आ
1: हाँ
0: देखिए, मशरूम के सफेद सोना भी कहल जाला। आ जैसन कि रवा कहनी कि आयस्टर माने कि ढीगरी मशरूम के, ये बहुते आसानी से उग जाला। ये मशरूम के उगावे खातिर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस निमन रहला। ये बिहार के अलावा भी और भी राज्य में बहुत लोकप्रिय बा। और एगो बा मिल्की मशरूम। ये
1: हाँ
0: मशरूम गर्म और आर्द्र क्षेत्र के खातिर खूबे उपयुक्त बाटे। एकरा उगावे खातिर 25 से 30 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त मानल गेल बा। और बात करी पैडी स्ट्रॉ मशरूम के, तो ये धान के पुआल पे उगावल जाला। ये गर्मी के मौसम में उत्पादन खूबे देवेला।
1: हाँ
0: आ देखिए, मशरूम के खेती खातिर धान या गेहूं के सूखल पुआल चाहिए, मशरूम बीज चाहिए, पॉलीथीन बैग, साफ पानी, स्प्रे
1: हम
0: मशीन।
1: तो अपना घर के पाछू में गहूम के एकटा अथी सब बना लेने छी मरैया जका,
0: हाँ
1: आ
0: हाँ
1: गहूम के भूसा पर ओकरा हम उत्पादन करै
0: हाँ
1: छी, अपना खाय लायक भ जाइए।
0: एकदम एकदम कम जगह में भी हो जाला, कम
1: हाँ
0: लागत में अधिक मुनाफा देवे वाला। ई ऐसन चीज बा जेकरा करके किसान भाइयन फायदा ले सकेलन। अब मशरूम के खेती आधुनिक कृषि के एगो लाभदायक व्यवसाय भी है, खासकर बिहार जैसन राज्य में। आयस्टर मशरूम के खेती कम लागत में निमन आय के स्रोत बन जाएला। अगर किसान वैज्ञानिक तरीका से तापमान, नमी और साफ सफाई पर ध्यान रखस, तो कमे बेरा में निमन उत्पादन और निमन मुनाफा कमा सकेलन। और ओकरा संगे संगे आज काहे ना बात कैल जाओ कीटनाशक के रख रखाव।
1: देखियौ, कीटनाशक के हम कहब चाहब कि कीटनाशक जतबे उपयोगी अछि तऽ ई खतरनाको अछि।
0: हाँ
1: जँ एकरा सही तरीका से रख रखाव या खेत में नहि पटायल गेल तऽ ई घातक सिद्ध भ सकैए।
0: हाँ हाँ
1: कीटनाशक के खरीदमे हमेशा पंजीकृत विक्रेता से

0: खरीदी,
1: हाँ
0: जो लाइसेंस ही छे, सब
1: हाँ
0: सोने खरीदी, डुप्लीकेट दो
1: कि
0: दो
1: ऐसा
0: चार
1: ना
0: के।
1: पैसा बचावे खातिर डुप्लीकेट ले लेनी, ऐसा ना
0: हाँ,
1: होए के चाहिए।
0: विक्रेता द्वारा कीटनाशक के विक्रय 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चा, संदिग्ध व्यक्ति या मानसिक रूप से विचलित व्यक्ति के नहीं करे के चाहिए।
1: हाँ
0: कीटनाशक के मूल पैकिंग में ही भंडारित रहित अछि। विषैले कीटनाशक पदार्थों के बच्चा एवं पालतू पशुओं के पहुँच से दूर राखी। कीटनाशक के प्रयोग से पूर्व प्रयोग विधि के जानकारी अवश्य प्राप्त कर
1: हाँ
0: ली।
1: मतलब ओकर जानकारी रही तबे ओकर मतलब पैकिंग करे के कैसे करना बा का करना बा ओकरा करी।
0: हाँ, खाली पेट कीटनाशक के छिड़काव नहीं करी,
1: एकदम ना एकदम ना, एकरा पर बहुत
0: ऐसा
1: ध्यान
0: बात
1: देना
0: के
1: बा।
0: ध्यान
1: हाँ
0: जरूरी
1: बहुत
0: है।
1: देना जरूरी बा। और अब का विचार बा, हमरा तो मन करता है काहे ना एगो फिर से मोहिनी
0: हाँ,
1: देवी से
0: गीत
1: गीत सुन लही। तो चलिए फिर से सुनल जाओ मोहिनी देवी से ये गीत।

0: हाँ, तो अभी हमने के सुनत रही मोहिनी देवी से ये निर्गुण गीत। समय रही तो आगे भी और इंकरा से गीत सुने के। देखिए, खेती गृहस्थी में या कृषि कार्य में कृषि यंत्र के बहुत उपयोग होखेला, तो काहे ना एकरे से जुड़ल एगो वार्ता हमने के सुन लेवल जाओ। वार्ता के विषय बा विभिन्न कृषि यंत्रों की देखभाल। वार्ताकार वर्णन डॉक्टर मृणाल वर्मा।
1: कृषि देश और राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि यंत्र कृषि उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इनके उपयोग से कम समय, कम लागत एवं कम श्रम में अधिक उत्पादन प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ मानव श्रम पर निर्भरता कम हो जाती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इन यंत्रों की आवश्यकता खेत की तैयारी से अनाज प्रसंस्करण एवं प्रसंस्कृत उत्पाद को बाजारों तक पहुंचाने तक प्रत्येक कार्य में होता है। किसी भी यंत्र का प्रयोग करने से पहले उसके प्रचालन एवं रख रखाव की पूर्ण जानकारी आवश्यक होनी चाहिए, ताकि सफलतापूर्वक यंत्रों का प्रयोग किया जा सके और परेशानियों से बचा जा सके। कृषि का कार्य मुख्य रूप से हस्तचलित यंत्रों एवं पावर चलित यंत्रों से होता है। आधुनिक कृषि में उन्नत यंत्र एवं मशीनें जैसे ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, पटलर, लेजर लेवलर एवं कई तरह के यंत्र हैं, जो कि स्वचालित हैं अथवा ट्रैक्टर चलित हैं, और ये काफ़ी महंगे आते हैं। इन यंत्रों का सही रख रखाव तो किसान कर लेते हैं, पर छोटे छोटे कल्प पुर्जों की उपलब्धता नहीं रहने के कारण मरम्मती का कार्य नहीं हो पाता है, और इनको मरम्मत कराने के लिए समय समय पर स्थानीय बाजारों के कारीगरों के पास जाना पड़ता है। इसलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि किसान उपलब्ध कृषि यंत्रों एवं मशीनों को ठीक ढंग से रख रखाव एवं प्रयोग करें। तो सबसे पहले हस्तचलित यंत्रों का के रख रखाव के बारे में बिंदुवार हम जानकारी देना चाहेंगे कि हस्तचलित कृषि यंत्रों को बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। कृषि कार्य करने के पश्चात हस्तचलित यंत्रों को साफ कर सूखे स्थानों पर रखना चाहिए। प्लास्टिक वाले कल पुर्जों को छांव में रखना चाहिए, चूंकि धूप में यह बहुत जल्दी खराब हो जाता है। उपयोग उपरांत यंत्र के लोहे वाले भाग में ग्रीस अथवा तेल लगाकर रखना चाहिए, ताकि उन पर जंग ना लगे। काम समाप्ति के करने के तुरंत बाद छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर साफ करना चाहिए, ताकि उसके अंदर में जितने भी रसायन हैं वो साफ हो जाएं। जालियों और अलग अलग होने वाले पुर्जों को अलग अलग करके साफ करने से पुनः लगा देना चाहिए। छिड़काव यंत्र की टंकी में धूल या तलछट नहीं जाने देना चाहिए, दवा को हमेशा छान कर ही डालना चाहिए। इस तरह से अगर हम हस्तचलित यंत्रों का रख रखाव करेंगे तो हमारे यंत्र उपयोगी रहेंगे और कई वर्षों तक अच्छे रूप में कार्य करेंगे। पावर चलित यंत्रों के रख रखाव में आमतौर पर उपयोग के उपरांत मशीनों को अक्सर बाहर छोड़ दिया जाता है, जिससे नट बोल्ट पर जंग, मिट्टी और बारिश पड़ने पर मशीनों के हिस्से खराब होने लगते हैं एवं जंग लगने की आशंका बनी रहती है। प्रयास यह रहना चाहिए कि कार्य समाप्ति के उपरांत इन यंत्रों को अच्छी तरह एक बार साफ पानी से धोकर धूप में थोड़ी देर रखकर शेड में रखा जाए। संभव हो तो मशीन को ऐसे जगह पर रखें जहां जंग लगने की न्यूनतम संभावना हो। इससे यंत्र अथवा मशीन लंबे समय तक बिना किसी समस्या के कार्य करते रहेंगे। मशीनों को रखते समय टूट फूट वाला हिस्सा को आवश्यकता अनुसार बदल दें, साथ ही साथ ढीले नट बोल्ट, चैन इत्यादि को कस दें। कृषि यंत्रों को प्रयोग करने के बाद अच्छी तरह धो देना चाहिए, ताकि मिट्टी वगैरह हट जाए। कृषि यंत्र के ऐसे भाग जो उर्वरक एवं मिट्टी के संपर्क में आते हों, उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। कृषि यंत्रों में रबर के पहिए लगे होते हैं, तो उनका दबाव चेक करना जरूरी है, और उसे अनुमोदित दबाव पर ही जब उसे रखा जाए तब रखना चाहिए। जिन कृषि यंत्रों पर पेंट इत्यादि उतर गया है, तो उन पेंट या ग्रीस करने से यंत्र को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

0: पाइपों या तारों को लपेट कर अथवा बांध कर रखा जाए, जिससे कटने से उसे बचाया जा सके। चारा काटने वाली मशीन के पहिए में स्टैंड के साथ ताला लगा कर रखें, इससे दुर्घटना नहीं होगी। अगर किसान भाई इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो कृषि यंत्रों की देखभाल एवं रखरखाव निश्चित रूप से अच्छा होगा और वो कई वर्षों तक अच्छे रूप से कार्य कर सकते हैं। बुआई यंत्र के रखरखाव में जीरो टिल ड्रिल एक बुआई यंत्र है और इसके मरम्मत आदि की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। फिर भी यदि कोई पुर्जा घिस या टूट जाए तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए, नहीं तो उसके कारण दूसरे पुर्जे को भी नुकसान हो जाता है। प्रतिदिन कार्य के उपरांत खाद अथवा बीज के बक्से से बीज को निकाल देना चाहिए और यदि मशीन लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जाना है तो उसे अच्छी तरह से धोकर सुखाकर साफ करके तथा तेल लगाकर छाये में रख देना चाहिए, जिससे उस पर धूप और वर्षा का प्रभाव न पड़े। प्रत्येक घूमने वाले भाग पर समय समय पर तेल अथवा ग्रीस लगाते रहना चाहिए। फसल कटाई यंत्रों की सुरक्षा के हेतु किसी भी यंत्र को उपयोग में लेने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि उनके कल पुर्जों के सभी जोड़ ठीक से काम कर रहा हो। अगर आपस में रगड़ कर चलने वाले सभी पुर्जे को निर्धारित मात्रा में तेल अथवा ग्रीस दिया जाना चाहिए। यंत्रों में लगने वाले पट्टे, बेल्ट, कमानी इत्यादि के कसाव की जांच हर रोज करनी चाहिए एवं आवश्यक समायोजन कर लेना चाहिए और यदि समायोजन की सीमा समाप्त हो गई हो तो उस कल अथवा पुर्जे को बदल देना चाहिए। कटर बार कार्य के दौरान अगर घिस या मुड़ जाता है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। रबर बेल्ट की मजबूती की जांच कर आवश्यकता अनुसार बदल देना चाहिए। ईंधन में ईंधन एवं मोबिल की उचित मात्रा हमेशा बरकरार रखनी चाहिए और अगर इस मशीन को बहुत समय तक कार्य नहीं करना हो तो इसे किसी छायादार स्थान पर रखना चाहिए। थ्रेसिंग मशीन के रखरखाव, जो कि आजकल किसान भाई मुख्य रूप से थ्रेसिंग मशीन से थ्रेसिंग का कार्य कर उसे यूं ही रख देते हैं, तो इसके रखरखाव के लिए जो सावधानियां हैं उसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। मशीन के सभी पुर्जों का भली भांति निरीक्षण कर लेना चाहिए और उसकी सफाई कर लेनी चाहिए। जितने भी ढीले नट और बोल्ट हैं उनको ठीक से कस देना चाहिए और अच्छी किस्म के ग्रीज से बियरिंग कप को भर देना चाहिए और अगर कोई पार्ट टूटा हो तो उसे बदल देना चाहिए। एक बार थ्रेसर खाली चलाकर ड्रम की चाल की दिशा, मशीन की आवाज तथा पट्टी की जांच करना चाहिए। अगर कोई बाधा हो तो उसे दूर कर लेना चाहिए। फसल की स्थिति देख लेना चाहिए और ध्यान रहे कि सूखी हुई फसल थ्रेसिंग में उपयोग लाना चाहिए। अगर नमी वाली फसल रहता है तो उसमें थ्रेसर में अधिक शक्ति लगती है और गहाई भी अच्छे ढंग से नहीं होती है। फसल थ्रेसर के पास अवश्य रखना चाहिए ताकि गहाई में परेशानी नहीं हो। पानी का ड्रम मशीन के पास अवश्य ही रखना चाहिए ताकि आग लगने की स्थिति में मशीन की सुरक्षा की जा सके। तो अगर हम लोग इन सारी सावधानियों को अगर विभिन्न यंत्रों में देखते हैं तो निश्चित रूप से हम जितने भी हमारे कृषि यंत्र हैं उनका सफलतापूर्वक लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं।
1: हाँ, तो अभी बहुत ही उपयोगी वार्ता हमने के सुननी। डॉक्टर मृणाल वर्मा बतेलन कि कृषि यंत्र के देखभाल कैसे होके के चाहिए। हाँ, कितना फरिया के बतेलन,
2: बहुत जरूरत बात बतौलखिन।
1: हाँ,
2: नीक वार्ता सुनेबा के लिए डॉक्टर वर्मा जी के बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए एक झूमर गीत मोहिनी देवी से।

0: वाह, बहुत निमन ई झूमर रहे। आज
1: वाह,
0: बहुत निमन निमन गीत हमनी के सुननी मोहिनी देवी
1: मोहिनी
0: से।
1: देवी के आवाज में तो
0: सब गीत लाइन करा, बहुत बहुत धन्यवाद। और चंपा बहन, अब तक घड़ी के इशारा होता
1: समय
0: कि
1: संपन्न हो चुके हैं,
0: तब चले के चाहिए। तो प्रणाम चंपा बहन।
1: हाँ प्रणाम मीनू।

0: 90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी पुलों का नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट कराने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यूरिया समेत किसी खाद की कोई कमी नहीं है, कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। और मॉनसून ने केरल में दी दस्तक, 18 से 20 जून के बीच पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते बिहार पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कर उनके निकटतम परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि

0: मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इस टीम को मामले के हर बिंदु की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित उपचार के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने भी हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी पुलों के नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। पटना में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में श्री चौधरी ने कहा कि सड़क और पुल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने मुंगेर परियारपुर भागलपुर सवेर सबौर फोरलेन गंगापथ परियोजना का निर्माण पीपीपी मॉडल के तहत कराने को कहा। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बढ़ती आबादी और यातायात की जरूरतों को देखते हुए ग्रामीण सड़कों की चौड़ीकरण की योजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने ग्रामीण सड़कों की नियमित निगरानी और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। श्री सिन्हा ने बताया कि राज्य में 3,76,000 मीट्रिक टन यूरिया, 1,54,000 मीट्रिक टन डीएपी, 2,38,000 मीट्रिक टन एनपीके और 1,70,000 मीट्रिक टन एसएसपी का भंडार उपलब्ध है। यह भंडार जरूरत के अनुरूप पर्याप्त है। कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरक वितरण में अनियमितता की जांच के लिए मुख्यालय स्तर पर उड़नदस्ता टीम गठित की गई है और कालाबाजारी तथा जमाखोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि रोजगार मेले के तहत मई महीने में 10,882 युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने रोजगार प्रदान किया। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जुलाई महीने तक 20,000 और युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है।
1: 10,882 लोगों को अभी मई महीने में हमने रोजगार से जोड़ा और आगे फिर जुलाई तक, जुलाई से पहले हम लोग कम से कम 20,000 लोगों को और रोजगार से जोड़ेंगे और प्रत्येक 2 महीने पर ये रोजगार मेला लगाएंगे।
0: इधर विभाग की ओर से दरभंगा के अलग अलग प्रखंडों में आज से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेले 6 जून तक अलग अलग प्रखंडों में आयोजित होंगे। खगड़िया और मोतिहारी में भी आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी और कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि अब 99% एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और 96% से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी ओटीपी के माध्यम से की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना आवास पर आज पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, मंत्री दिलीप जायसवाल और रामकृपाल यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में विधान परिषद चुनाव को लेकर रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए में जल्द ही सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस संबंध में एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के बीच विचार विमर्श जारी है।
2: विधान परिषद के कौन कौन उम्मीदवार होंगे वो सब बड़े नेता मिल बैठ के तर्क रहे हैं। एक्सरसाइज जारी है, समीक्षा हो रही है, बहुत जल्द ही आप तक निर्णय पहुंचाएंगे।
0: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि राज्य में संगठन का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब डिजिटल माध्यम से प्रखंड अध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष तक का चुनाव होगा। श्री राम ने कहा

0: की पार्टी ने डिजिटल माध्यम से ही सृजन साथी नामक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं।
1: अपने चुनाव परिणाम से भूल को सबक को लेते हुए हम संगठन सृजन के माध्यम से अपनी संगठन को तैयारी कर रहे हैं। हम अपने संगठन को संतोषजनक हम करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ये माध्यम इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि कोई भी व्यक्ति अनुशंसा पर अब नहीं बनता है। संगठन सृजन साथी अभियान से ये ट्रांसपेरेंसी है और वही चयन होकर के आएंगे जो अपने आप को मजबूती दिखाएंगे।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को नई पहचान मिली है और करोड़ों लोगों ने इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाया है।
3: एक दशक पहले भारत संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव लेकर गया था। हम प्राचीन भारतीय परंपरा को पूरी मानवता के स्वास्थ्य और सामूहिक कल्याण से जोड़ना चाहते और तब यूएन में 190 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव को समर्थन किया। आज यह देखकर बहुत खुशी होती है कि करोड़ों लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं।
0: दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने केरलम में दस्तक दे दी है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से 3 दिन देरी से पहुंचा है। मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने कहा कि 18 से 20 जून के बीच पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते मॉनसून बिहार में दस्तक दे सकता है। इसके बाद यह राज्य के अन्य हिस्सों में पहुंचेगा। अनुकूल परिस्थितियां रहने पर 25 जून तक पूरे राज्य में मॉनसून की बारिश शुरू होने की संभावना है। प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं कल राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
4: दिनांक 5 जून राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।
0: वयोवृद्ध फिल्म निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज नीलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। पहलाज नीलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहलाज नीलानी के निधन पर दुख जताया है। श्री चौधरी ने कहा कि भारतीय फिल्म जगत में उनके योगदान और रचनात्मक कार्यों को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा और सहकारिता मंत्री

0: राम कृपाल यादव ने तारापुर नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भागलपुर जिले के गोपालपुर के पोखरिया चौक के पास अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने कारोबारी के सिर में 7 गोलियां मारी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पटना पुलिस ने एक कोचिंग संस्थान के सुरक्षा गार्ड द्वारा फायरिंग के मामले में 2 गार्ड को हिरासत में लिया है। घटना में प्रयुक्त हथियारों को जब्त कर FSL जांच के लिए भेज दिया गया है। अररिया नगर थाना क्षेत्र के कोढ़ी चौक के पास पुलिस ने छापेमारी कर एक यात्री बस से 708 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के हनुमान चौक के पास पुलिस और SSP की टीम ने 110 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र और परसा बिघा थाना क्षेत्र में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की टीम ने लगभग 700 लीटर शराब और बियर बरामद की है। गया रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल और GRP की टीम ने 3 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत आज शिवहर के तरियानी प्रखंड के अलग अलग गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शेखपुरा मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निशुल्क विधिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई। रोहतास जिले के आलमपुर पंचायत भवन में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सीनियर अंडर 23, अंडर 19 और अंडर 15 वर्ग की T20 और वनडे प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। प्रतियोगिताओं की शुरुआत 8 जून से होगी और मैच पटना, भागलपुर तथा सोनपुर के विभिन्न मैदानों पर खेले जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी पुलों का नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट कराने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यूरिया समेत किसी खाद की कोई कमी नहीं है, कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। और मॉनसून ने केरल में दी दस्तक, 18 से 20 जून के बीच पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते बिहार पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल।

0: अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शेखपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
3: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत शेखपुरा जिले के 3 पंचायतों के मुखिया को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इन जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पंचायत प्रगति सूचकांक के अंतर्गत स्थानीय लोगों की भलाई और तकनीकी व्यवस्था के बेहतर उपयोग के लिए आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में किए गए कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में शेखपुरा के केवटी ग्राम पंचायत के मुखिया दीपक कुमार, डी कुसुम्भा के मुखिया साधु चौधरी और महासार के मुखिया मथुरा यादव शामिल हैं। इन तीनों निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मानित होने पर शेखपुरा में खुशी की लहर देखी जा रही है। शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत सामस बुजुर्ग पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 53 करोड़ रूपए की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। साथ ही वे सामस पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं को लटका कर रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
4: यदि आपने कोई आवेदन दिया 10 दिन तक यदि कोई कार्रवाई हमारे कर्मचारी के द्वारा या पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया तो 11वें दिन उसको मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं नोटिस देने का काम करता है और यदि 30 दिन में नोटिस की अवहेलना करता हो तो 31वें दिन वो स्वतः निलंबित हो जाता है।
3: इधर जिलाधिकारी शेखर आनंद ने बताया कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित इस सहयोग शिविर में 90% मामलों का निपटारा समय से पहले कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह शिविर प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित किया जा रहा है। भारत की जनगणना 2027 के तहत जिले में पहले चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की गई। इस दौरान जिले में कुल 1,87,605 घरों का सूचीकरण किया गया जिसमें 1,46,513 परिवारों की गणना की गई। प्रगणकों ने लोगों से 33 प्रकार के प्रश्नों की जानकारी ली जिनमें मकान की स्थिति, रसोई, शौचालय, यातायात के साधन, रोशनी की व्यवस्था आदि शामिल थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शेखपुरा की अनुमानित जनसंख्या 8,96,082 आंकी गई है जो 2011 की जनगणना की तुलना में लगभग 40% अधिक है। 2011 में शेखपुरा की जनसंख्या 6,36,342 थी। पहले चरण का कार्य पूरा होने के बाद जिला प्रशासन अब अगले चरण की तैयारी में जुट गया है। शेखपुरा जिला भीषण गर्मी से जूझ रहा है। पिछले दिनों मौसम के बदले मिजाज के दौरान तेज हवा के साथ बारिश से तापमान में कमी आने के कारण मौसम सुहावना हो गया था और लोगों ने खरीफ फसल की शुरुआत को लेकर धान के बिचड़े डालने, मकई, अरहर आदि की बुआई के लिए खेतों की जुताई का काम शुरू किया था। लेकिन इसके बाद बारिश के रुकने और मौसम के बदलने के बाद शेखपुरा का तापमान एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। भीषण गर्मी के बीच जिलाधिकारी शेखर आनंद ने लोगों से पेयजल की बर्बादी न करने की अपील की है। उन्होंने जिलावासियों को पेयजल समस्या को लेकर टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी है ताकि उनकी समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 24 से 72 घंटे के बीच किया जा सके। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शेखपुरा जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। 29 मई से 31 मई तक चले इस चैंपियनशिप में शेखपुरा की टीम ने पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया जबकि पटना इस चैंपियनशिप का विजेता बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 वर्षों के शासनकाल पूरा होने पर जिले के लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने उनके शासनकाल में आधारभूत संरचनाओं के विस्तार की जमकर प्रशंसा की। इसके अलावा लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी लोगों ने सराहना की तथा उनके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम काल बताया।
5: चंद्रभूषण शर्मा, जिला शेखपुरा का निवासी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष पूरे होने में बहुत से इन्होंने विकास के कार्य किए हैं। कोरोना काल में देश में जनता की जान को बचाए हैं और रेल का यातायात साधन का भी विकास किए हैं और विदेश नीति में भी इन्होंने बहुत से

0: कार्य को सफल बनाए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद मानता हूँ, उनका आभारी मानता हूँ।
1: राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत शेखपुरा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से रासायनिक खाद के कम प्रयोग, जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी के संरक्षण पर आधारित कृषि पद्धतियों को अपनाने को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।
2: अभी आप सुन रहे थे शेखपुरा जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, आइए सुनिए सुगम संगीत।

0: जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, आइए सुनिए सुगम संगीत।

0: शर्मा बंधु से अभी आप सुन रहे थे भजन। इसी के साथ संपन्न हुआ सुगम संगीत का कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे सरकार के 12 साल पूरे होने पर, इसका विशेष प्रसारण कुछ ही देर में।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम सरकार के 12 साल पूरे होने पर।
3: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर VK पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
4: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर। पार्टिसिपेंट्स आर डॉक्टर VK पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग, एंड डॉक्टर NK अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। मॉडरेटर इज प्रियंका अरोड़ा।
5: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर VK पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
6: बहुत-बहुत नमस्कार।
5: तो जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
6: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व

0: में,
1: जी
0: विजनरी लीडरशिप में, स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशन को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
1: जी,
0: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता था नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था, उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जब हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
1: जी,
0: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
1: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
2: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
1: जी।
2: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं
1: जी।
2: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
0: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
1: जी,
0: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
1: जी।
0: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट

0: की जरूरत है, एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, आप नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है, और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85,000 से 90,000 व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80,000 से 90,000। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है। अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7%, less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों जोड़ दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सबके लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको की एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जोड़ के वयो वंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है, और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था, और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी।
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा, हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है, और अब इसको आगे ले जाकर के यूएन आईटी प्लेट

0: प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है, इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे दो बड़ी बीमारियां हैं,
1: जी
0: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है, वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं, उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है।
1: जी
0: तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पाल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके। तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही
2: मैंने
1: है?
2: आपके सवाल में दो हिस्से हैं।
1: जी
2: पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा।
1: जी
2: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं
1: जी
2: जो होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे, बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य केंद्र में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक,
1: जी
2: इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज़ के लिए, और कैंसर 3 साल में 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है, इस पर 3 कैंसर, मुँह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई, आंख का इलाज, ENT, कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है, लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया। हमारी पुरानी टीम थी, आशा वर्कर थे
1: जी,
2: एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। ये इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ
1: जी।
2: सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयां, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री,

0: और पीएचसी वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, टीबी कंट्रोल है, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चलने ही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेकर जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर पीएमसी जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, ये इन सब की जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको लिए बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड
1: है। बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जिसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: वो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये
1: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है हमारे देश में, इस पिछले 12-13 साल में एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं, और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं, इन सारे में ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों

0: में उन पे विशेष तौर पे ध्यान दे करके उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है,
1: जी
0: जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य आईडी जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं
1: जी
2: उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी, 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है। 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशंस भी हैं कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
0: We have just seen last 2 days some of the recent data. One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14% points. Now, this is remarkable because this is, जिसको कहते हैं बिल्कुल फंसी हुई चीज थी, जिसको ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था, और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में

0: ये अनीमिया की समस्या ऐसी है, इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खास तौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट में, आज वो बढ़ करके लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है, और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको
1: जी
0: हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हैं हमारी तरफ।
1: बिल्कुल। अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक?
2: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया। एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को, पिछले लेसन को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है, और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल। डॉक्टर पॉल, अगर बात करें कि आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए, तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
2: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। ये इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी,
2: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाएं

0: है तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है, बहुत
1: जी
0: फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं ये सब जगह सब प्रदेशों में सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है
1: जी
0: मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है।
1: जी
0: तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है, और उसका जो जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.

अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष प्रस्तुति। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, आइए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में गजल सुनवा रहे हैं नंदिता चक्रवर्ती से।

0: इस गजल के साथ ही संपन्न हुआ सुगम संगीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी पटना है। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार, प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: और इस गीत के बाद
4: छाया गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण

0: साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई

0: स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
0: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और

0: काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरण अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून

0: आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top 3. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.
2: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining, animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector, and pharmaceuticals, to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully.
1: During the conversation, the leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. Both sides reaffirmed their commitment to deepening the bilateral partnership and advancing the interests of the Global South.

0: ही वो लोगों की उमंगों को पूरा कर रही है और सकाफत को फ़रोग दे रही है। NEC की मीटिंग में वजीर दाखिला ने वज़राए आला को हिदायत दी कि वो अमन व कानून पर तवज्जो करने के बजाय शहरियों के हकूक के तहफ्फुज़ पर तवज्जो करें, क्योंकि शोरश पसंदी अब एक मसला नहीं रहा है। उन्होंने रियासतों को हिदायत दी कि वो नई नस्लों के लिए मसनूई जिहानत, मशीनी आमोजिश और ब्लॉक चेन बुनियादी ढांचे की तामीर करें। जनाब शाह ने यह भी कहा कि ऊद की लकड़ी गैर मुल्की तजारत और सेहत से मुतालिक सियाहत के शोबों में शुमाल मशरक के इम्कानात तलाश करें। शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की के महकमे के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी NEC के इजलास में शिरकत की और कहा कि सभी लीडर इस अज़्म के तईं मुत्तहिद हों कि एक ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा खुशहाल शुमाल मशरक की तामीर की जाए। NEC के मुकम्मल इजलास में अहम लीडर यकजा हुए, जिसमें पूरे शुमाल मशरकी खित्ते के गवर्नर साहिबान, वज़राए आला और पॉलिसी साज शामिल हैं। इस इजलास से मुतालिक बातचीत करते हुए मेज़बान वज़ीर आला कोनार्ड के सिंगमा ने कहा कि मरकजी दाखला और शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की की वजारतों की शुमाल मशरकी रियासतों के आठों वज़राए आला को हिदायत के मुताबिक सब मुश्तरका हदफ की हुसूलियाबी के लिए मुत्तहिद होकर काम करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि योगा भारत की जानिब से इंसानियत को एक ऐसा तोहफा है जिस पर वक्त की गर्द नहीं जमी। अहमदाबाद के एका अरीना में मुनक़िद होने वाले वर्ल्ड योग आसन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप के इफ्तिताही इजलास में वर्चुअल तौर पर शिरकत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि योगा जहन, जिस्म और रूह को मुत्तहिद करता है और एक ज्यादा सेहतमंद और ज्यादा यकजहती पर मबनी दुनिया की तरगीब देता है।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, और निश्चित तौर से इसमें इस पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप की बहुत बड़ी भूमिका होगी।
0: वजीर आजम ने आज इस एतमाद का इजहार किया कि अव्वलीन आलमी योगा चैंपियनशिप योगासन को एक आलमी खेल की शिनाख्त अता करेगी और नौजवानों के लिए वसी तर मौके फराहम करेगी। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि हर बड़ा खेल अपने साथ अपना जामे निजाम लेकर आता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अहमदाबाद एका एरिना ने 60 से ज्यादा मुल्कों के 400 शुरका के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें अमेरिका, घाना, कीनिया और मलेशिया से आने वाले बैन अल-अक़वामी दस्ते शामिल हैं। मेजबान मुल्क भारत 122 मेंबरान पर मुश्तमिल मजबूत दस्ता उतार रहा है, जो उम्र के एतबार से 6 जुमरों में मुकाबला करेंगे। ये 6 जुमरे सब जूनियर से सीनियर्स मास्टर्स के जुमरे पर मुश्तमिल हैं। आलमी पैमाने पर पहली मर्तबा इस खेल के लिए एक जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, ताकि तमाम सकनात, तवाजुन और हरकत के फैसले में कतई शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। ये चैंपियनशिप योग आसन के लिए एक बड़ी तब्दीली की अलामत है और इसे रूहानी खुशी के एक शोबे से बहुत बुलंद करके एक इंतहाई तकनीकी और मुकाबला जाती खेलों का मुकाबला बना देती है, जिसका मकसद ओलंपिक तक रसाई हासिल करना है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कार्रवाई जाती कारकर्दगी को मुस्तहकम करने की गरज से फील्ड कमोडोर्स के लिए मालियाती हद में दुगने इजाफे को आज मंजूरी दे दी। उन्होंने तिब्बी और दीगर प्रोजेक्टों समेत दिफाई सर्विसेज के लिए मालियाती इख्तियारात की नजरसानी शुदा तफवीज भी जारी की। वजारत दिफा ने कहा कि मालियाती इख्तियारात की नजरसानी शुदा तफवीज इस साल की बजट जाती मुख्तस रकम के मुताबिक महसूलात के जरिए 1,25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की खरीद की राह हमवार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में मसनूई जिहानत के इस्तेमाल के मुतालिक जवाबित का एक मुसव्विदा जारी किया है, जिसमें उसने वाजह कर दिया है कि कोई भी अदालती फैसला मुकम्मल तौर पर AI पर मबनी तज्जियात या एल्गोरिदम पर मबनी फैसले साजी पर मबनी नहीं हो सकता। इस सिलसिले में अवाम से इस माह की 20 तारीख तक उनके मशवरे तलब किए गए हैं। ये मुसव्विदा AI के तआवुन से अमल में आने वाले कई मामलात की इजाज़त देता है, जैसे केस का मैनेजमेंट, سماعت کی تاریخ، وجوہات کی فہرستوں کی تیاری، قانونی تحقیق۔

0: खत्ते में आज तेज बारिश हुई, जिसके सबब गर्मी और हफ्स की सूरत हाल से राहत मिली। महकमा मौसमियात ने आज रात हल्की और बहुत हल्की बारिश की पेशगोई की है, जिसमें बिजली की गरज चमक भी शामिल है। जकार्ता में हुए इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की भारतीय जोड़ी मर्दों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज एक सख्त मुकाबले में मलेशिया की जोड़ी आरुनताई और कांगखाई शिंग को 16-21, 21-15 और 21-19 से शिकस्त दी है, जबकि सिंगल जुमरे में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी के अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शिकस्त के बाद भारत की मुहिम खत्म हो गई है। भारत ने मुक्केबाजी की हालिया आलमी दर्जा बंदी में अपनी मजबूत पोजीशन बरकरार रखी है। ख्वातीन के 57 किलोग्राम के जुमरे में जैस्मीन लेम्बोरिया आलमी नंबर एक पर पहुंच गई हैं, जबकि एशियाई चैंपियंस प्रिया घंगास 60 किलोग्राम और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम के अपने अपने जुमरे में टॉप थ्री में पहुंच गए हैं। ख्वातीन के जुमरे में मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम के जुमरे में आलमी नंबर एक का अपना मकाम बरकरार रखा है, जबकि मर्दों के जुमरे में सचिन सिवाच और नरेंद्र बेरवाल बैनुल अक्वामी पैमाने पर मुसलसल कामयाबी हासिल करने के बाद टॉप फाइव में पहुंच गए हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। निजी तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला को हिदायत दी है कि वो नई नस्लों के लिए AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉक चैन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करें। आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये योग आसन को एक आलमी खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना।
2: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 आदिवासी सशक्तिकरण और समावेश का एक दशक, और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अनंत प्रकाश पांडे जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार में। पांडे जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: जैसा कि पांडे जी, अभी भारत सरकार की तरफ से जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 मनाया जा रहा है। ये एक महीने तक चलने वाला उत्सव है और जिसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय कर रहा है। ये कार्यक्रम 10 मई से शुरू हुआ और 9 जून तक चलेगा, तो 12 सालों में जनजातीय विकास के क्षेत्र में जितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं, जो आदिवासी और जनजाति हैं उनको गरिमा प्रदान करने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए और जो भी समाज में उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस समारोह के माध्यम से जो भी काम किए गए हैं इसकी जानकारी देने की कृपा करें।
3: जनजातीय गरिमा उत्सव 2026, जैसा कि बताया हमारे वक्ता ने कि 10 मई से 9 जून तक ये लगभग एक महीने का कार्यक्रम रहा है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग एक एक हर हफ्ते के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया था, जो जनजातीय समाज के लिए पिछले 12 वर्षों से सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, तो उनके समग्र विकास की नई गाथा लिखी है पिछले 12 वर्ष में। उन्हें न केवल रोजगार का अवसर, तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे स्वास्थ्य है, एक्सेस एजुकेशन के लिए है और हेल्थ एक्सेस है, इस तरह की तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे पीने के पानी की सुविधा हो, तो तमाम सुविधाओं को सरकार ने अपने पूरे जोर से पिछले 12 सालों में लगे रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अगर हम लोग केवल बजट का तुलना करें कि बजट पिछले 12 सालों में कितना बढ़ गया है, तो अगर ट्राइबल जनजातीय विकास के लिए अगर ट्राइबल पे बजट जो पहले लगभग 2012-13 में 4000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो 15000 करोड़ के आसपास हो गया, जो कि लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है, बहुत बड़ी वृद्धि है बजट में। और

0: प्रकार से अगर देखेंगे आपकी, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी शिक्षा के ऊपर जो सरकार की पूरी जोर रही है कि ट्राइबल बच्चों को कैसे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिल पाए, उसके तहत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। लगभग 500 स्कूल आज की डेट में नए बने हैं और जिनसे लगभग 1,40,000 स्टूडेंट्स हमारे जो शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। पूरी तरह आवासीय सुविधा है और मुझे बताते हुए बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि इसमें काफी सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे नीट है, जैसे हमारा IIT है एम्स में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, इस तरह के कई सारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि कितनी हाई क्वालिटी की एजुकेशन इस पूरे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से सरकार जो है प्रतिबद्ध है अच्छी एजुकेशन पहुंचाने के लिए। इसी तरह अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया में इरेडिकेशन मिशन का भी 2023 में उसकी शुरुआत की है और इससे लगभग 60 करोड़ जो है जनजाति उनका अच्छी तरह से स्क्रीनिंग हो सका है। और अगर हम सड़क, बिजली, पानी इस तरह की जो अलग बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसमें भी इस सरकार के तहत पीएम जनमन योजना हो, चाहे धरती आबा उत्कर्ष उत्थान योजना है, इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं उनके थ्रू भी बहुत सारे कन्वर्जेंस के थ्रू अलग अलग जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं पे बहुत जोर दिया गया है। और धरती आबा में आपके 17 मंत्रालय हैं और 25 इंटरवेंशन के तहत अलग अलग इंटरवेंशन किए जा रहे हैं ताकि जनजाति समुदाय का विकास हो सके और उन्हें जो सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिल सकती हैं वो सुविधाएं मिलें। और पूरे 12 साल के जो तमाम समग्र विकास के लिए कार्य किए गए हैं उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए और उसको कैसे हम लोग एक उत्सव के रूप में मना सकें कि जो सरकार ने और सरकार के ऐतिहासिक कदमों ने इस पूरे जनजातीय विकास की नई जो गाथा लिखी है उसको कैसे एक उत्सव को मनाया जा सके, उसके लिए मंत्रालय ने जनजातीय गौरव गरिमा उत्सव 2026 एक मंथ का हम लोग चला रहे हैं, जिसमें पहले हफ्ते में हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में तकनीकी जो जितना एडवांसमेंट हो रहा है वो बहुत बड़ा योगदान आजकल कर रहा है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और जो सुविधाएं देना चाहते हैं ट्राइबल जनजातीय भाई बहनों को उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू आसानी से पहुंचाया जा सके। और उसके तहत हमारा 10 मई से 17 मई तक ये टेक्नोलॉजी इज एज अ डेवलपमेंट ड्राइवर, मतलब विकास में कैसे ड्राइव कर सकता है टेक्नोलॉजी, इस पे एक पूरा वीक हम लोगों ने आयोजन किए तमाम प्रोग्राम।
1: पांडे जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो जितनी आपने योजनाएं बताई और निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने बनाई है, लेकिन एक मोटे तौर पे हम देखते हैं कि ज्यादातर जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर सुविधाओं को पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, उस तरह का ढांचा होता नहीं। तो ऐसे में प्रशासन क्या ऐसे अतिरिक्त कदम उठाता है जो सुविधाएं हैं उनको जनजातीय लोगों तक जहाँ वो है वहीं तक पहुँचाए जा सके।
0: पहला जो हम लोगों ने वीक मनाया वो तो टेक्नोलॉजी कैसे ड्राइव कर रहा है, और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इनेबलर होता है अगर आप अपनी बात कहीं गांव तक पहुंचाना चाहते हैं लास्ट माइल तक। आजकल बहुत जगह, बहुत ट्राइबल क्षेत्रों में भी इंटरनेट का भी पहुंच हो गई है और इसलिए तमाम ऐप के माध्यम से और इस तरह की जो वेबसाइट और पोर्टल के माध्यम से भी बहुत सारी हम लोग योजनाएं अवेयरनेस के तौर पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल योजना, जिसे आपने कहा बहुत सही बात आपने बताई कि ट्राइबल हमारे जो भाई बहन साथी हैं वो बहुत सुदूर और डिफिकल्ट एरियाज में रहते हैं और उन तक पहुंचना एक अपने आप में चुनौती रहती है, और इस चुनौती को ओवरकम करने के लिए सरकार ने, आप देखिए तो पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों में लगातार जन भागीदारी अभियान चलाते रहे हैं और इसी तहत एक बहुत बड़ा जन भागीदारी अभियान है जो हमारा इस पूरे जनजाति गरिमा उत्सव का जो दूसरा हफ्ता था जिसमें 18 से 25 मई इस दौरान हमने सबसे दूर सबसे पहले नाम की एक पहल शुरू की, जिसमें जन भागीदारी के थ्रू जितने सर्विसेज थी वो उनके डोर स्टेप इनके पास तक कैसे सारी पहुंच सके, इसके लिए लगभग 76,000 जो हमारे गांव थे 600 डिस्ट्रिक्ट में वहां पे 57,000 कैंप्स किए गए और लगभग 90 लाख ट्राइबल जो हमारे भाई बहन शामिल उसमें हुए। और कुछ आंकड़े आप सभी श्रोताओं के लिए बताना चाहूंगा कि उसमें लगभग 13,000 लोगों की जन सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं,

0: मांग ट्राइबल समुदाय के लोगों ने रखी और 19,000 आदि सेवा केंद्र जो कि एक तरह से एक वन स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे हम लोग मंत्रालय उसको प्रस्तुत कर रहा है कि एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था गांव के लेवल पे रहे जहां पे कुछ बिल्डिंग को चिन्हित करके उसे आदि सेवा केंद्र के तौर पे चिन्हित किया गया और वहां पे जो ट्राइबल से रिलेटेड और जो ग्राम विकास से रिलेटेड मंत्रालय हैं, अलग अलग सोशल डेवलपमेंट के मंत्रालय हैं, उनके डिपार्टमेंट्स के लोग वहां जाएंगे और लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुनेंगे, स्पेशली ट्राइबल लोगों की। तो ये आदि सेवा के माध्यम से, इसी तरह अगर आप देखोगे इन सारे कैंप्स में बहुत सारे जो स्कीम्स का सैचुरेशन का भी माध्यम किया गया। तो अगर आप आधार कार्ड एनरोलमेंट की बात करेंगे तो लगभग 2.5 लाख लोगों को आधार कार्ड में एनरोल किया गया केवल इस एक हफ्ते के दौरान की मैं प्रगति बता रहा हूँ। आयुष्मान भारत कार्ड लगभग 2.25 लाख लोगों को दिया गया और इसी तरह हेल्थ स्क्रीनिंग जो है टीबी और सिकल सेल की हेल्थ स्क्रीनिंग लगभग 1.35 लाख लोगों की गई। तो इस तरह के अभियान, जो आपका प्रश्न था कि डिफिकल्ट एरिया में कैसे मंत्रालय एक्सेस कर पाता है, तो मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट्स के जो राज्य सरकारों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बीडीओ लेवल पे जो गांव के लेवल के स्तर पे अधिकारी और कर्मचारी हैं उन सबके साथ कंधे से कंधा मिला के इस तरह के अभियान लगातार समय समय पे चला के वो हमारे पास ट्राइबल ना आए, ट्राइबल को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, सरकार उनके द्वारा एक तरह से जाती है और वहां पे जाके योजनाओं के बारे में बताती है और कुछ योजनाओं को जो लाभ मिल सकता है उसको कैंप के माध्यम से वहां पे लगातार देने का प्रयास।
1: जी, यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी, सरकार की तरफ से जैसा आपने बताया बहुत प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता फैलाना सबसे एक महत्वपूर्ण काम है, इन प्रयासों की सफलता तभी है जब जिसके लिए काम किया जा रहा है उनकी भी भागीदारी हो, जिसको हम सामुदायिक भागीदारी की बात कहें, तो सामुदायिक भागीदारी को और बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया गया है?
0: सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट, जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा अभियान आदि कर्मयोगी अभियान के रूप में उसको चलाया गया था और माननीय प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है उस संकल्प के लिए बिना समुदाय के शामिल हुए इस पूरे संकल्प को पूर्ण कर पाना आसान नहीं। तो उसी के तहत आदि कर्मयोगी अभियान में हम लोगों ने लगभग 20 लाख ट्राइबल लोगों तक पहुंच बनाई जिसमें अलग अलग विभाग अपने जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक ट्रेनिंग कम अवेयरनेस और सेंसिटिविटी की गई ताकि मास्टर ट्रेनर्स बने और मास्टर ट्रेनर्स के साथ फिर मिलके ग्राम स्तर पर जो विलेज डेवलपमेंट एक्शन प्लान बनाया गया, विलेज विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया, गांव वालों के साथ बैठ के ट्राइबल गांव के लोग हैं उनके साथ मिल के कैसे कोई प्लानिंग की जा सकती है, उनसे चर्चा करके कैसे प्लानिंग की जा सकती है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का, किसी भी समुदाय का भागीदारी सुनिश्चित करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका वो हो सकता है कि उसके डिसीजन मेकिंग में उसके विकास के जो समय वो कैसे प्लान हो उसके गांव का विकास उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित किया। तो इसके लिए लगभग 56,000 गांवों तक हम लोग पिछले 6 महीने में पहुंचे और उस 56,000 गांवों में गांव वालों के साथ मिलके जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, कुछ हम लोगों ने आदि सेवा केंद्र भी जो मैंने बताया था जैसे उसमें आइडेंटिफाई हुए थे, आदि सहयोगी और आदि साथी भी चिन्हित किए गए थे, कुछ वॉलंटियर्स और कुछ जो ग्राम स्तर पे राज्य सरकारों के अधीन जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके साथ मिलके और गांव वालों के साथ मिलके प्लानिंग भी की गई, कुछ बढ़िया डॉक्यूमेंट्स भी बने हैं उस पर भी काम हो रहा है। तो इस तरह से लगातार प्रयास ये रहता है कि जब तक गांव के जो असली जो वहां रहते हैं जब तक उनकी बात सुन के समुदाय क्या चाहता है वो चीज बिना जाने अगर हम प्लानिंग करते रहे यहाँ दिल्ली से या किसी स्टेट हेडक्वार्टर से तो वो कामयाब नहीं होता। लेकिन मंत्रालय ने पूरा इस बार सीरियसली इस मामले में प्रयास किया है कि हम ग्राम स्तर पर कैसे लोगों को जोड़।
1: जी, यहाँ पर मैं और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी कि जब हम उद्यमशीलता की बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यमशीलता को विकसित करना भी जरूरी है, तो इस क्षेत्र में खासतौर पे क्या विशेष प्रयास किए गए हैं?
0: जनजाति की अवस्था अगर देखी जाए तो सरकार का जो पहला फोकस रहा वो ये रहा कि कैसे इनको बेसिक सुविधाओं से अच्छी तरह से लैस किया जाए। अच्छी तरह से लैस करने का मतलब कि बेसिक सुविधाएं कैसे पहुंचाई जा सके, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इन सारी क्षेत्रों में धरती आबा अभियान हो, चाहे पीएम जनमन हो, चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, स्कॉलरशिप है जो लगभग हम लोग 20 लाख पोस्ट मैट्रिक और 10 लाख प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट को ताकि वो स्कूल ड्रॉप आउट ना हो सके उनको पूरी तरह से। तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हमने

0: सरकार ने अपनी तमाम योजनाओं तक पहुंचाई है, पहुंचा रही है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण चरण है वो ये है कि अब इनको कैसे ग्रेजुएट, मतलब इनको कैसे दूसरे लेवल इनकम कैसे जनरेट की जा सके ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अब पूरे देश के जो विकसित भारत 2047 में अपना योगदान दे सके। तो उसके लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण मतलब एजेंडा है सरकार के, उस पर एक तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे डेवलप की जाए, तो उसके लिए हम लोग इंस्टीट्यूट स्किल के साथ जॉइंटली अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग कई जगह जितने हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वहां पे कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने CSR के माध्यम से, क्योंकि सरकार की भी ये सोच रहती है कि प्राइवेट पार्टनरशिप भी की जाए, पब्लिक सेक्टर को भी लाया जाए ताकि समाज के हर वर्ग को जोड़ा जा सके, तो CSR के माध्यम से भी हम लोग बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है।
1: पांडे जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जनजातीय गरिमा उत्सव के बारे में और आदिवासियों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है और एक पूरे महीने तक जिस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और YouTube चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

0: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर्रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा एंड ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। शी इज अ गिफ्टेड फोक वोकलिस्ट acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled Chanan Bhel. Continuing this program, she now presents a composition titled Ekta Hum Bari Kumari.

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती जिसके बोल है कुहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Ho Rama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नोर बहैया।
1: दैट वॉज अ मैथिली कॉम्पोजिशन परफॉर्म्ड बाय सौम्या मिश्रा। शी कंक्लूड्स हर रेंडिशन विद अ कॉम्पोजिशन टाइटल्ड बाटे हेरी दिन काटी नोर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशिभूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Delhi. Continuing the broadcast from Akashwani Delhi, now we will listen to the presentation of Akashwani Jaipur, Odisha.

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन, नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बैला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है मन हृदय जेते सबू कथा तम आगे प्रिय कही देली। मतलब है अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

चलिए अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थी बा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछी जाने नहीं, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूँ एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखा रे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहले ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

मर्राव, सेक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी